मीडियम बीप 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन EIR ऐप, DTH DRM और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज रविवार है। शक सम्मत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 मई सन 2026 ईस्वी। इस समय प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ होती है प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। खेती की बातें इस कार्यक्रम में सामयिक कृषि कार्य विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
1: किसान भाइयों, आज हम सामयिक कृषि कार्य की चर्चा करेंगे। दलहनी फसलों में इस समय उड़द और मूंग की खेती आप किए हुए हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि पहली सिंचाई 25 से 30 दिन बाद करें। अगर पहली सिंचाई बहुत जल्दी कर देते हैं तो इसमें जड़ों तथा ग्रंथियों के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः पहली सिंचाई जो है 25 से 30 दिन बाद करें और बाद की सिंचाइयाँ आवश्यकता अनुसार 10-15 दिन के अंतराल पर करते रहें। इस फसल में कुछ खरपतवार भी आ जाते हैं जिनको निकाई करके नष्ट कर देना चाहिए। उड़द और मूंग की फसल में पीला चित्तवर्ण रोग, जिसे कि मोजैक रोग कहते हैं, इसका प्रकोप काफ़ी होता है, जिसमें पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। यह रोग प्रायः सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है, अतः इसके नियंत्रण के लिए उस सफ़ेद कीट का ही नियंत्रण करना चाहिए। इसके लिए मिथाइल ओ डेमेटान दवा प्रयोग करते हैं, जो कि 25 EC के रूप में आती है। अगर 5 से 10 प्रौढ़ मक्खी प्रति पौध की दर से दिखाई पड़े तो इस दवा का छिड़काव करना चाहिए। इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है। अगर यह दवा उपलब्ध ना हो तो डाइमेथोएट दवा प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 30 EC के रूप में आती है। इसकी भी 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर 1 हेक्टेयर खेत है तो 1 लीटर दवा की आवश्यकता होगी और लगभग 600 से 700 लीटर पानी की। इस तरह से आवश्यक दवा की मात्रा लेकर के और आवश्यक पानी में घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। उड़द और मूंग की फसल में थ्रिप्स कीट का भी प्रकोप होता है। इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों पत्तियों से रस चूसते हैं तथा पत्तियां जो हैं सिकुड़ जाती हैं और पैदावार प्रभावित होती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए भी मिथाइल ओ डेमेटान दवा का प्रयोग करते हैं। इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। कुछ किसान भाई सूरजमुखी की भी खेती किए रहते हैं, तो ध्यान रहे कि सूरजमुखी की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। अब हम थोड़ी सी चर्चा गन्ना की खेती की करेंगे। इसमें कुल 180 किलोग्राम नत्रजन की आवश्यकता होती है। 60 किलोग्राम नत्रजन यानी कि लगभग 120 किलोग्राम यूरिया बेसल ड्रेसिंग के रूप में बुआई के समय ही खेत में प्रयोग कर लिया जाता है। बाकी जो मात्रा बचती है उसको 2 बार में प्रयोग करते हैं, 60 किलोग्राम और 60 किलोग्राम। तो इसे जो है जून माह के पहले प्रयोग कर लेना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आखिरी मात्रा आपके पास बची है तो 60 किलोग्राम नत्रजन यानी कि लगभग 120 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव खेत में करें। ध्यान रहे कि जब आप यूरिया का प्रयोग करें तो खेत में नमी अवश्य हो। इसके अलावा गन्ने की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। चूंकि इस समय खेत खाली रहते हैं, अतः ये मिट्टी की जांच का सर्वोत्तम समय है। पहले मिट्टी का नमूना लेते हैं और फिर उसको जांच के लिए जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है वहाँ पर भेजा जाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक मिट्टी का नमूना लेकर के उसमें अपना नाम, पिता का नाम, खेत का नंबर और बोई जाने वाली फसल आदि का विवरण दर्ज करके और फिर उसे जांच हेतु भेजा जाता है। अभी अगर मिट्टी की जांच कराते हैं तो आपको समय से उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। फिर उस हिसाब से उर्वरकों का प्रयोग करके आप खरीफ की खेती आसानी से कर सकते हैं। हरी खाद के लिए समय ढांचा की भी खेती अवश्य करें। इससे जो है जो खेती में लागत आती है उसको भी आप कम कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर सामयिक कृषि कार्य करना चाहिए।
0: सामयिक कृषि कार्य इस विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। इसी के साथ खेती की बातें कार्यक्रम संपन्न होता है। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। ईश्वर प्रभु

जहाँ भाव है वहीं भक्ति है, जहाँ भक्ति है वहीं भावना है, जहाँ भावना है वहीं प्रभु की आराधना है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। आज आपने सुना हरिहरन, संजय तलवार, प्रीति सागर, दिलीप बोस और जेपी घोष के गाए भजन। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने विचार बिंदु। आज का विषय है महर्षि अरविंद।
1: महर्षि अरविंद घोष का जन्म अरविंद अक्रोध्य घोष के रूप में हुआ था, जो बाद में श्री अरविंद महर्षि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। वो एक महान दर्शन शास्त्री, देशभक्त, क्रांतिकारी

0: गुरु, रहस्यवादी, योगी, कवि और मानवतावादी थे। वो समृद्ध बंगाली परिवार में वर्ष 1872 में 15 अगस्त को पैदा हुए थे। उनके पिता की इच्छा के कारण उनका पारिवारिक माहौल पूरी तरह से पश्चिमी संस्कृति में रचा बसा था। उन्होंने अपने बचपन की शिक्षा अंग्रेजी आया के द्वारा ली, इसलिए वो अंग्रेजी बोलने में बिल्कुल पारंगत हो गए थे। श्री अरविंद की बाद की शिक्षा दार्जिलिंग और लंदन में हुई थी। उनके पिता हमेशा अपने बच्चों को भारतीय सिविल सेवा में काम करते देखना चाहते थे। इस सफलता को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अरविंद घोष को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा, जहां उन्हें एक अच्छे अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। वो एक बहुभाषीय व्यक्ति थे, जो अंग्रेजी, फ्रेंच, बांग्ला, संस्कृत आदि भाषाओं को अच्छी तरह से जानते थे। वो अंग्रेजी भाषा के साथ बहुत ही स्वाभाविक थे, क्योंकि अंग्रेजी उनके बचपन की भाषा थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि उस समय में अंग्रेजी संवाद करने का एक अच्छा माध्यम था। वो एक उच्च नैतिक चरित्र के व्यक्ति थे, जिसने उनको एक शिक्षक, लेखक, विचारक और संपादक बनने के काबिल बनाया। वो एक अच्छे लेखक थे, जिन्होंने अपने कई लेखों में मानवता, दर्शन शास्त्र, शिक्षा, संस्कृति, धर्म और राजनीति के बारे में लिखा था। 1902 में अहमदाबाद के कांग्रेस सत्र में अरविंद बाल गंगाधर तिलक से मिले, जहां वो वास्तव में उनकी अद्भुत और क्रांतिकारी व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर वो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ गए। 1916 में वो दोबारा कांग्रेस से जुड़ गए और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आक्रामक राष्ट्रवाद के लिए लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ एक मुख्य समर्थक बन गए। उन्होंने लोगों से आगे बढ़कर स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने का आग्रह किया। उन्होंने अंग्रेजों से कोई मदद और समर्थन नहीं लिया, क्योंकि वो हमेशा स्वराज में विश्वास करते थे। उनके प्रभावकारी लेखन और भाषण ने उनको स्वदेशी, स्वराज और भारत के लोगों के लिए विदेशी सामानों के बहिष्कार के संदेश को फैलाने में मदद की। महर्षि अरविंद श्री अरविंद आश्रम ओरोविले के संस्थापक थे। वर्तमान पुडुचेरी में 1950 में 5 दिसंबर को उनका निधन हुआ। महर्षि अरविंद घोष का कहना था, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मन की चंचलता और विचार मुक्त चित्त में बेहतर ढंग से न किया जा सके। जब मन स्थिर होता है, तब सत्य को मौन की शुद्धता में सुनने का अवसर प्राप्त होता है। हमारा वास्तविक शत्रु कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि हमारी खुद की कमजोरियों का रोना, हमारी कायरता, हमारा स्वार्थ, हमारा पाखंड, हमारा पूर्वाग्रह ही हमारा शत्रु है। एक शांत दिमाग का मतलब ये नहीं कि कोई विचार या मानसिक गति बिल्कुल नहीं होगी। यदि कोई धर्म सार्वभौमिक नहीं है, तो वो शाश्वत नहीं हो सकता है। एक संकीर्ण धर्म, एक सांप्रदायिक धर्म, एक विशेष धर्म केवल सीमित समय और सीमित उद्देश्य के लिए रह सकता है। श्री अरविंद ये स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म परम सत्ता है। ये ब्रह्म विशुद्ध सत्य और निरपेक्ष है। ज्ञान के बौद्धिक रूपों का अतिक्रमण कर सक्षम परम तादात्म्य के द्वारा ही उसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है। महर्षि अरविंद के अनुसार व्यक्ति का जीवन निरर्थक नहीं है। जगत में मनुष्य की भूमिका ये है कि वो जगत में रहता हुआ चैतन्य के विकास का अवसर प्राप्त करता है।
1: विचार बिंदु में आज का विषय था महर्षि अरविंद। आलेख और स्वर था अरुण पांडे का। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज का विषय है दूषित जल से होने वाली बीमारियां और इनका इलाज।

0: जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विनोद कुमार।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार, मैं डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में कंसल्टेंट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो में IMS BHU। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं दूषित जल से होने वाली प्रमुख बीमारियों के बारे में। तो पिछले सेगमेंट में हम लोगों ने सुना हैजा के बारे में, टाइफाइड के बारे में, पेचिस के बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में, जीआरडीएसिस के बारे में। तो हम चर्चा कर रहे थे क्रिप्टोस्पोरोडिसिस बारे में, जो की परजीवी के द्वारा होता है, जिसमें की पानी जैसा दस्त और कमजोरी होती है। जनरली ये नॉर्मल लोगों में नहीं होता है, लेकिन जिसमें कुछ इम्यूनिटी की कमी हो उसमें ज्यादा होने की संभावना होती है, लेकिन ये नॉर्मल लोगों में भी हो सकता है। इसका अभी इलाज एक एंटीबायोटिक है। अगर आपको शरीर में ज्यादा कमजोरी लग रही है तो दस्त के हिसाब दवा ले सकते हैं। तो अगली बीमारी है लेप्टोस्पायरोसिस, जो कि दूषित पानी में पशु मूत्र, बेसिकली ये चूहों के द्वारा फैलता है। ये जनरली ये बारिश शुरू होने के समय होता है, जब बारिश ज्यादा होती है, खेत में चावल खड़ा हो और उसके बाद अगर चूहे घर में आते हैं तो उनसे ये फैलता है। तो अगर उनका मल मूत्र अगर आपके खाने में मिल जाए तो ये आपको हो सकता है लेप्टोस्पायरोसिस। तो इसमें बुखार है, मांसपेशी में दर्द होता है, पीलिया होता है। इसमें सबसे जो ध्यान देने वाली चीजें है कि मांसपेशी में असहनीय दर्द होता है। इसका भी इलाज एंटीबायोटिक है और ये बीमारी बहुत ही भयंकर रूप ले सकती है अगर इसका समय से आप इलाज ना करें तो। इसमें किडनी लिवर भी असर होता है। तो चलिए, ये थे कुछ दूषित जल से होने वाली प्रमुख बीमारियों के नाम। अब हम इलाज के समान सिद्धांत के बारे में जानेंगे। देखिए, इन सब बीमारियों में आपको दस्त होता है, तो दस्त अगर बहुत ज्यादा होने लगे तो आपको रिहाइड्रेशन लेना है। रिहाइड्रेशन का मतलब है आप ORS का घोल बनाकर पिएंगे। तो ORS का घोल घर में भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको 1 लीटर पानी बॉयल करना है, 5 मिनट तक बॉयल करिए, फिर उसको ठंडा कर दीजिए। फिर उसमें आप चुटकी भर नमक और 2 चम्मच चीनी मिला सकते हैं। उसके बाद आप इसको एक कहीं साफ बोतल में रख सकते हैं और इसको जब भी आपको दस्त लगे, बड़े लोगों के केस में अगर जब दस्त लगता है तब उनको 1-1 ग्लास पीना है। छोटे बच्चों में जितना दस्त होता है उसी के हिसाब से उनको देना, उनको ORS दे सकते हैं। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि इसको बहुत साफ सफाई से रखना है और दिन भर में ही पूरा यूज कर लेना है। अगर अगले दिन चाहिए तो फिर आपको फिर से बनाना पड़ेगा। गंभीर रोगियों में आपको, जिसमें कि गंभीर डिहाइड्रेशन है, मान लीजिए खड़े होने पे चक्कर आ रहा है, गिर जा रहे हैं या फिर आंखों के आगे आगे अंधेरा छा जा रहा है, तो आपको IV फ्लूइड्स, माने कि आपको ग्लूकोज लगवाना पड़ेगा। उसके लिए आप नजदीकी अस्पताल CHC PHC में जा करके आप ये डॉक्टर से परामर्श करके लगवा सकते हैं, क्योंकि इसकी भी एक डोज होती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा लगाने से भी दिक्कत हो सकती है और बहुत कम लगाएंगे तो आपका बीमारी ठीक नहीं होगी। फिर इसमें दूसरा सिद्धांत है एंटीबायोटिक्स। इसमें से कई सारी बीमारियां हैं जिसमें कि ये बैक्टीरियल संक्रमण से होती है, जैसे कि आपने सुना हैजा है, टाइफॉइड है, पेचिस है, तो और जियार्डिया और क्रिप्टोस्पोरोसिस परजीवी की वजह से होती है, जिसे हम अंग्रेजी में पैरासाइट भी बोलते हैं। तो इनके लिए एंटीबायोटिक बहुत ही कारगर है। लेप्टोस्पायरोसिस में भी एंटीबायोटिक बहुत कारगर है, तो आप इसमें ये दवा ले सकते हैं। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक के अलावा भी आप सपोर्टिव केयर, माने कि आपको आराम करना है, हल्का भोजन लेना है, आपको पोषण अच्छा लेना है, आप बहुत हैवी फूड ना लें, वही लें जो आपको पसंद होता है। और पीलिया में एक लोग ये गलती करते हैं कि आप तेल, घी, मसाला सारा बंद कर देते हैं। आपको उस चीज का ध्यान रखना है जो आपको भूख लगती है उस हिसाब से खाएं, अनावश्यक परहेज न करें, उससे भी आपका शरीर ज्यादा कमजोर हो सकता है और आपको रिकवरी में ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप बुखार और दर्द की दवा ले सकते हैं जरूरत पड़ने पे। और एंटीवायरल, जहां पे हेपेटाइटिस ए और बी है, जनरली उसमें एंटीवायरल का रोल तो नहीं है, ज्यादातर सपोर्टिव केयर ही चाहिए, उसमें कोई विशेष दवा नहीं है, लेकिन लक्षण के आधार पर ही आप उसका इलाज करा सकते हैं। जैसा कि हमने अभी बातचीत की थी कि हेपेटाइटिस ए और ई में अगर आप कोई दवा, अगर आप मुंह से कुछ नहीं खा पा रहे हैं, आप बिल्कुल भी पानी नहीं पी पा रहे हैं या खाना नहीं खा पा रहे हैं और आपको उल्टियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो फिर आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको डॉक्टर से जाके मिलना है, क्योंकि आपको हो सकता है भर्ती की जरूरत पड़े और आप वहां पे भर्ती होकर के अपना इलाज करा सकते हैं।
0: दूषित जल से होने वाली बीमारियां और इनका इलाज, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विनोद कुमार। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम संपन्न होता है। तो रहिए स्वस्थ और सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम हर रोज सुबह 6:35 पर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

सीता जी की माता के मन में संशय पैदा हुआ कि देखने में सुकुमार बालक राम उस प्रचंड धनुष को कैसे तोड़ सकेंगे। इस पर राम जी के महत्व को जानने वाली एक चतुर सखी ने रानी को समझाया, हे रानी, तेजस्वी व्यक्ति देखने में छोटा हो सकता है, किंतु वो

वस्तुतः छोटा नहीं होता। मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता जिस मंत्र के वश में हैं, वो भी तो अत्यंत छोटा होता है। इसलिए देवी, संदेह त्याग दीजिए। सखी के वचन सुनकर रानी की उदासी मिट गई और विश्वास बढ़ गया। उधर उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से विभिन्न देवताओं से विनती करने लगीं। अपने हृदय की बढ़ती व्यग्रता को पहचानकर सीता जी सकुचा गईं और सोचने लगीं कि यदि तन मन वचन से मेरे चित्त की श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुरक्ति है तो वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने निश्चय कर लिया कि या तो वे श्री राम को ही वरेंगी अथवा स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगी।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। आज की गायक कलाकार थी अनुराधा पौडवाल। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा सुनिएगा रात 10 बजे से, जिसे हम दिल्ली केंद्र से संप्रसारित करेंगे। उर्दू कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा सुबह 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर सुनिएगा पंडित छन्नूलाल मिश्र का गायन। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों की महफिल सजेगी अंजुमन में रात 9:30 पर। रात 8 बजे सुगम संगीत के कलाकार होंगे अशोक खोसला। पत्र के लिए धन्यवाद। आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। आपके ईमेल

छात्रों के साथ होंगे अरुण पांडे और सना सलीम। गर्मी में दुधारू पशुओं की देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर पुष्पराज शिवहरे से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत सुनेगा कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर। और इसी कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं छोटे लाल पटेल और साथियों का गाया लोकगीत। हम आपको याद दिलाते चलें कि इन्हीं का गाया लोकगीत 9:50 पर भी आप सुन सकते हैं। युवा दोस्तों की युवाणी सजेगी 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात, युवाणी क्विज, यूथ डायरी, विश्व घटना चक्र, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। दृढ़ संकल्पता सफलता की कुंजी, इस विषय पर सुनिएगा डॉक्टर विंध्यवासिनी मिश्रा की वार्ता बाल गोपाल कार्यक्रम में 5:00 से। एक ही फिल्म से सुनिएगा दिन 2:30 पर, आज की फिल्म होगी दिल चाहता है, प्रस्तुति होगी सना सलीम की। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग सुनिएगा दिन 1:30 पर। हाकिम की पतलून, सुधा चौधरी की लिखी है झलकी सुनिएगा आदित्यवार कार्यक्रम में दिन 1:15 पर, प्रस्तुति होगी सीमा विजय की। हेलो फोन इन फरमाइश, आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम होगा दिन 12:00 से, और आपके फरमाइशों के साथ स्टूडियो में होंगे अरुण पांडे। आरोग्यम स्वास्थ्य संबंधी ये फोन इन कार्यक्रम सुनिएगा दिन 11:30 पर, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर लक्ष्मण यादव, विषय होगा मनोरोग के विभिन्न प्रकार, इलाज और बचाव के उपाय, जिनसे बातचीत करेंगी मनु सिंह। समय याद कीजिए आज दिन 11:30 पर। बाल संघ सुनिएगा दिन 11:00 से, जिसमें अन्य कार्यक्रम के अलावा सुनिएगा पवन कुमार वर्मा की कहानी दोस्तों ने बचाई जान, सामुदायिक गान शिक्षा पाठ असमिया सुनिएगा 10:10 से, मधुर गीतों की महफिल सजेगी मधुरिमा में 8:45 पर, और गुड मॉर्निंग बनारस का समय 7:00। एक बार पुनः हम आपको याद दिलाते चलें कि आरोग्यम स्वास्थ्य संबंधी ये फोन इन कार्यक्रम सुनिएगा दिन 11:30 पर, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर लक्ष्मण यादव, विषय होगा मनोरोग के विभिन्न प्रकार, इलाज और बचाव के उपाय, जिनसे बातचीत करेंगी मनु सिंह। आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश होगा दिन 12:00 से, और आज आपके फरमाइशों के साथ होंगे अरुण पांडे। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कृपया इस वाद्य संगीत के साथ प्रतीक्षा करें।

0: अमेरिका विदेशमन्त्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं सम्प्राप्तः। द्विपक्षीय सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुम् अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिन्द प्रशान्त व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य एषा भारतयात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिसन्धिं सुदृढयितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्रिकार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरन्तर प्रगतेः विषये प्रधानमन्त्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शान्ति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च सम्भाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शान्तिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतॄणाम् एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन सह कनाडादेशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मन्त्रालयेन सूचितं यत् श्रीगोयलः व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्यसूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47-अधिक-2000 वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतम् इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते ICF इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तुविभागेन अद्य पूर्वीयोत्तरप्रदेशाय पूर्वीयमध्यप्रदेशाय विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणिकी सञ्चेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तरपश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपयक्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामि 7 दिवसपर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, इण्डियन् प्रीमियर् लीग् क्रिकेट् स्पर्धामालिकायां गतरात्रौ लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट् क्रीडाङ्गणे आयोजिते द्वन्द्वे श्रेयस् अय्यरेण अर्जितानाम् 71-शतधावनाङ्कानां बलेन पञ्जाब किङ्ग्स् दलेन लखनऊ सुपर जायण्ट्स् दलं 7 क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धापुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं मुम्बय्याम् अपराह्णे 3:30 मुम्बई इण्डियन्स् दलं राजस्थान रॉयल्स् दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स् दिल्ली कैपिटल्स् दलयोः द्वन्द्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

0: मॉर्निंग बनारस।
1: जाएगी मस्ती, लगेगा इंफोटेनमेंट का डोज।
2: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
3: अप्पा
1: आ गई है बनारसी कुड़ी। सो बनारस, लेट्स गेट रेडी टू ग्रूव। प्रेजेंटिंग आरजे सना।
3: ओए होए होए, डेथ ही होगी।
4: मैं सेंसर में बहुत अच्छा हूँ, पता चलेगा।
5: हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल।

बनारस, कैसे हैं आप? आई होप एंड आई विश कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी एकदम ठीक, मस्त और चकाचक हैं। सो एक और एक नया हफ्ता, नए प्लान्स, नए गोल्स के साथ हम एंटर कर चुके हैं एक और नए हफ्ते में और उस शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। तो भाई कैसी कट रही है गर्मियाँ? छुट्टी वगैरह पे गए या नहीं? हॉलीडेज प्लान किया या नहीं? अच्छा, पहले के समय में सर्दी गर्मी की छुट्टियां आते ही घर घर में एक अलग ही एक्साइटमेंट दिखाई देता था, है ना? कहीं जाना केवल जर्नी नहीं बल्कि एक सामाजिक रिवाज हुआ करता था। दादी नानी के घर जाना, मौसी मामा के यहाँ ठहरना या किसी पहाड़ी या धार्मिक स्थान की यात्रा, हर सफर अपने साथ रिश्तों की गर्माहट और यादों की गठरी लेकर आता था। मौसी मामा के बच्चों को पहले ही बोल दिया जाता था कि हम आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ, बहुत मजा आएगा। उस समय साथ सफर करना, ट्रेन या बस में बैठकर बातें करना, रास्ते के नजारे देखना और हंसना खेलना ही असली आनंद हुआ करता था। रिश्तों में औपचारिकता नहीं बल्कि अपनापन होता था। मगर आज समय कुछ बदल सा गया है। अब छुट्टियों की योजनाएं चुपचाप बनाई जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि उसकी योजना के बारे में किसी और को पता चले, और जब पता चलता भी है तो जवाब तैयार रहता है कि अरे अचानक प्लान बन गया था। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि आज के समय में लोग अकेले रहना और अकेले घूमना ज्यादा पसंद करने लगे हैं। मगर सवाल ये है कि समाज में ये बदलाव क्यों आ रहा है? इस बदलाव के पीछे एक नहीं कई कारण हो सकते हैं। दरअसल आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर इंसान अपने काम, स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझा हुआ है। ऐसे में साथ घूमने का मतलब समय, खर्च और पसंद से समझौते। अकेले यात्रा में ना किसी को समझाना पड़ता है और ना किसी का इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा डिजिटल दुनिया ने भी रिश्तों की प्रकृति बदल दी है। सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ तो दिया है, लेकिन भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं दूर भी कर दिया है। हमेशा डिजिटली जुड़े रहने की वजह से आज लोग स्वतंत्रता और निजी स्पेस को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रहकर ही वो खुद को बेहतर समझ सकते हैं। मगर सवाल है कि क्या सामूहिक यात्राओं का आनंद और अपनापन आपको अकेले किया गया सफर दे पाएगा? सोचिएगा जरूर। ट्यून किया है आपने आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। तारीख है आज 24 मई 2026 और दिन है आज रविवार का। तो चलिए सबसे पहले फटाफट से देख लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त अपने शहर बनारस में खास। देखिए, काशी को संवारने की दिशा में बीएचयू और नगर निगम मिलकर काम करेंगे। जी हां, इसके लिए दोनों संस्थानों के बीच कल शनिवार को एमओयू किया गया। कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी की मौजूदगी में कुल सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी के तहत दोनों संस्थान शहरी प्रबंधन, अवसंरचना विकास, सतत पर्यावरण, नागरिक सेवाओं और सौंदर्यकरण बिंदुओं पर संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। बीएचयू और नगर निगम के बीच हुए समझौते के तहत नगर निगम विश्वविद्यालय परिसर और उसके आसपास विभिन्न नागरिक अवसंरचना और सुंदरीकरण परियोजनाओं का क्रियान्वयन करेगा। इनमें कंदवा क्षेत्र में वर्षा जल निकासी अवसंरचना का विकास, हैदराबाद गेट से डाफी कॉरिडोर का विकास, मालवीय द्वार और विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश क्षेत्र के आसपास सौंदर्यीकरण के साथ आधारभूत सुविधाओं का विकास शामिल है। इसके अलावा वाराणसी नगर निगम विश्वविद्यालय के सहयोग से उद्यानिकी विकास, शहरी विकास, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्यों को भी आगे बढ़ाएगा। समझौते के तहत विद्यार्थियों के संरचित इंटर्नशिप और क्षमता संवर्धन के अवसर मिलेंगे। नगर निगम हर साल कम से कम 50 इंटर्नशिप अवसर उपलब्ध कराएगा, जिनमें शहरी प्रशासन, अभियांत्रिकी कार्य, नियोजन, स्वच्छता और सामाजिक पहलों से जुड़े क्षेत्र शामिल होंगे। इसमें विद्यार्थियों को नागरिक प्रशासन और शहरी प्रबंधन के व्यावहारिक पक्षों का अनुभव प्राप्त होगा। समझौते के तहत विश्वविद्यालय परिसर में निराश्रित गोवंश प्रबंधन, आवारा कुत्तों के टीकाकरण और नियंत्रण और स्वच्छता नागरिक समन्वय तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए संयुक्त पहल भी प्रस्तावित है। कार्यक्रम में कुलपति ने कहा कि नगर निगम के साथ मिलकर शहर में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब लाभार्थियों की आयु प्रमाणित करने हेतु शासन ने आधार कार्ड

को मान्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है। समाज कल्याण अधिकारी गिरीश चंद्र दुबे के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन करने वालों के आयु प्रमाण पत्र संबंधी नियमों में बदलाव किया गया है। नगरीय क्षेत्र के आवेदकों के लिए आयु प्रमाण के रूप में हाईस्कूल स्तर का शैक्षणिक प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस मान्य होंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को कुटुम्ब रजिस्टर की नकल अथवा शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और दिन में सड़कों और घाटों पर सन्नाटा पसरा रहा है। बावजूद इसके भेलूपुर और अर्दली बाजार क्षेत्र का AQI लगातार खराब बना हुआ है। बीते 16 मई से दोनों क्षेत्रों का AQI 100 के ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जो खराब श्रेणी में माना जाता है। BHU के पर्यावरणविद राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि इस समय तापमान सामान्य से काफी ऊपर चल रहा है। बीते एक महीने से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है, जिससे भीषण गर्मी पड़ रही है। सुबह 8 बजे के बाद ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जा रहा है। इसका प्रमुख कारण तेज गर्मी और हवा की कम रफ्तार है। उन्होंने बताया कि मई में तापमान अधिक होने और हवा धीमी चलने से प्रदूषण एक ही जगह जमा हो जाते हैं। धूल बढ़ना, सड़कों की खुदाई, निर्माण कार्य, टूटी सड़कें और सूखी मिट्टी से लगातार धूल उड़ती रहती है। भेलूपुर और अर्दली बाजार क्षेत्र में सकरी सड़कों पर ट्रैफिक के कारण ये स्थिति और गंभीर हो जाती है। दोनों इलाकों में वाहनों का दबाव भी अधिक है। इसके साथ ही गर्मी से लोगों को अभी अगले हफ्ते तक किसी तरह की राहत मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं दिख रही है। जिस तरह से तपिश बढ़ रही है, उससे दिन और रात में बेचैनी बढ़ गई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिन यानी कि 24 और 25 मई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 26 और 27 मई को भी गर्मी बरकरार रहने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर कल सोमवार से नौतपा की शुरुआत भी हो रही है, ऐसे में गर्मी और बढ़ने के आसार हैं। मई महीने का दूसरा सप्ताह बीतने के बाद से ही मौसम ने ऐसी करवट ली है कि हर कोई परेशान हो गया है। दिन में गर्म हवाएं चलने के साथ ही धूप भी काफी तीखी हो रही है और इतना ही नहीं, रातों में भी उमस बढ़ गई है। कल शनिवार को अन्य दिनों की तुलना में धूप काफी तेज रही, इस वजह से लोग गर्मी से बेहाल रहे। दिन की गर्मी का असर रात में भी देखने को मिला। कल शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक होकर 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा। BHU के मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले सप्ताह तक मौसम ऐसे ही बने रहने के आसार हैं। 24 और 25 मई को बनारस रेड जोन में रहेगा। दिन में गर्म हवाएं चलती रहेंगी और तापमान बढ़ने की संभावना है। कल सोमवार से शुरू होकर नौतपा 2 जून तक चलेगा। इन दिनों धूप और अधिक तीखी होगी, तो भाई ऐसे में अपना बहुत ख्याल रखिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए और जरूरत ना हो तो 12 बजे से 4 बजे तक के बीच घर के अंदर ही रहिए। तो जी, ये रहा अपने शहर का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 24th ऑफ मई। आज के दिन साल 1830 में अमेरिका में पहली बार यात्री रेल रोड सेवा की शुरुआत हुई। साल 1844 में वैज्ञानिक सैमुअल मोर्स ने वाशिंगटन से बाल्टीमोर 40 मील दूर के बीच टेलीग्राफ का पहला संदेश भेजा था। साल 1875 में महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जिसे आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ ही आज के दिन 1819 में ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया का जन्म हुआ। ईयर 1954 में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल का भी आज के दिन जन्म हुआ। ईयर 1955 में आज के दिन संगीतकार राजेश रोशन का जन्म, और साल 2000 में मजरूह सुल्तानपुरी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अब स्पेशल इवेंट्स की बात करें तो आज है राष्ट्रीय भाई दिवस यानी कि नेशनल ब्रदर्स डे। हर साल ये आज ही के दिन मनाया जाता है। ये दिन भाइयों के साथ साझा किए गए प्यार, समर्थन और आजीवन रिश्ते का सम्मान करने के लिए समर्पित है। ब्रदर्स डे का इतिहास और महत्व, इस दिन की शुरुआत मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई थी, लेकिन अब ये भारत सहित दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसके साथ ही आज है कॉमनवेल्थ गेम्स डे यानी राष्ट्रमंडल खेल दिवस। और आपको बता दें कि भारत आज कॉमनवेल्थ गेम्स डे के अवसर पर फिटनेस और खेल संस्कृति को नई ऊंचाइयां देने जा रहा है। खेल और युवा शक्ति का महाकुंभ बने इस खास दिन देश भर में 8000 से अधिक स्थानों पर फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल अभियान के तहत लाखों लोग साइकिल चलाते नजर आएंगे। इस राष्ट्रव्यापी आयोजन का मुख्य केंद्र गुजरात का

अहमदाबाद होगा, जहां इस अभियान का ऐतिहासिक 75वां एडिशन आयोजित किया जाएगा। ए न्यू आइकन फॉर फिटर इंडिया पैडलिंग टू 2030 अर्थात फिट इंडिया की नई पहचान 2030 की ओर बढ़ते साइकिल के कदम थीम के साथ होने वाला ये मेगा इवेंट भारत के फिट और खेल महाशक्ति बनने के विजन को भी दुनिया के सामने पेश करेगा। अहमदाबाद में इस आयोजन की अगुवाई केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी करेंगे। कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए मशहूर बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और रजनी एतिमारपू, गुरजीत कौर, सोनिका टैंडी हॉकी, अंकुर मित्तल, अंजुम मौदगिल शूटिंग और तृप्ति मुलगुंडे बैडमिंटन जैसे देश के कई ओलंपियन और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता भी हिस्सा लेंगे। और आपको बता दें कि ये दिन मुख्य रूप से उन देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। ये क्वीन विक्टोरिया के जन्मतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। And now, Banaras, let's move on to your favorite segment, बात जरूरत की। देखिए, बीते 27 अप्रैल को बटाला अमृतसर नेशनल हाईवे पर चलती कार आग का गोला बन गई। ऐसा ही एक हादसा जालौन यूपी के नेशनल हाईवे 27 पर भी हुआ, जहां कार में अचानक आग लग गई। दोनों हादसों की वजह भीषण गर्मी और शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। गनीमत यह रही कि दोनों हादसों में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। देखिए, गर्मियों में थोड़ी सी लापरवाही भी कार ब्लास्ट का कारण बन सकती है, इसलिए आज इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि गर्मियों में कार ब्लास्ट का रिस्क क्यों बढ़ता है और गर्मियों में कार को कैसे ठंडा रख सकते हैं। देखिए, ज्यादा गर्मी से कार के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। अगर कार में डीओ, परफ्यूम, सैनिटाइजर या लाइटर जैसी ज्वलनशील चीजें हों तो ब्लास्ट का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। बैटरी ओवरहीट होकर गैस बना सकती है, पेट्रोल लीकेज होने पर आग लग सकती है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार अगर बाहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है और कार 20 मिनट तक धूप में खड़ी है तो अंदर का तापमान करीब 53 डिग्री तक पहुंच सकता है। जो हिस्सा धूप के सीधे संपर्क में होता है वही सबसे ज्यादा गर्म होता है, जैसे कि डैशबोर्ड, स्टीयरिंग व्हील, सीट्स, सीट बेल्ट बकल, गियर नॉब और दरवाजे के हैंडल। गर्मी के कारण टायर की हवा विस्तार लेती है जिससे अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। अगर टायर में ज्यादा हवा है या सड़क बहुत गर्म है तो टायर फटने का रिस्क बढ़ जाता है। वहीं ज्यादा तापमान के कारण बैटरी में केमिकल रिएक्शन तेज हो जाते हैं। ओवरहीटिंग से बैटरी फ्लूइड तेजी से भाप यानी कि गैस बनने लगता है। अगर वेंटिलेशन या मेंटेनेंस ठीक ना हो तो बैटरी डैमेज हो सकती है या गंभीर मामलों में बैटरी फट भी सकती है। फ्यूल टैंक को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो प्रेशर संभाल सके। हालांकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने पर पेट्रोल भाप बनने लगता है, इससे टैंक और फ्यूल लाइनों में दबाव बढ़ता है। अगर कहीं लीकेज हो, पेट्रोल टैंक की कैप ढीली हो या पाइप सील खराब हो तो ये ज्वलनशील वेपर बाहर निकलकर किसी स्पार्क, इलेक्ट्रिक फॉल्ट, गर्म इंजन पार्ट से आग पकड़ सकते हैं। तेज धूप में खड़ी कार के अंदर का तापमान बाहर से कई गुना ज्यादा हो सकता है, इससे छोटी मोटी चीजें भी खतरनाक बन सकती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, पावर बैंक, एरोसोल या प्रेशर कैन जैसे कि डिओड्रेंट, परफ्यूम स्प्रे, लाइटर, माचिस, दवाइयां, फूड आइटम्स, डेयरी या पका हुआ खाना, बैटरियां या पुराने सेल। गर्मियों में कार के अंदर फोन, लैपटॉप या पावर बैंक जैसी बैटरी वाली डिवाइस खराब हो सकती है। हमेशा कोशिश करिए कि कार छांव या कवर में खड़ी हो। अगर खुली जगह है तो सनशेड, विंडशील्ड कवर इस्तेमाल करें। कार के अंदर डीओ, परफ्यूम, सैनिटाइजर, लाइटर, पावर बैंक, फोन, लैपटॉप जैसी ज्वलनशील या बैटरी वाली चीजें बिल्कुल भी मत छोड़ें। खिड़कियां हल्की सी 1-2 सेंटीमीटर खुली छोड़ने से अंदर की गर्म हवा निकलती रहती है। पार्किंग से पहले देख लें कि कहीं फ्यूल या ऑयल लीकेज तो नहीं है। लंबे समय के लिए खड़ी कर रहे हैं तो टायर प्रेशर और कूलेंट लेवल भी मेंटेन रखें। ये छोटे कदम ओवरहीटिंग, आग या डैमेज के रिस्क को काफी कम कर देते हैं। अच्छा, एक सवाल अब ये आता है कि कार में बैठने से पहले उसे जल्दी ठंडा कैसे करें। तो कुछ छोटे छोटे तरीके अपनाकर कार जल्दी कूल हो सकती है, जैसे कि
डोर फ्लश टेक्निक अपनाएं, जैसे कि एक दरवाजा खोलकर दूसरे को दो से तीन बार खोलें या बंद करें। स्टीयरिंग और सीट कवर का इस्तेमाल करें। डैशबोर्ड पर हल्का पानी स्प्रे कर सकते हैं। एसी वेंट के सामने हल्का गीला कपड़ा रखें, हवा ज्यादा ठंडी हो जाएगी। बैक सीट एसी वेंट

ऑन करें, इससे पूरी कार में कूलिंग जल्दी फैलती है। कुछ आसान तरीके अपनाकर कार को कूल और आरामदायक रखा जा सकता है। इसके लिए कार स्टार्ट करने से पहले 1 से 2 मिनट के लिए विंडो खोलें, गर्म हवा बाहर निकलने दें। शुरुआत में फैन हाई स्पीड पर चलाएं, अब विंडो पूरी तरह बंद कर लें, फिर एसी ऑन करें, कूलिंग जल्दी होगी। कुछ देर बाद फैन स्पीड मीडियम कर दें। इंजन कूलेंट ही इंजन के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इंजन चलने पर हीट पैदा

करता है। इंजन चलने पर हीट पैदा करता है और कूलेंट उस गर्मी को सोख कर रेडिएटर के जरिए बाहर निकालता है। अगर कूलेंट कम हो या खराब हो जाए तो इंजन तेजी से गर्म होकर बंद पड़ सकता है, गैस टैंक खराब हो सकती है या गंभीर डैमेज तक हो सकता है। ऐसे में कुछ सिग्नल इग्नोर नहीं करने चाहिए, जैसे टेम्परेचर मीटर की सुई नॉर्मल से ऊपर चली जाए, इंडिकेटर रेड जोन के पास पहुंचने लगे, डैशबोर्ड पर वार्निंग या थर्मामीटर लाइट ऑन हो जाए, बोनट के नीचे सफेद भाप या धुएं दिखने लगे, इंजन से टक टक या नॉकिंग की आवाज आए, एसी की कूलिंग अचानक कम हो जाए। कुल मिलाकर थोड़ी सतर्कता और सही आदतें अपनाकर न सिर्फ कार को सुरक्षित रखा जा सकता है बल्कि अपनी और दूसरों की जान का जोखिम भी टाला जा सकता है। बात जरूरत की। सो आई होप आज गुड मॉर्निंग बनारस का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा एंड इफ यस देन डू शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज ऑन PKLGAIR वाराणसी @gmail.com। मेरा नाम है सना सलीम और आप मुझे सुन रहे थे आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। एंड हियर आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ्स। खुश रहिए, प्यार बांटिए और कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी का भी दिल न दुखे। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी डे। बाय बाय।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रादेशिक समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: और अब समाचार विस्तार से। राजधानी लखनऊ, वाराणसी और आगरा सहित देश के 47 अलग अलग स्थानों पर कल रोजगार मेले का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। उन्होंने कहा कि देश अब पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है।
2: लखनऊ में 330 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र हमने दिए और मैं कह सकता हूँ ये माने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करके इस तरह से महिलाओं के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम होता है।
0: वाराणसी के बरेका परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इस दौरान 341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही राष्ट्र सेवा का अवसर भी प्रदान करती है।
3: अपने काम को खुद एनालाइज करिए, खुद उसका विश्लेषण करिए। ये काम मैंने किया, मैं इसे 100% सैटिस्फाइड हूं। क्या और किसी तरीके से किया जा सकता है? और बेहतर ढंग से किया जा सकता है? और हर काम में इंप्रूवमेंट का हमेशा स्कोप होता है। और एक दिन में बहुत लंबी लंबी छलांग मारनी ऐसा भी मत सोचिए। टेक स्मॉल स्टेप्स, दैट इज जो छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, आपने ये हमेशा जीवन में आप।
0: आगरा में रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। श्री बघेल ने रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
4: मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश को जो उन्होंने सरकारी नौकरियों के रोजगार के लिए वादा किया था वो पूरा हुआ है। इसके अलावा भी जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तमाम स्टार्टअप के माध्यम से, अन्य माध्यम से भी रोजगार दिए जा रहे हैं।
0: रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में श्रम एवं सेवा योजन विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने वर्तमान में 20 जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना की चर्चा करते हुए इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। बांदा प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान वाला जिला बना हुआ है। बांदा के अपर जिलाधिकारी

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में लिया हिस्सा, कहा देश के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाने के लिए भारत विश्व के कई देशों के साथ कर रहा साझेदारी। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की श्रम और सेवा योजन विभाग की समीक्षा बैठक, नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेले गए आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया।

0: कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
1: बांदा में जैसा कि टेम्परेचर लगातार उसी स्थिति में बना हुआ है, तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन नित नए प्रयोग रोजाना कर रहा है। अभी तक हम लोग सब विभागों को उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनके कार्य हैं, वो उन्हें करने के लिए निर्देशित कर रहे थे।
0: उधर अयोध्या में कल तेज आंधी के साथ हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर में MP MLA सेशन कोर्ट ने कल सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खां की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा बरकरार रखी गई है, लेकिन उनके जुर्माने की रकम को बढ़ाया गया है। महोबा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य नीरज रावत की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा निवर्तमान प्रदेश सचिव ब्रजराज सिंह और 30 अज्ञात समर्थक भी शामिल हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कल फिर वृद्धि की गई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। प्रदेश में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमतों में करीब 86 पैसे और डीजल में करीब 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी मौलवी सेकेंडरी तथा आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परिणाम कल घोषित किया गया। इस वर्ष मदरसा बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 88.26% रहा। परिणाम में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। IPL मुकाबले में कल लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच खेला गया। इस मैच को पंजाब ने कप्तान श्रेयस अय्यर की शतकीय पारी के बल पर 7 विकेट से जीत लिया। पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर लखनऊ की टीम को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 196 रन बनाए और पंजाब को जीत के लिए 197 रन का लक्ष्य दिया, जिसे उसने 18 ओवर में 3 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। इस हार के साथ IPL के इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर समाप्त हो गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में लिया हिस्सा। कहा, देश के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाने के लिए भारत विश्व के कई देशों के साथ कर रहा साझेदारी। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेले गए IPL मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता, तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता, तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
4: म मीडियम।

41.5 4 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन EIR ऐप, DTI DRM और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित छन्नूलाल मिश्र का गाया राग देसी। विलंबित रचना एक ताल में, द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत की है कुमारलाल मिश्र ने, सारंगी पर जक्कन खान, हारमोनियम पर डॉक्टर रामचंद्र भागवत और तानपुरा पर हैं अभिषेक सिंह।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित छन्नूलाल मिश्र का गाया राग देसी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे कुमार लाल मिश्र, सारंगी पर जक्कन खान, हारमोनियम पर थे डॉक्टर रामचंद्र भागवत और तानपुरा पर थे अभिषेक सिंह। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, सुबह के 8 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: घर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक CCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के

0: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
1: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव

0: प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जीराम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जीराम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
4: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जलडमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही हैं। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर कर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में

0: पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोकसत्ता में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमेरिका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ता ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
0: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक सीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गोविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasthya Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. U.S. President Donald Trump says Iran deal, including reopening of Strait of Hormuz, largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. Now the news in detail.

0: in the event. And in IPL cricket, riding an unbeaten 101 runs by skipper Shreyas Iyer, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in Lucknow last night. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants, Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
1: Thank you, Anuja. The visit of US Secretary of State Marco Rubio and his meeting with Prime Minister Narendra Modi has been prominently covered by most of the newspapers. PM backs peace push with renewed push to repair ties in meeting with Rubio is the front page headline in Hindustan Times, while the Tribune writes, India flags energy crisis. State Secretary tows US oil, extends Trump's invite to Modi to visit White House. Another headline in Hindustan Times says, headway in Iran-US talks raises truce hopes. Quoting Defense Minister Rajnath Singh, Asante Pioneer, headline says, India to be biggest weapon exporter in 25-30 years, adding the government wants private sector share in defense production to rise to 50%. The Hindu reports on new law Viksit Bharat Jiramji replacing the 20-year-old MG Narega, set to come into effect from 1st of July, with draft rules open for feedback till 3rd week of June. Under the headline, big poor states to get higher funds under government's new rural job scheme. Hindustan Times editorial writes how Sikkim showcases a thoughtful vision of development while respecting tradition and an exemplary social harmony to its education sector, opening the doors to the future. More red, white and blues for green card applicants, states the Economic Times, as new policy for US immigration may force permanent residency seekers to return home for paperwork. And finally, the Sunday Times reports that only 6 states now have fertility rate above replacement level. The paper refers to latest sample registration report of 2024. And with that, it's back to Ganucha.
0: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasthya Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. U.S. President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinder Veer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना पहले इस वक्त की खास खास खबरें वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मुजाकिरात करेंगे आयुष्मान भारत स्कीम जुलाई से मगरबी बंगाल में शुरू होने जा रही है इसमें स्वास्थ्य साथी मुस्तफिदीन को भी शामिल किया जाएगा महाराष्ट्र एसआईटी ने नासिक टीसीएस जिंसी ज्यादती और मजहब की तब्दीली के केस में 4 मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म दायर की है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है भारत के महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली समेत शिमाली वस्ती और मशरिकी भारत के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई की है एथलेटिक्स में रांची में गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप में एक नए कौमी रिकॉर्ड के साथ मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता है अब खबरें तफसील से वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे तवक्कु है कि दोनों रहनुमा इलाकाई और आलमी अमन के अलावा सलामती से मुतालिक उमूर समेत दीगर मामलात पर भी वसी तर तबादले ख्याल करेंगे वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड के वजराए खारजा की मीटिंग में शिरकत की गरज से 4 दिन के दौरे पर कल भारत पहुंचे उन्होंने कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें दिफा अहम टेक्नोलॉजीज तिजारत और सरमायाकारी के अलावा توانائی کی فراہمی، کنیکٹیویٹی، تعلیم اور

0: उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मरीज की देखभाल में और ज्यादा सहूलियात पैदा करने और उन्हें मुस्तहकम बनाने के लिए 11 नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हुकूमत वसीदर अवामी सलाह मशवरे के लिए VBG राम जी एक्ट 2025 के तहत जाब्तों का मसौदा शाय कर दिया है। देही तरक्की की वजारत ने कहा है कि कोई भी फर्दो फरीक तंजीम या कोई इदारा अगले माह की 21 तारीख तक सलाह मशवरे के लिए जाब्तों के मसौदे पर अपने एतराजात या तजावीज पेश कर सकता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जीराम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट MGNREGA 2005 की जगह ले ली है। इस कानून का मकसद एक माली साल में कानूनी रोजगार की जमानत 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। वजारत के मुताबिक जाब्तों के मसौदे सेक्शन 33 और इस कानून की दीगर मौजूदा शिकों के मुताबिक वज़ किए गए हैं। वजारत ने कहा है कि उबूरी शिकों के जाब्ते कौमी सतह की कायम कमेटी के जाब्तों, मरकजी ग्रामीण रोजगार गारंटी कौंसिल के जाब्ते, इंतजामी इखराजात के जाब्ते व शिकायत के इजाले केस से मुतालिक जाब्ते समय जाब्तों के मसौदे सलाह मशवरे के लिए अवामी सतह पर रखे गए हैं। नए कानून में बरवक्त शफाफ और जवाबदेह उजरत की अदायगियों पर काफ़ी जोर दिया गया है। इस कानून में बेरोजगार भत्ते की भी गुंजाइश फराहम की गई है, बशर्ते के मुकर्रर वक्त के अंदर काम नहीं फराहम किया जाता। VBG राम जी एक्ट 2025 इस साल 1 जुलाई से निफाज के साथ तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शुरू करने के लिए इस माह की 11 तारीख को नोटिफाई किया गया था। नई दिल्ली से अक्षित वैद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और खित्ते में दीगर हलीफ मुल्कों के साथ फोन पर गुफ्तगू के बाद आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक मुजाकिरात हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस पेशरफ्त का ऐलान करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि इस मुआहदे के हतमी पहलुओं और तफसीलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और जल्द ही उनका ऐलान कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इसराइल के साथ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन और बहरीन के लीडरों के साथ बातचीत की थी। इससे पहले ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सरकारी टेलीविजन पर बताया कि पिछले हफ्ते अमरीका और ईरान के मौकफ में कुछ तब्दीलियां आई हैं, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि इसका मतलब ये नहीं कि अहम उमूर पर समझौते हो जाएंगे। उन्होंने अमरीकियों पर मुतजाद बयानात देने का इल्जाम लगाया। ईरान 8 अप्रैल को जंगबंदी पर मुत्तफिक हुआ था और इसके बाद से वॉशिंगटन और तेहरान एक तवील मुद्दती अमन मुआहदे पर बातचीत में मसरूफ हैं। वॉशिंगटन में सदारती कॉम्प्लेक्स के नजदीक गोलियों के चलने की आवाज सुनने के बाद व्हाइट हाउस के नजदीक सिक्योरिटी के ताल्लुक से खौफ हिरास पैदा हो गया। इससे कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की तरफ से फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। अमेरिका की खुफिया सर्विस ने पेश आए इस वाकये के नजदीक एक मुश्तबा शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया और अफरा तफरी के दौरान एक राहगीर को भी गोली लगी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि वो इस वाकये की तफसीलात हासिल करने के बाद अवाम को जानकारी फराहम करेंगे। जमहूरिया कांगो में हुकाम ने बताया है कि मुल्क में इबोला वायरस के फैलने से मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 204 हो गई है। मुल्क की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 204 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि इबोला वायरस के कुल 867 केसेस सामने आए हैं। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के हिस्सों में सख्त गर्मी की लहर की पेशगोई की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की सूरत हाल रहने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश, गंगाई मगरबी बंगाल और उड़ीसा में गर्म और मरतूब मौसम रहने का इम्कान है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में रात में गर्मी की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आसाम, मेघालय, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज अंडमान और निकोबार, जजायर, बिहार, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप और शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में गरज चमक का इम्कान है। गुरिंदरवीर सिंह ने 10.09 सेकंड के एक नए कौमी रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ 2026 के एथलेटिक्स फेडरेशन

0: एशियन कप में मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता। उन्होंने अपने साबिका जाति बेहतरीन रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ा, जो 10.17 सेकंड का था और 10.16 सेकंड के कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वालिफिकेशन निशाने को आसानी से उबूर कर लिया। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड की टाइमिंग के साथ चांदी का तमगा हासिल किया, जबकि प्रणॉय प्रमोद ने 10.29 सेकंड में अपना मुकाबला जीतकर कांसे का तमगा हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर की 101 रन की शानदार कारकर्दगी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। आज 2 मैच होने हैं, जिसमें पहला मैच दोपहर 3:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान होगा और दूसरा मैच शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के भारत दौरे से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की इस सिलसिले में शह सुर्खी है, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, भारत अमरीका आलमी अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक नुमायां सुर्खी है, वजीर आजम ने 51,000 नौजवानों को तकर्रुरनामे तकसीम किए, कहा विकसित भारत में नौजवानों का अहम रोल। अखबार ने मुल्क में जारी शदीद गर्मी से मुतालिक सुर्खी लगाई है, अगले चंद दिनों में दिल्ली एनसीआर समेत मुल्क के बड़े हिस्सों में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं। अखबार प्रताप ने भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जमान आरपी सिंह के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि संगीन माली और इंतजामी बहरान की तरफ बढ़ रहा है पंजाब।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मुज़ाकरात करेंगे। आयुष्मान भारत स्कीम जुलाई से मगरबी बंगाल में शुरू होने जा रही है, इसमें स्वास्थ्य साथी मुस्तफिदीन को शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र एसआईटी ने नासिक पीसीएस जिंसी ज्यादती और मजहब की तब्दील के केस में 4 मुलजिमान के खिलाफ फर्द जुर्म दायर की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली समेत शिमाली वस्ती और मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई की है। और एथलेटिक्स में रांची में गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप में एक नए कौमी रिकॉर्ड के साथ मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मधुरिमा।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए, आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1 लाख दो, बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
6: आरबीआई कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
9: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
8: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
9: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
8: बुकिंग है तो संपर्क करें
10: 0542227658,
11: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
5: आकाशवाणी @90 90 साल की आवाज।

आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अभी तो जी ले, यह फिल्म का नाम। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, नक्श लालपुरी की रचना,

सपन जगमोहन के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे नक्श लैलपुरी की रचना। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें थी। अभी तो जी ले फिल्म का ये गाना था, अब हैसियत फिल्म का ये गीत। ये आवाज यशुदास की, गीतकार इंदिवर और संगीतकार बप्पी लहरी।

0: सुबह के 8:59 और 32 सेकेंड आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा। कार्यक्रम का अगला गाना हम सुनवाएंगे आपको इस अंतराल के बाद।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: गंगा की सौगंध, इस फिल्म का गीत आइए सुने। गीतकार अंजान और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, और ये आवाज लता मंगेशकर की।

सदाबहार खिलने गाने आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा में। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे अनजान की रचना। ये आवाज थी लता मंगेशकर की, फिल्म थी गंगा की सौगंध। एक और प्यारा सा गीत। हरे कांच की चूड़ियां, ये फिल्म का नाम। आशा भोसले की आवाज, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का ये मधुर संगीत।

0: शैलेंद्र की रचना आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में यह आवाज थी आशा भोसले की। फिल्म थी हरे कांच की चूड़ियां। कार्यक्रम का आखिरी गाना
1: हरी हरी
0: ये आवाज मुकेश की।

सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे भरत व्यास की रचना। मुकेश और साथियों की आवाजें थी, बूंद जो बन गए मोती फिल्म का गाना था। आज मधुरिमा का सफर बस यहीं पर। आज इस कार्यक्रम को हमने सजाया इन फिल्मों के गीतों से, अभी तो जीले, हैसियत, गंगा की सौगंध, हरे कांच की चूड़ियां और बूंद जो बन गए मोती।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे, प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के आम जनजीवन पर प्रभाव और बचाव के लिए प्रशासनिक इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
2: प्रदेश भीषण गर्मी और लू के चपेट में है। मई के महीने में प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जबकि बुंदेलखंड का बांदा लगातार देश के सबसे गर्म स्थानों में शामिल है। यहां अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार तक दर्ज किया गया। वहीं प्रयागराज, हमीरपुर, झांसी, आगरा और जालौन जैसे जिलों में भी तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि साल दर साल जलवायु में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण गर्म दिनों की संख्या बढ़ रही है। बांदा में ज्यादा तापमान उसकी भौगोलिक स्थितियों के कारण है।
3: तापमान बढ़ने की वजह से गर्म दिनों और गर्म रातों की संख्या बढ़ रही है, जबकि ठंडी का मौसम जो है वो श्रिंक हो रहा है। बांदा जो या प्रदेश का पूरा ही दक्षिणी इलाका जो है वो फेवरेबल रीजन होता है ज्यादा तापमान के लिए। उसके कई सारे भौगोलिक कारण भी हैं और कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। बांदा जो है वो जलवायवी तौर पर भी सबसे गर्म रहने के लिए उसकी जलवायु ही फेवर करती है। लेकिन अगर इस साल की परिप्रेक्ष्य में बात करें कि जैसे मैंने बताया कि उत्तरी इलाके में ज्यादा तापमान होंगे, पूरे पूर्वांचल में ज्यादा तापमान होंगे, तो इसके लिए दो तीन फैक्टर होते हैं जो ग्लोबल फोर्सिंग

0: है या रिमोट फोर्सिंग हम बोलते हैं, वो इंसो होती है, एल्निनो सदर्न ऑसिलेशन।
1: अत्यधिक तापमान के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और पहले से बीमार लोगों का खास ध्यान रखना होता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और हीट वेव को देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने भी खास तैयारी की है। अस्पतालों में अलग से इंतजाम करने के साथ ही लोगों को गर्मी से बचाव के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में गाजियाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग ने सभी CHC और सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त बेड का इंतजाम किया है। गाजियाबाद के CMO अमित विक्रम ने बताया कि विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि गर्मी में अनावश्यक बाहर ना निकलें, बाहर निकलने से पहले पर्याप्त पानी का सेवन करें और सर ढककर ही बाहर निकलें।

0: अस्पतालों में अलग से इंतजाम करने के साथ ही लोगों को गर्मी से बचाव के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में गाजियाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएचसी और सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त बेड का इंतजाम किया है। गाजियाबाद के सीएमओ अमित विक्रम ने बताया कि विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि गर्मी में अनावश्यक बाहर न निकलें, बाहर निकलने से पहले पर्याप्त पानी का सेवन करें और सर ढककर ही बाहर निकलें।
1: हमारे यहाँ जनपद गाजियाबाद में तीन बड़े जनपदीय लेवल के चिकित्सालय हैं, तीनों में 10-10 बेड्स का हमने कोल्ड रूम थे, उसकी तैयारियां हो चुकी है। सभी जगह पे ORS और जिंक का टैबलेट्स और सॉल्यूशंस वगैरह सब है और पानी पीने का साफ पेयजल और कूलर्स वगैरह सब जगह इंस्टॉल्ड है।
0: बुंदेलखंड के जिलों में भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आवश्यक दवाओं, ORS और ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। टीमें लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई हैं।
2: इस समय है कि काफी भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके बढ़ने की ही संभावना है। मेरा सभी लोगों से सबसे पहले तो अनुरोध है कि जो विशेषकर समय जो होता है गर्मी का, वो अपना सुबह 9-10 बजे से लेकर जो शाम के 4-5 बजे तक रहता है, अगर कोई विशेष कार्य हो तो ही आप इस समय अपने घरों से बाहर या अपने जो कार्यस्थल है उससे बाहर निकले, और जब भी खुले में निकले या कहीं भी जाए तो विशेषकर अपने साथ पानी की उचित व्यवस्था या इलेक्ट्रोलाइट की या नींबू पानी इत्यादि इस तरीके का अपना ध्यान जरूर रखें। अच्छे से अपने खान पान का ध्यान रखें।
0: भीषण गर्मी के कारण इस बार प्रदेश में बिजली की मांग ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। गर्मी में लोगों को परेशानी न हो इसे लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्नाव में विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए विभाग ने सरैया, शुक्लागंज और गंगा घाट टाउन सब स्टेशनों पर लगे हुए बड़े ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए जंबो कूलर लगाए हैं। यहाँ SDO राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि लोड मैनेजमेंट और लो वोल्टेज की समस्या से निपटने के लिए पुराने ट्रांसफार्मरों को हटाकर उच्च क्षमता वाले पावर ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। शहरों में गर्मी ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ते तापमान ने लोगों की दिनचर्या और कामकाज को प्रभावित किया है। खेतों में काम करने वाले किसान हो, मजदूर वर्ग या पशु, गर्मी का असर सब पर दिख रहा है। दोपहर में अधिक तापमान के कारण किसान खेतों में सुबह और शाम ही काम के लिए जा पा रहे हैं। निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों और दिहाड़ी श्रमिकों को तेज धूप में काम करने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्रावस्ती की जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों से भी दोपहर के समय घरों में ही रहने की अपील की है और बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी बिजली के विशेष प्रबंध प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं।
3: हीट वेव के दृष्टिगत जनपद श्रावस्ती में सभी CHCs पर जिला अस्पताल में कोल्ड रूम की व्यवस्था की गई और नगर क्षेत्रों में, गांव क्षेत्रों में जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है और नगर पालिका को बताया गया है कि जितने भी वाटर कूलर्स हैं वो ठीक चलते हैं और पोखरों के लिए, तालाब के लिए भी पंचायती राज से कोऑर्डिनेट करके व्यवस्था।
0: गर्मी का असर केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है बल्कि पशु पक्षी भी इससे गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तेज धूप और जल स्रोतों के सूखने से पशुओं को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, दूध देने वाले पशुओं के उत्पादन में भी कमी आ सकती है। इन स्थितियों को देखते हुए प्रदेश के चिड़ियाघरों, लॉयन सफारी में विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। इटावा सफारी पार्क में वन्य जीवों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उप निदेशक विनय सिंह ने बताया कि सफारी क्षेत्र में फॉगर शॉवर से तापमान कम किया जा रहा है, भालू लेपर्ड हाउस में कूलर लगाए गए हैं तो हिरणों के तालाब ट्यूबवेल से भरे जा रहे हैं। गर्मी के कारण सफारी का समय भी बदलकर सुबह 6:30 बजे कर दिया गया है।
4: गर्मी और लू से बचाने के लिए जो हमारे हाउस हैं उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं तो अंदर ताकि कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। बाहर जो क्राल एरिया है इसमें फॉगर लगे हुए हैं तो इनके चलाने से जो हवा में नमी है वो बनी रहती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। साथ ही धूप से बचाने के लिए सफारी क्षेत्र में प्लस जहां पे भी संभव होता है वहां पे छप्पर लगाए जाते हैं फूस के, ताकि उनको बचाया जा सके। डियर एंटीलोप

0: सफारी में है, उनको पर्याप्त तालाब जो भी बने हुए हैं सफारी क्षेत्र के अंदर, उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी रहे सुनिश्चित किया जाता है। तैयारियां की गई हैं और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि वन्य जीवों को गर्मी और लू से बचाया जाए।
1: गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच धर्मनगरी अयोध्या में राम भक्तों और भगवान दोनों की सेवा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि दर्शन मार्ग पर कैनोपी और टेंट लगाए गए हैं। जहां जहां नए दर्शन स्थल बनाए गए हैं वहां विशेष मैटिंग और कारपेट बिछाए गए हैं ताकि भक्तों के पैर गर्म जमीन से न जलें। दर्शन के बाद बाहर निकलने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़े हॉल तैयार किए गए हैं जहां बैठने, चिकित्सा और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
2: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार जहाँ से श्रद्धालु दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं उसके नजदीक एक ऐसा शेड निर्माण किया जिसको तीर्थ यात्री सेवा केंद्र नाम दिया है। वहाँ पर छाया है, लगभग 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, व्यवस्थाएं हैं नित्य उपयोग की वो उपलब्ध है। वहीं से व्हीलचेयर मिलती है, वहीं से उनके पास आदि की व्यवस्था होती है, जल पीने की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है। वहां से हमारे भक्तगण निकलते हैं तो कैनोपी प्रारंभ हो जाती है, किसी को भी धूप में चलने की आवश्यकता नहीं है, दो चार कदम की बात छोड़ दें तो।
1: बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं की अटूट आस्था निरंतर बनी हुई है। प्रतिदिन औसतन 1.5 लाख श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में मंदिर न्यास द्वारा धाम परिसर में विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के SDM शंभू शरण ने बताया कि धाम परिसर के विभिन्न स्थलों पर शुद्ध RO वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर ORS घोल और ग्लूकोज की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
3: जगह जगह पे वाटर कूलर लगाए गए हैं ताकि ठंडे पानी मिल सके। जहाँ पे वाटर कूलर नहीं है वहाँ पे बड़े बड़े मटकों में ठंडे जल रखवाया गया है। कई जगहों पे ORS घोल और ग्लूकोज की भी व्यवस्था है। उनके सर पे छाया रहे इसलिए धाम में हर जगह पे जर्मन हैंगर और टेंसाइल स्ट्रक्चर लगाया गया है।
1: साल दर साल बढ़ती गर्मी और लू मौसम में हो रहे बड़े बदलावों का न केवल बड़ा संकेत है बल्कि ये चेतावनी भी है कि हमें जल संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाने, वर्षा जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण जैसे उपायों पर गंभीरता से काम करना होगा। जागरूकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही बढ़ते तापमान और उसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है।
4: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के आम जनजीवन पर प्रभाव और बचाव के लिए प्रशासनिक इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
5: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
6: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

0: रेडियो एक प्रभावशाली माध्यम है, रेडियो का प्रयोग करें। रेडियो पर विज्ञापन सर्वोत्तम और सस्ता है, रेडियो पर विज्ञापन देकर अपनी आय बढ़ाएं। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज। न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTR DRM और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप उर्दू कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से सुनेंगे।
1: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, पेश है उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं किस्सा चार दरवेश। प्रेजेंटर हैं शादिया खान, पेशकश आसिफ इकबाल की है। किस्सा चार दरवेश का आज सुनेंगे पहला भाग।

पुरानी मस्जिद तक जा पहुंचा, जहां चार दरवेश अपनी दर्द भरी दास्तानें सुना रहे थे। पाशा खामोशी से एक गोशे में बैठकर उनकी गुफ्तगु सुनने लगा। रात गहरी हो चुकी थी, मस्जिद के सहन में सुकूत तारी था, और उन्हीं खामोश लम्हों में पहले दरवेश ने अपनी हैरत अंगेज दास्तान इस तरह शुरू की। ये सर गुजश्त मेरी जरा कान धर सुनो, मुझको फलक ने कर दिया जेरो जबर सुनो, जो कुछ की पेश आई है शिद्दत मेरे तई, उसका बयान करता हूँ तुम सर बसर सुनो। पहला दरवेश यमन के एक मालदार ताजिर का बेटा था। बाप के इंतकाल के बाद बुरी सोहबत में पड़कर उसने सारी दौलत गंवा दी। तंग दस्ती के आलम में वो अपनी बहन के पास गया। बहन ने मोहब्बत से उसकी मदद की, कुछ अशरफियां और तिजारती सामान देकर उसे सफर पर रवाना किया। कई दिनों के सफर के बाद वो एक शहर पहुंचा, मगर रात होने के बाइस शहर के दरवाजे बंद हो चुके थे। वो किले के करीब बैठ गया। इसी दौरान उसने देखा कि किले की दीवार से एक संदूक नीचे उतारा जा रहा है। जब उसने संदूक खोला तो अंदर एक निहायत हसीन मगर जख्मी दोशीजा खून में लथपथ पड़ी थी, जो दर्द से कराहते हुए बस इतना कह रही थी, ए जालिमो, खुदा तुम्हें इस जुल्म की सजा दे। उसका हाल देखकर दरवेश का दिल भर आया। उसे शहर ले जाकर किराए के मकान में ठहराया और मशहूर जर्राह को बुलाया। जर्राह ने इलाज शुरू किया और कहा, बहुत एहतियात रखने की जरूरत है, चंद रोज में फाका हो जाएगा। दरवेश दिन रात उसकी खिदमत में लगा रहा। इत्तेफाकन वो सौदागर भी आ गया, जिसे दरवेश ने माले अमानत दिया था। उसने माल वापस किया। दरवेश ने सब शहजादी के इलाज पर खर्च कर दिया। कुछ अरसे में शहजादी के जख्म भर गए और हुस्न और निखर गया। शहजादी ने दरवेश से कहा, बिला उज्र मेरी खिदमत में हाजिर रहो, यही मेरी मंजूरी है। दरवेश खिदमत करता रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता सारा माल खत्म हो गया और चेहरा फिक्र से जर्द पड़ गया। शहजादी ने परेशानी भांप ली और एक खत लिख कर दिया, फलां पते पर चले जाओ, वहां सैयदी बहार नाम का शख्स मिलेगा, उसे ये खत दे देना। दरवेश खत लेकर फौरन रवाना हुआ। मकसद तक पहुंचा, बाहर एक खूबसूरत जवान निकला, खत लिया, चुपचाप अंदर गया और 11 किश्तियां सरबमहर ले आया। दरवेश को इज्जत से रुखसत किया गया। वापस पहुंचा तो परी ने अशरफियां दी और कहा, खर्च में लाओ, खुदा रज़ाक है। दरवेश के दिल में सवाल उठते रहे कि ये अनजान परी कौन है, मगर परी ने पहले ही मना कर रखा था, इसलिए चुप रहा। बाद में शहजादी ने दरवेश को दोबारा अशरफियां देकर हुक्म दिया कि यूसुफ सौदागर की दुकान से कीमती जवाहर और उम्दा खिलतें खरीद लाए। जब दरवेश बाजार पहुंचा तो उसने एक निहायत हसीन और जमील नौजवान को देखा, जो ज़ाफ़रानी लिबास में मलबूस था और जिसके गिर्द लोगों का हुजूम लगा हुआ था, वही यूसुफ सौदागर था। यूसुफ ने बड़ी मोहब्बत और खुश अखलाकी से दरवेश का इस्तकबाल किया, उसके वतन और हालात के बारे में पूछा और बेतकल्लुफी से गुफ्तगू करने लगा। दरवेश ने अपना राज पोशीदा रखा, सौदा खरीदा और वापस होने लगा, मगर यूसुफ ने निहायत इसरार से उसे अपनी दावत कबूल करने की दरख्वास्त की। इब्तिदा में दरवेश ने शहजादी को तन्हा छोड़ने के ख्याल से माजरत चाही, लेकिन यूसुफ के खुलूस भरे इसरार पर राजी हो गया। दरवेश जब जवाहर और खिलतें लेकर वापस आया तो शहजादी ने यूसुफ के बारे में तफसील से दरियाफ्त किया। सारा हाल सुनकर उसने दरवेश को वादा पूरा करने और दावत कबूल करने का मशवरा दिया। चुनाचे दरवेश दोबारा यूसुफ के पास गया। यूसुफ नहायत खुशी से उसे एक वसीओ हसीन बाग में ले गया, जहाँ बहते फव्वारे, सरसब्ज दरख्त, रंग बिरंगे फल, चहचहाते परिंदे और आलीशान इमारतें एक दिलकश मंजर पेश कर रही थीं। आखिरकार दोनों नहर के किनारे एक खूबसूरत बंगले में जा बैठे। यूसुफ ने दरवेश को नया लिबास पहनाया, ज़ियाफ़त की, महफिल जमी। अचानक यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए और बोला, मेरी माशूका को भी बुलवाओ, जुदाई से जी नहीं लगता। दरवेश ने हामी भर दी। यूसुफ ने एक तरफ इशारा किया, वहां एक बसूरत औरत बैठी थी। दरवेश देखकर दिल में हैरान हुआ, यही उसकी महबूबा है। खैर, 3 दिन तक महफिल जमी रही, फिर दरवेश ने इजाजत मांगी। यूसुफ ने खुशी से

रुखसत किया। दरवेश जल्दी घर पहुंचा। 3 दिन की गैर हाजिरी पर शर्मिंदा था। परी ने माफ किया मगर कहा, मुफ्त की मेहमानियां ही लोगे या बदला भी उतारोगे? जाओ यूसुफ को साथ ले आओ। दरवेश फौरन यूसुफ को लेने गया। यूसुफ ने दावत कबूल कर ली। वापसी पर दरवेश सोचता रहा, दावत तो दी थी मगर घर में तैयारी कुछ भी नहीं, अब मेहमान की खातिरदारी कैसे होगी? यही सोचते सोचते घर के करीब पहुंच गया। जब घर के करीब पहुंचा तो हैरान रह गया। दरवाजे पर धूमधाम मची हुई थी। चारों तरफ साफ सुथरी सजावट, यसावल और अस्सेबरदारी खड़े थे। दरवेश ने सोचा, ये मेरा घर है या कोई और जगह? दरवेश जब हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो वहां की शानो शौकत देखकर हैरान रह गया कि इतने कम वक्त में ये सब इंतजाम कैसे मुमकिन हुआ। इसी दौरान वो बावर्ची खाने की तरफ गया तो देखा कि एक निहायत हसीन मगर सादा लिबास में मलबूस औरत तमाम इंतजामात की निगरानी कर रही है। उसके हुस्न में ऐसी दिलकशी थी कि बगैर जेवर के भी वो चांद की मानिंद रोशन दिखाई देती थी। वो खादिमों को ताकीद कर रही थी कि खाने के जायके, खुशबू और हर इंतजाम में कोई कमी न रहने पाए। शहजादी ने दरवेश को देखकर कहा, यहाँ की फिक्र मत करो, तैयारियां हो रही हैं, जाओ मेहमानों का ख्याल रखो। दरवेश मेहमान खाने में चला गया। यूसुफ ने अपनी माशूका को बुलवाया। वो आई तो यूसुफ खुश हो गया। सब हैरान थे कि इस खूबसूरत जवान को ये बसूरत औरत क्यों पसंद है। एक समझदार ने कहा, इश्क में अक्ल काम नहीं करती, महबूब को मोहब्बत की नजर से देखो। 3 दिन महफिल जमी रही। 4th रात सब बेहोश हो गए। सुबह आँख खुली तो खाली हवेली थी। एक कोने में कंबल में लिपटी लाश थी। खोला तो यूसुफ और उसकी माशूका दोनों मरे पड़े थे। दरवेश ने ख्वाजा सिरा से माजरा पूछा। ख्वाजा सिरा ने टालना चाहा मगर दरवेश की मिन्नतों पर शहजादी के मकान का पता बता दिया। दरवेश सारी रात परी के दरवाजे पर बैठा रहा, कोई ना आया। सुबह परी ने खिड़की से झांका तो दरवेश का दिल खुश हुआ। ख्वाजा सिरा ने अंदर बुला लिया। शाम को परी चांद जैसे हुस्न और शहाना लिबास में निकली। दरवेश दौड़कर पास गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, मगर परी नाराज थी और बोली, 100 तोड़े अशरफी लो और अपने वतन चले जाओ। दरवेश की आंखों में आंसू आ गए और बोला, अगर माल की लालच होती तो जानो माल कुर्बान न करता। परी ने सर्द लहजे में कहा, चुप रहो, तुम्हारी खिदमत याद है मगर अब अपना रास्ता लो। दरवेश रोता हुआ बोला, मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मंजिल कभी न मिले। दरवेश इश्क जुदाई के गम में इस कदर निढाल हो चुका था कि उसका चेहरा पहचाना न जाता था। एक बुजुर्ग ने उसकी हालत देखकर सबब पूछा तो दरवेश ने अपनी पूरी दास्तान सुना दी। बुजुर्ग को उस पर रहम आया और उसे साथ लेकर शहजादी के पास गए, मगर शहजादी ने इब्तिदा में उससे मिलने से इनकार कर दिया। ख्वाजा सिरा ने नहायत अदब से शहजादी को दरवेश की बेबसी और खस्ता हाली का हाल सुनाया और उस पर रहम करने की दरख्वास्त की। शहजादी ने पहले उसे दारुशिफा में रखने का हुक्म दिया, फिर हकीमों को बुलाया गया। मुआयने के बाद एक हकीम ने कहा कि इश्क का मारा हुआ है और उसका इलाज सिर्फ वसल महबूब में है। आखिरकार शहजादी दरवेश की मोहब्बत, वफादारी और इखलास से मुतासिर हो गई और उसे कबूल कर लिया। उसी रोज खामोशी से उन दोनों का निकाह भी पढ़ा दिया गया, मगर निकाह के बाद भी दरवेश के दिल में कई सवाल बाकी थे। वो जानना चाहता था कि शहजादी दरअसल कौन है और उसकी जिंदगी के पुरअसरार वाकयात की हकीकत क्या है। जब उसने इन सवालात का जिक्र किया तो शहजादी नाराज हो गई और उसे याद दिलाया कि उनके दरमियान ये शर्त तय हुई थी कि वो उसके मामलात में मदाखलत नहीं करेगा। दरवेश ने नरमी से माजरत की मगर साथ ही ये भी कहा कि जब दो लोग उम्र भर के साथी बन जाएं, तो उनके दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रहना चाहिए। शहजादी ने दरवेश से राजदाना अंदाज में अपनी सरगुजश्त बयान करते हुए कहा कि वो दमिश्क के अजीम बादशाह की इकलौती बेटी है। एक रोज अचानक उसकी तबीयत मुजमहिल हो गई। ख्वाजा सिरा के मशवरे पर एक खुशरू लड़का शरबत लेकर हाजिर हुआ। शरबत पीने और उस लड़के की शोखिया गुफ्तार से शहजादी की तबीयत बहाल हो गई। चुनाचे उसने इनाम इकराम देकर उसे मुस्तकिल अपने पास रख लिया। रफ्ता रफ्ता शहजादी को उस लड़के से ऐसी उनसियत हो गई कि एक लम्हा भी उसे नजरों से ओझल न होने

जब मालूम हुआ कि उसका उस्ताद उसकी तमाम कमाई छीन लेता है, तो शहजादी ने उसे उम्दा लिबास, बेहतरीन तरबियत दिलाई। वक्त गुजरने के साथ ये ताल्लुक गहरी मोहब्बत में बदल गया, यहाँ तक कि शहजादी उसके बगैर बेकरार रहने लगी। मगर ख्वाजा सिरा बार बार तंबीह करता रहा कि अगर ये राज आश्कार हो गया तो बड़ी रुसवाई और बदनामी का सबब बनेगा। ख्वाजा सिरा ने शहजादी को खबर दी कि वो नौजवान अब सिने बुलूग को पहुंच चुका है, उसके चेहरे पर जवानी के आसार नुमाया होने लगे हैं, इसलिए दरबानों और अहले महल ने उसका अंदर आना बंद कर दिया है। ये खबर सुनकर शहजादी सख्त मुस्तरिब और गमजदा हो गई, गोया उस पर कयामत टूट पड़ी हो। आखिरकार उसने ख्वाजा सिरा को हुक्म दिया कि उस नौजवान के लिए एक शानदार जवाहरात की दुकान कायम की जाए। कुछ ही अरसे में उसकी तिजारत इस कदर मशहूर हो गई कि उमरा और बादशाह तक अपनी कीमती खिलतें और जवाहर वहीं से खरीदने लगे। वो नौजवान यूसुफ था। शहजादी ने खुफिया तौर पर एक सुरंग भी हवेली से महल तक बनवा दी, जिसके जरिए यूसुफ हर शब उससे मुलाकात के लिए आता और सुबह होने से पहले वापस चला जाता। मुद्दतों यही सिलसिला जारी रहा। एक दिन यूसुफ मुलाकात के लिए ना आया तो शहजादी बेहद परेशान हुई। तहकीक पर मालूम हुआ कि यूसुफ एक बाग खरीदना चाहता है, मगर उस बाग के साथ एक बांदी को भी खरीदना लाजमी है और वो दोनों की कीमत अदा करने से कासिर है। शहजादी ने बिला तामुल बाग और बांदी दोनों खरीद लेने का हुक्म दे दिया। उसके बाद यूसुफ और शहजादी की मुलाकातों का सिलसिला बदस्तूर कायम रहा। एक रोज शहजादी ने उस बाग को देखने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसके लिए यूसुफ इस कदर बेताब रहता था। वो दाई के साथ वहां पहुंची तो बाग की दिलकश फिजा, सरसब्ज दरख्त, रंगीन फूल और बहती नहरों ने उसका दिल मोह लिया। शाम ढले यूसुफ निहायत अदब से मिला और उसे एक रोशन व आरास्ता बारादरी में ले गया, जहाँ चरागा, आतिशबाजी और चांदनी ने महफिल को और भी दिलनशी बना दिया। इसी दौरान एक बसूरत बांदी शराब लेकर हाजिर हुई। शहजादी ने नागवारी से उसके बारे में पूछा तो यूसुफ ने बताया, ये इसी बाग के साथ खरीदी गई बांदी है। कुछ ही देर में यूसुफ नशे में इस कदर बेखुद हो गया कि आदाब हुदूद फरामोश कर बैठा और बांदी भी बेहयाई पर उतर आई। शहजादी दिलगरफ्ता होकर वहां से उठने लगी, मगर यूसुफ ने मिन्नत समाजत करके उसे रोक लिया। उसे खूब समझ आ गया था कि अगर शहजादी इस हालत में यहाँ से गई तो कल सुबह उसकी खैरियत नहीं होगी। मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर शहजादी भी रुक गई। शहजादी बेहोश हो गई। होश आया तो देखा कि यूसुफ तलवार लिए उसकी जान लेने पर आमादा है, बल्कि अपनी दानिश में मार ही दिया था समझो। परी ने गिड़गिड़ा कर आजजी के साथ कहा, मुबादा हो कोई जालिम तेरा गरेबा गीर, मेरे लहू को तू दामन से धो, हुआ सो हुआ। इसके बाद शहजादी बेहोश हो गई। यूसुफ ने मुर्दा समझकर संदूक में बंद किया और किले की दीवार के नीचे लटका दिया। शहजादी आगे कहती है, ये सब मेरी किस्मत में लिखा था। अगर मैं खूबसूरत चेहरों की दीवानी ना होती तो वो बदबख्त मेरी जिंदगी का दुश्मन न बनता। अल्लाह ने ये काम किया कि तुम्हें वहां पहुंचा दिया, वरना मैं मर चुकी थी। वहां से दरवेश ने उस संदूक को निकाला, जख्मों का इलाज किया और परी को नई जिंदगी मिली। शहजादी ने दरवेश से निहायत ममनूनियत के साथ कहा कि उसने जिस खुलूस और जाफिशानी से उसकी खिदमत की, उसके सिले में उसने अपने खजांची सैयदी बहार के नाम खत लिखा था ताकि वालदा को अपनी खैरियत की इत्तला दे सके। चुनाचे शहजादी ने दरवेश को यूसुफ से दोस्ती बढ़ाने का मशवरा दिया और फिर दावत के बहाने यूसुफ और उसकी बांदी को बुलाकर उनसे इंतकाम ले लिया। उसके बाद उसने अपनी पूरी सरगुजश्त इब्तिदा से इंतहा तक दरवेश के सामने बयान की और कहा कि अब इस शहर में रहना दोनों के हक में मुनासिब नहीं है। रात के आखिरी पहर दो तीस रफ्तार घोड़े तैयार किए गए। शहजादी ने मर्दाना लिबास पहना, हथियार बांधे और दरवेश के साथ शहर छोड़ दिया। सफर के दौरान उसने दरवेश से कहा कि उसने उसकी खातिर माल, सल्तनत और वालिदैन सब कुछ छोड़ दिया है, कहीं वो भी बेवफाई ना कर दे। दरवेश ने वफादारी का यकीन दिलाते हुए कहा कि हर शख्स यूसुफ जैसा नहीं होता। सफर करते करते दरवेश

0: और शहजादी एक ऐसे वीरान मैदान में पहुंचे जहां दूर दूर तक आबादी या इंसान का कोई निशान न था। इसी दौरान उन्हें एक अजीम दरिया दिखाई दिया, जिसके किनारे खड़े होकर उन्होंने देखा कि हर सिमत पानी ही पानी फैला हुआ है और पार जाने की कोई सूरत नजर नहीं आती। शदीद थकन और भूख प्यास से निढाल शहजादी ने आराम की ख्वाहिश जाहिर की। करीब ही एक घना पीपल का दरख्त था, दोनों उसके साये में बैठ गए। दरवेश ने बहुत गौर किया मगर न कोई कश्ती दिखाई दी और न किसी आदमी का पता चला। आखिर वो शहजादी को वहीं छोड़कर किसी सवारी या कश्ती की तलाश में निकल गया, लेकिन जब मायूस होकर वापस आया तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि शहजादी दरख्त के नीचे मौजूद ही न थी, गोया अचानक गायब हो चुकी हो। शहजादी के अचानक गायब हो जाने के बाद दरवेश दीवानों की तरह उसे ढूंढने लगा। कभी दरख्तों पर चढ़ता, कभी जंगलों में भटकता, मगर उसका कोई सुराग न मिला। आखिर उसके दिल में ये ख्याल बैठ गया कि शायद किसी जिन ने शहजादी को उठा लिया है। गम व मलाल में उसने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली, कपड़े फेंक दिए और फकीराना जिंदगी गुजारने लगा। दिन भर बियाबानों में शहजादी को तलाश करता और रात जहां थक जाता वहीं पड़ा रहता, मगर उसकी तमाम जस्तजू बेसूद साबित हुई। आखिरकार मायूसी से तंग आकर वो एक पहाड़ पर चढ़ गया और इरादा किया कि खुद को वहां से गिराकर जान दे दे। अभी वो ये सोच ही रहा था कि अचानक एक सब्जपोश नकाबदार सवार नमूदार हुआ और उसने दरवेश का हाथ थाम लिया। सवार ने उसे खुदा की रहमत से नाउमीद ना होने की नसीहत की और बताया कि 3 दिन की मसाफत पर 3 और दरवेश मौजूद हैं जो इसी तरह की मुसीबतों में गिरफ्तार हैं। फिर उसने पेशगोई की कि जब सब इकट्ठे होकर बादशाह आजाद बख्श से मिलेंगे तो उनकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। दरवेश ने अकीदत से उस सब्जपोश सवार की रकाब को बोसा दिया और आजिजी से उसका नाम पूछा। सवार ने जवाब दिया कि वो मुर्तजा अली हैं और उनका काम ही मुसीबत जदों की मदद करना है। ये कहकर वो नजरों से गायब हो गए। इस बशारत से दरवेश के दिल को नई उम्मीद मिली और वो कुस्तुंतुनिया की तरफ रवाना हो गया। रास्ते की बेशुमार तकलीफें बर्दाश्त करता हुआ आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। दरवेश ने अपनी दास्तान खत्म करते हुए कहा कि अब जरूरत इस बात की है कि उनकी मुलाकात बादशाह आजाद बख्श से हो जाए ताकि सब मिलकर अपनी मुराद पा सके। यूं पहले दरवेश की दास्तान अपने अख्तिताम को पहुंचती है। अगली किस्त में दूसरे दरवेश की हैरत अंगेज सरगुजश्त पेश की जाएगी। तब तक के लिए अपनी मेजबान शाज़े खान को इजाजत दीजिए। आदाब।
1: उर्दू कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दास्तान 4 दरवेश। प्रेजेंटर थी शाजिया खान, पेशकश आसिफ इकबाल की थी। आज का उर्दू प्रोग्राम आकाशवाणी के लखनऊ मरकज की पेशकश था। आज आप सुन रहे थे इसका पहला भाग।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लोक संगीत।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
2: लोक संगीत में आज के हमारे कलाकार हैं छोटेलाल पटेल और साथी। सबसे पहले इनसे सुनते हैं ये खेमटा।

आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कलाकार हैं छोटेलाल पटेल और साथी। आइए इनके स्वर में अब सुनते हैं ये दादरा।

आपकी सेवा में है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और आप सुन रहे हैं लोक संगीत। आइए छोटेलाल पटेल और साथियों की आवाजें में सुने ये।

आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम के आखिर में आइए सुने छोटीलाल पटेल और साथियों के आवाजों में ये लाचारी।

0: छोटे लाल पटेल और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे ये लाचारी। हम आपको याद दिलाते चलें कि इन्हीं का गाया लोक गीत शाम 6:30 पर कृष जगत कार्यक्रम में भी आप सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने सामुदायिक गान शिक्षा पाठ असमिया।
1: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हैं ना असमिया भाषा गीत?
2: जी हाँ।
1: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
2: माती रे,
1: ए माती रे, मोरो मोते,
2: मोरो मोते,
1: माती के,
2: माती के,
1: सुमीलो,
2: सुमीलो,
1: माती के सुमीलो, माती के सुमिलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। ए माती ते,
2: ए माती ते,
1: ए माती ते जीवन, ए माती ते, ज नहीं बोलना इसको, ज बोलना। ये ए माती ते जीवन सोबी, जीवन
2: सोबी,
1: जी कैसे ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना, तो जीवन सोबी आकी आकी, दोबारा आकी आकी आकी मोसीलो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर आका हार, ये जो ना आका आकाश श को बोलते वहां ह की तरह से, तो आका ये ख और ह के बीच में आका खार भी नहीं आका हार भी नहीं आका

0: हार, आका हार, लिखो दूर आका हार, रोहन कियोनु, लागे लागे, खागोर टोलीर, खागोर खागोर, ख नहीं बोलना, ह, खागोर टोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर टोलीर, मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू, लागे लागे,
1: लागे लागे,
0: इसके आ गया है आहा आहा, मातीर बुकुत, मातीर बुकुत, मौनोर मालोती, बुटोलो, मौनोर मालोती बुटोलो, इसके बाद फिर वही आ जाएगा एई माती रे मोरो मोते, फिर दूसरा अंतरा है मौनोर कोरोनी रे,
1: कोरोनी रे,
0: खुरोर खुरोर पापोरी रे,
1: पापोरी रे,
0: पापोरी रे आजी,
1: आजी,
0: इतना हो गया ना, आगे हुकुमार,
1: हुकुमार
0: थापो,
1: थापो
0: नाहुजुवा, हुकुमार थापो नाहुजुवा, आगे लिखा है ना, हुंदोर खुदीनोर,
1: खुदीनोर
0: खुदीनोर नहीं खनी ख, खुदीनोर
1: खुदीनोर,
0: नौतून दृष्टि, ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके, दृष्टि दृष्टि शनि सही बोलना, दृष्टि दृष्टि, कौनो ना हुआ, आगे ना, अच्छा ठीक है, अब गाना सिखाना शुरू करते हैं, स्वर दीजिए जरा,

0: सामुदायिक गान शिक्षा पाठ असमिया अभी आप सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में इंदिवर की रचना आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें थी। गिरफ्तार फिल्म का ये गाना था। इस गीत से पहले आप सुन रहे थे मेजर साहब फिल्म का गाना उदित नारायण की आवाज़ में। गीतकार और संगीतकार थे आनंद राज आनंद। कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज़ों में कूली नंबर वन फिल्म का ये गाना। गीतकार समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद। दिन के 10:40 और 48 सेकेंड। आकाशवाणी वाराणसी आपके साथ।

कुमार सानू और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे रानी मलिक की रचना। नदीम श्रवण का यह संगीत था, जान तेरे नाम फिल्म का ये गाना था।

0: राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे ये रविंद्र रावल की रचना। एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाजें थीं। पत्थर के फूल फिल्म का ये गाना था। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।
2: हम गवन मनाही जय बे बिनारे झूलनी, हम गवन मनाही जय बे बिनारे।
0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने कार्यक्रम बाल संघ।

0: नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे साथियों, जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद, जय हिंद सुरेखा दीदी।
0: जय हिंद सिम्मी दीदी, कैसी हैं?
1: भई हम तो अच्छे हैं। और दीदी, इस समय हमारे बच्चे भी ना बहुत खुश होंगे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां जो हो गई हैं।
0: और खुशी की बात तो है ही, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं वो प्लान करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। अब ये बात तो ठीक है कि ठंडी जगह पे हर बच्चा चाहता तो है जाना, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा हर साल संभव है जाना और खूब आनंद उठाना और बेफिक्र होकर वहां रहना, वो है हमारी
1: नानी
0: नानी
1: का घर।
0: और दादी का घर, है
1: दीदी,
0: ना?
1: छुट्टियां होती हैं तो बच्चों के साथ साथ बच्चों की मम्मी का भी मन करता है कि जल्दी से नानी के घर पहुंचे और वहां जाकर अपने मामा मामी कजन्स मौसी के साथ ढेर सारी मस्ती करें।
0: और वो ऐसा इसलिए होता है ना सिमी दीदी, क्योंकि बच्चों आपके भरोसे ही ये मम्मी लोग भी तो पहुंच पाती है ना। भाई
1: हाँ,
0: बाकी
1: सही
0: टाइम
1: कह
0: तो
1: रही हैं।
0: स्कूल है, एग्जाम्स है, टेस्ट है, तो नहीं आ पा रहे, लेकिन जो बच्चों की छुट्टियां होती हैं वो मम्मी लोग भी बच्चे बन जाती हैं।
1: और दीदी, नानी के घर की याद आते ही ना हमें बचपन की वो बातें भी याद आ जाती है ना, कि जहां हम बिना रोक टोक के दिन भर खेलते थे, खूब सारी बातें करते थे और नानी के हाथ का स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद भी लेते थे और वो काम भी करते थे जो हमें खुशी देती थी और बिना रोक टोक के।
0: और नन्हे दोस्तों, आपको एक और राज की बात बताती हूँ कि
1: दीदी, वो क्या
0: जब
1: है?
0: जब मैं जाती थी ना नानी के यहाँ, तो सारे दिन घूमा करती थी और लगता था ना कि बस कोई पढ़ने लिखने के लिए कुछ ना कहे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये होती थी कि कभी-कभी जो

0: गांव के और लोग जो होते हैं ना, जैसे अपने जो नाना है वो तो है ही, बाकी और लोग भी इतने प्यार से रखते थे। ऐसा नहीं लगता था कि हम सिर्फ अपने नाना और अपने मामा के यहाँ गए हैं, बगल वाले यहाँ भी उन्हें भी नाना ही कहते हैं, कोई और भाई है अगर माँ का तो उन्हें भी मामा ही कहते हैं। तो इसे आपको पता है कि नन्हे दोस्तों, सीखने को ये मिलता है कि रिश्तों की कितनी अहमियत होती है, और ये कोई आवश्यक नहीं कि रिश्ते केवल खून के ही बने।
1: हाँ, बल्कि पास पड़ोस के हमारे सगे संबंधियों के भी रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं और वो बड़े प्यार से निभाए जाते हैं। और दीदी, जब मैं छोटी थी और अपनी नानी के घर जाती थी ना, तो रात के समय जब हम छत के ऊपर लेटते थे और अंताक्षरी खेलते थे ना, और अंताक्षरी सिर्फ घर के लोग ही नहीं खेलते थे बल्कि पास पड़ोस के दोस्त भी आ जाते थे, और उनके साथ जो आनंद आता था ना, वो पूरे साल याद रहता था।
0: शहर में इसकी कमी तो होती ही है, और नन्हे दोस्तों आप भी ये महसूस करते होंगे जब आप नानी के घर से लौट के आते होंगे, तो बहुत समय तक वो बात याद आती होगी कि वो नानी के घर ऐसा होता था, मामा ये कहते थे, मामी ये बनाती थी। और इसके साथ ही साथ एक अच्छी बात और भी तो होती है ना दोस्तों, अगर मम्मी से डांट पड़े तो नानी तो खड़ी है, भाई क्यों
1: बिल्कुल, तुरंत सेवा ले लेती
0: डांटा
1: हैं।
0: तो वहां एक ये भी छतरी काम करती है
1: और दीदी, नानी के घर जाते हैं ना, तो हम खेल खेल में बहुत सारी नई नई चीजें भी सीख लेते हैं, और इससे हमारी क्रिएटिविटी भी काफी बढ़ जाती है ना। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ, अपने कजिन्स के साथ जब हम बातें करते हैं, अपनी बातों को साझा करते हैं, तो और भी बहुत अच्छा लगता है।
0: और ये जो साथ में मिलकर साथ साथ सबके साथ गीत गाने वाला जो पल होता है ना, वो देखो ना कोई राग ना कोई ताल ना कोई लय, लेकिन सब हल्ला मचा मचा के जो गाना गाते हैं, तो उसका तो आनंद ही कुछ और होता है। तो चलिए पहले अपने नन्हे दोस्तों को
1: ये
0: एक
1: गीत
0: गीत
1: सुनवा
0: सुनवाते
1: देते हैं।
0: हैं।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

0: दीदी, भाई गीत तो हमने सुन लिया, साथ ही जब हम नानी के घर गए हैं छुट्टियों में, तो यही ना हो कि दिन भर हम खेलते रहे, होमवर्क भी करना है क्योंकि
1: क्योंकि
0: स्कूल
1: स्कूल तो
0: खुलेंगे
1: समय से खुलेगा।
0: और फिर होमवर्क नहीं होगा तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी।
1: लेकिन नानी के घर का ना एक फायदा होता है ना बच्चों, अगर आपने इसको नहीं आजमाया है तो एक बार फिर से आजमाइएगा कि नानी और जो आपके घर में और जो बुजुर्ग लोग हैं ना, वो लोग आपको छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से या कुछ क्रिएटिविटी के माध्यम से, या फिर जैसे आपको पहाड़ा वगैरह अगर याद करना है, टेबल जिसे लर्न
0: हाँ
1: करना
0: दीदी,
1: है,
0: खेल खेल
1: या
0: में बहुत
1: बहुत
0: सारी
1: सारी
0: चीजें
1: चीजें ऐसी
0: सिखा
1: होती
0: देते
1: हैं जो
0: हैं।
1: वो चुटकियों में बता देती हैं कि देखो इसको ऐसे करो तो फट से हो
0: और दीदी
1: जाएगा।
0: जो कहानियां भी सुनाती है ना हमारे बड़े लोग, वो कहानियां भी इतनी रोचक और शिक्षा प्रद होती हैं कि पता ही नहीं चलता कि हम उससे कितनी बड़ी चीज सीख गए।
1: ऐसी ही कहानी आज हम भी अपने नन्हे दोस्तों को सुनवाने वाले हैं। कहानी का शीर्षक है दोस्तों ने बचाई जान, और कहानीकार हैं पवन कुमार वर्मा।
2: प्यारे बच्चों, आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वह कहानी मनुष्यों और पशु पक्षियों के बीच आपसी प्रेम और विश्वास पर आधारित है। पशु पक्षी चाहे भले हमारी भाषा न समझते हो

लेकिन हमारे प्रेम को खूब समझते हैं। अगर हम उनके प्रति सच्ची भावना रखें, अच्छी भावना रखें, उनका ध्यान रखें, तो वो भी संकट आने पर हमारा साथ देने को तत्पर हो जाते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलो अब कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है दोस्तों ने जान बचाई। गर्मी का मौसम शुरू हो गया था। सुबह जैसे ही सूरज निकलता चारों ओर जैसे आग बरसने लगती और देखते ही देखते चारों तरफ सन्नाटा छा जाता। लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते, पशु पक्षी भी दिखाई नहीं पड़ते। ऐसे में प्रणय का भी घर से बाहर निकलना कठिन हो गया था। पापा जब अपने ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकलते थे तो प्रणय को खूब समझा जाते, कहते देखो बेटा धूप में इधर उधर मत जाना, घर में ही रहना, घर में तुम्हारे लिए बहुत सी कहानियों की किताबें हैं, उन्हें पढ़ना। प्रणय भी उनकी बात मान लेता, उसे भी धूप में कहीं जाना अच्छा नहीं लगता था। पिछली बार उसने यह गलती की थी जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई थी। प्रणय का घर अभी नया नया बना था, वहां अभी कुछ ही घर बने थे। उसके घर के पीछे लोगों के खेत थे और ठीक बगल में नीम का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर कई पक्षियों और गिलहरियों ने अपना घर बना रखा था। एक दिन दिन के समय प्रणय अपने घर के बरामदे में खड़ा था। उसने देखा कुछ चिड़ियां और गिलहरी उसकी दीवार पर बैठे हैं। शायद पेड़ पर आ रहे धूप से बचने के लिए वे सब प्रणय के घर के बाहरी दीवार पर आ गए थे। प्रणय ने देखा उन सबके मुंह खुले हुए थे। उसने सोचा लगता है ये सब बेचारे प्यासे हैं। वह घर में गया और उनके लिए एक कटोरे में पानी साथ ही दिन के बचे कुछ चावल ले आया। उन्हें पास में ही रखकर वह घर के अंदर आ गया, फिर खिड़की से उन्हें देखने लगा। उसके हटते ही चिड़ियों और गिलहरियों ने वहां रखे पानी और चावल पर धावा बोल दिया। झटपट सारे के सारे चावल खा डाले और पानी भी पी लिया। धीरे धीरे वे सब बराबर ही वहां आने लगे। प्रणय भी मम्मी की नजर बचाकर उनके खाने पीने का सामान बाहर रख आता था। कभी कभी जब उसे थोड़ी देर हो जाती तब तो वे सब प्रणय की दीवार पर बैठकर खूब शोरगुल मचाने लगते। कुछ दिनों से वहां कुछ कुत्ते भी धूप से बचने के लिए नीम के पेड़ के नीचे आ जाते थे। जब प्रणय अपने बरामदे में आता तो वो सारे भी खाने की लालच में वहां आ जाते। प्रणय उन्हें भी निराश नहीं करता था। दिन की कुछ रोटियां जो बच जाती थीं, वह उन्हें खाने के लिए दे देता था। फिर एक दिन के समय सब के सब प्रणय की दीवार के पास आ गए। प्रणय भी मम्मी की नजर बचाकर चुपके से बाहर आ गया। प्रणय को देखते ही चिड़ियों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। गिलहरियां भी उसके सुर में सुर मिलाने लगी, कुत्ते भी गुर्राने लगे। प्रणय को उनकी बातें समझ में आ गईं। उसने उन्हें चुप रहने का इशारा किया, वे शांत हो गए। फिर प्रणय दबे पांव किचन में गया। वह चुपके से कुछ बची हुई रोटियां और बचे हुए चावल लेकर बाहर आया। बाहर आकर उसने चावल को जमीन पर बिखेर दिया। चिड़ियों की फौज दाना खाने में जुट गई, गिलहरियां भी उनके साथ थीं। कुत्ते जोर जोर से गुर्राने लगे क्योंकि उन्हें अभी तक रोटी नहीं मिली थी। प्रणय उनकी ओर देखकर उनसे बोला, अरे भाई आ रहा हूं, तुम्हारे लिए भी रोटियां लाया हूं, और फिर उनको खाने के लिए रोटियां दे दी। वे बड़े चाव से रोटियां खाने लगे। प्रणय को उन्हें खिलाना, उनके साथ समय बिताना अब अच्छा लगता था। लेकिन आज एक गड़बड़ हो गई। मम्मी वहां आ गईं। आते ही उन्होंने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, प्रणय तुम बाहर क्यों आ गए? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि दोपहर में घर से बाहर बिल्कुल मत जाना। वो मम्मी अब आगे से ऐसा नहीं करूंगा। प्रणय ने मम्मी से माफी

मांगी। मम्मी उसके पास तक आ गई थी। अचानक उनकी नजर रोटी और चावल के दानों पर पड़ी। यह क्या, तुम रोटियां भी ले आए? मम्मी उसे फिर जोर जोर से डांटने लगी। उनकी तेज आवाज सुनकर गिलहरियां भागकर पेड़ों पर चढ़ गईं, चिड़ियां भी उड़ गईं, लेकिन कुत्ते वहां अभी डटे थे। जब मम्मी ने बाहर रखी लाठी उठाई तभी वे

0: प्रणय को आवाज लगाई। वह दौड़कर बाहर आया। उसने मम्मी से पूछा, क्या बात है मम्मी, आप यहां क्यों बैठी हैं, अंदर चलिए। बेटा, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा है, मम्मी कराहते हुए उससे बोली। आप अंदर तो चलिए मम्मी, मैं डॉक्टर अंकल के यहाँ जाकर अभी आपकी दवा ले आता हूँ। प्रणय उन्हें अंदर ले आया। मम्मी को लिटाकर वह पास में डॉक्टर अंकल के यहाँ दवा लेने चला गया। आज डॉक्टर अंकल के यहाँ भी बहुत भीड़ थी। किसी तरह उसने मम्मी के लिए दवा ली और घर की ओर वापस चल पड़ा। अंधेरा होने लगा था। प्रणय धीरे धीरे घर की ओर आ रहा था। अभी वह घर के पास ही पहुंचा था कि उसे चिड़ियों की आवाज सुनाई पड़ी। यह आवाज नीम के पेड़ से आ रही थी। उसे देखते ही चिड़ियों ने और भी तेज चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज सुनकर प्रणय मन ही मन सोचने लगा, क्या बात है, ये सब इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? मैंने दिन में उन्हें चावल के दाने दिए तो थे। जैसे जैसे वह घर के पास आ रहा था, चिड़ियों ने और तेज चिल्लाना शुरू कर दिया। जरूर कोई बात है, ये चिड़ियां इतनी जोर से कभी नहीं चिल्लाती हैं। प्रणय अब डरने लगा। अब वह धीरे धीरे घर की ओर चलने लगा। अचानक वह जोर से चीख पड़ा। उसके घर के बाहर ही एक बहुत बड़ा सा सांप कुंडली मारे बैठा था। वह एकदम से घबरा गया। अब उसे समझ में आया कि क्यों चिड़ियां इतनी जोर से चीख रही हैं। उसके चीखने की आवाज सुनकर आसपास के कुत्ते जो वहां आया करते थे प्रणय के पास आ गए। उन्हें भी सारा माजरा समझ में आ गया। सांप को वहां से भगाना अब जरूरी था, तभी प्रणय अंदर जा सकता था। फिर क्या था, वे सब एक साथ उस सांप पर टूट पड़े। एक साथ इतने कुत्ते और चिड़ियों के शोरगुल से सांप भी घबरा गया। फिर तो जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। प्रणय एक ओर खड़ा यह सब देख रहा था। डर के मारे उसका बुरा हाल था। सांप के सामने वहां से भागने के अलावा अब कोई चारा नहीं था। उन कुत्तों से हार कर वह खेतों की ओर भाग गया। उसके जाते ही कुत्ते भी धीरे धीरे वहां से चले गए। प्रणय भी घर के अंदर आ गया। मम्मी ने प्रणय को देखते ही पूछा, बेटा इतनी देर कहाँ लग गई? सब तुम्हें बताता हूँ मम्मी, पहले तुम दवा तो खा लो, प्रणय ने मम्मी को दवा देते हुए कहा। दवा खाकर मम्मी फिर से लेट गईं। तब प्रणय ने मम्मी को सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर मम्मी घबरा गईं। उन्होंने प्रणय को सीने से लगा लिया। अगले दिन फिर से चिड़ियों ने प्रणय को आवाज लगाई। दरवाजे पर कुत्ते भी गुर्राने लगे। उनकी आवाज सुनकर प्रणय बाहर आ गया। लेकिन आज उसके पीछे उसकी मम्मी भी थी। उनके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें रोटी के टुकड़े और साथ में चावल के दाने भी थे। उन्हें वहां देखकर प्रणय मुस्कुराने लगा। फिर तो दोनों ने मिलकर उन सबको रोटी और चावल खिलाए। अब मम्मी प्रणय को ऐसा करने से नहीं रोकती थी। आखिर प्रणय के इन्हीं दोस्तों ने तो उसकी जान बचाई थी।
1: नन्हे दोस्त अभी सुन रहे थे कहानी दोस्तों ने बचाई जान, और कहानी का थे पवन कुमार वर्मा।
2: देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि बच्चों को ना जो पेट्स होते हैं ना उनसे बड़ा लगाव होता है, बड़ा प्रेम होता है। और ये जो जानवर जो पेट्स होते हैं अपने घर में जो रहते हैं, चाहे चिड़िया हो, डॉग हो, गाय हो, वो भी ना बोल ना पाए भले, लेकिन उनकी भी जो भावनाएं होती हैं ना वो ऐसी ही होती हैं कि अगर उनके घर में जो भी फैमिली मेंबर हैं जिसे वो बहुत प्यार करते हैं तो वो बड़ा लगाव उन्हें भी है।
1: दीदी, प्यार की भाषा तो हर कोई जानता है और समझता भी है ना। आप उन्हें प्यार से कुछ खिलाएंगे, उनसे बात करेंगे तो वो आपके दोस्त बन ही जाएंगे।
2: बिल्कुल सही है। तो यही है प्यार की भाषा। और जैसे हम सारी चीजें सीखते हैं ना, वैसे ही हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना और सौहार्द से रहना भी सीखना चाहिए कि कैसे कोई अगर आपका अपना नहीं भी है तो उसके साथ किस तरीके से प्यार से रहें, और उसे अगर आवश्यकता है, आपके दोस्त को ही अगर कभी आपकी आवश्यकता पड़ जाए तो उसकी मदद करनी चाहिए। ये लगता है ना कि बचपन से

0: अगर कोई चीज सीखी जाए तो वो आगे चलकर ना बहुत अच्छे तरीके से उसका विकास होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि बचपन में ही वो लगन होती है, क्योंकि उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है ना वो बिल्कुल सही रहता है, जबकि बड़े होने के बाद जो एकाग्रता है वो कहीं भटक जाती है, वो ठीक नहीं
1: थोड़ा
0: होती,
1: सा उतना फोकस नहीं होता,
0: फोकस नहीं
1: लेकिन
0: होता है।
1: हम कोई चीज बचपन से सीखते हैं ना तो वो हमेशा याद रहती है।
0: बिल्कुल
1: और
0: सही है।
1: इसी से दीदी, हमारे सामान्य जीवन में बहुत सारी ऐसी प्रचलित कहावतें हैं जो विशेष अर्थ लिए हुए हैं, और साथ ही जब हम उनको अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं ना तो भाषा बहुत ही ज्यादा रोचक भी हो जाती है और जीवन से जुड़ी होती है, तो बहुत अच्छी सीख भी दे देती है।
0: माँ वो
1: क्यों
0: कहावतें भले ही मतलब जिसे कहते हैं पुरानी हो या एक समय विशेष की हो, लेकिन वो सभी हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती हैं और व्यवहार में सही होती हैं। और एक उम्र आने के बाद ना उन सारी लोकोक्तियों का और कहावतों का अर्थ समझ में आने लगता है।
1: सभी
0: और
1: अपने अंदर व्यवहारिक ज्ञान और
0: बचपन में ना
1: नैतिक
0: बच्चों लगता होगा कि ये क्या बोल रही है, मेरी नानी क्या बोल गई है, इसका तो मुझे अर्थ ही नहीं समझ में आया। लेकिन मुझे पता है कि जब आप बड़े होंगे ना तो आपको ये सारी बातें जरूर याद आएंगी कि अरे देखो मेरी नानी ऐसे कहा करती थी, कितना सही कहती थी, है
1: हाँ,
0: ना।
1: क्योंकि इनमें जो व्यवहारिक ज्ञान और नैतिक मूल्य छुपा होता है ना वो हमें बहुत बड़ी सीख दे जाता है।
0: जैसे मुझे याद है कि बचपन में दोस्तों आपने भी सुना होगा घर में लोग कहते थे कि अकेला चना भाड़ नहीं
1: भार
0: फोड़
1: नहीं पड़
0: सकता।
1: सकता
0: इसका मतलब ये है कि संगठन में शक्ति है ना।
1: कि अगर कोई इंसान अकेला उस काम को करेगा तो शायद वो उतनी आसानी से ना हो, लेकिन अगर वही काम ग्रुप में इकट्ठे होकर करा जाए तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इसी तरह से और भी कई कहावतें हैं। एक कहावत हमने अक्सर सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब समय था तब तो हमने काम किया नहीं, और अब समय बीत गया है तो हमें याद आ रहा है कि हमें ये काम करना था और वो काम हम पूरा नहीं कर पाए।
0: तो देखा दोस्तों, जो छोटे छोटे मुहावरे होते हैं ना उनका अर्थ कितना बड़ा होता है। और एक समय में भले ना समझ में आए लेकिन ये बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल सटीक होता है। इसी तरीके से नन्हे साथियों, आपको भी कुछ मुहावरे याद कर लेने चाहिए, कुछ अर्थपूर्ण मुहावरे आपको याद करने चाहिए। वो मैं बताऊं क्यों, क्योंकि जब आप कभी ऐसे लिखेंगे, निबंध लिखेंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल रट के लिखिए। ये सारी चीजें इतनी व्यवहारिक होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं, कि अगर उस वो विषय है, उस विषय पे आप लिख रहे हैं तो आप वो मुहावरों का इस्तेमाल अगर करेंगे ना तो आप देखिए कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे,
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: दीदी, क्योंकि
0: किताबी
1: वो
0: ज्ञान होना बहुत आवश्यक नहीं है। आप ये जगह जगह जो व्यवहारिक ज्ञान होते हैं उनको भी अपने दिमाग में बैठाइए। कुछ मुहावरे हैं, कुछ कहावतें हैं, कुछ लोकोक्तियां हैं, कुछ दोहे हैं, इन सब चीजों को अगर आप याद करके रखेंगे तो आप बड़े आराम से, कोई आर्टिकल राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, इसमें आराम से लिख सकते हैं, है ना।
1: बिल्कुल दीदी, क्योंकि इससे भाषा का सौंदर्य बढ़ता है और जो हमने लिखा है वो चीज भी बहुत अच्छी लगती है।
0: हाँ, और इसी प्रकार मेरे तो बचपन में बहुत सारी पहेलियां बूझी जाती थी। जैसे शब्दों की भी पहेली होती थी और भी बहुत तरीके की पहेलियां होती थी, जिससे देख कर ना बड़ा ज्ञान होता था, है ना। तो ऐसे ही आप भी कोशिश करिए और खूब करिए, लेकिन अभी ये थोड़ा जो मोबाइल वाला है ना, मोबाइल को थोड़ा सा दूर करिए।
1: इस समय नानी के घर गए हुए हैं या जाने वाले हैं तो वहां पर एंजॉय कीजिए, और हाँ अपना हॉलीडे होमवर्क जरूर कीजिएगा, वरना छुट्टी के बाद फिर होमवर्क करने का समय नहीं मिलेगा
0: समय
1: फिर।
0: निकल जाएगा। और दीदी देखिए, घड़ी की सुई हमें इशारा कर रही है कि हमारा भी समय हो चला है, हमें भी चलना चाहिए। तो बच्चों, हम अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय
1: जय
0: हिंद
1: हिंद
0: बच्चों।
1: बच्चों।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल संग, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था।

0: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।
1: हम गवन मनाही जई बेबिनार झूलनी, हम गवन मनाही।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, आइए सुने स्वास्थ्य संबंधित फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम।

0: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम आरोग्यम। श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शरीर की थकान तो दिख जाती है, लेकिन मन की थकान को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। चिंता, तनाव, अवसाद, डर, गुस्सा और अकेलापन, ये केवल भावनाएं नहीं हैं, बल्कि ये धीरे धीरे मनोरोग का रूप भी ले सकती हैं। मानसिक रोग कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसका सही समय पर इलाज और परिवार के साथ मिलने पर समाधान संभव है। श्रोताओं, आज का हमारा विषय भी यही है, मनोरोग के विभिन्न प्रकार, इलाज और बचाव के उपाय। और आज हमारे स्टूडियो में आए हैं जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मण यादव। डॉक्टर साहब, आपका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: जब तक श्रोताओं के फोन नहीं आ जाते हैं, तब तक हमें उनके फोन का इंतजार रहेगा और हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि मनोरोग होता क्या है और इसके होने के कारण क्या है।
1: देखिए, जैसे हमारा शरीर बीमार होता है, वैसे हमारा मन भी बीमार होता है।
0: सर, फोन आ रहा है, जरा देख लेते हैं फोन को। हेलो
2: हेलो, आरोग्यम।
0: हाँ जी, आरोग्यम में आपका स्वागत है। आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: भदोही लखनिया से।
0: जी, अपना नाम बताएं।
2: राधेश्याम चौहान।
0: आज का विषय है मनोरोग, कारण और बचाव के उपाय। तो आप डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपना सवाल डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए।
2: हेलो।
1: हाँ जी, बताएं सर। नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब, ये होता क्या है?
1: मनोरोग जो मानसिक बीमारी होती है ना, मन जब बीमार हो जाता है, हमारी सोचने की क्षमता जो होती है कम हो जाती है, हमारा व्यवहार उग्र हो जाता है कई बार, हमारा जो हमारे मन को प्रभावित करे, जैसे आपको भूख प्यास लगनी बंद हो जाए, नींद ना आए, ज्यादा सोचने लगे, उदास रहने लगे, मन बेचैन रहने लगे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ज्यादा आने लग जाए, जिसमें हमारी कार्य क्षमता घटने लग जाती है, हमारी सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, कुल मिलाकर जो हमारे मन को प्रभावित करे, हमारे मानसिक जो हमारे स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करे, उसको मनोरोग कहते हैं। जी, तो इससे संबंधित कोई सवाल है आपका?
2: यही है कि इसी उसके लक्षण क्या क्या होते हैं?
1: लक्षण जैसे कि रोना आना बहुत ज्यादा, बिना बात के बहुत ज्यादा सोचना, किसी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा दिल से ले लेना, गुस्सा बहुत ज्यादा करना, मन में घबराहट, बेचैनी होना, कुछ बुरा हो जाएगा भविष्य को लेकर के, ये सोच करके बहुत टेंशन होने लग जाए, कई बार आदमी को लगता है कि वो किसी काम का नहीं है, उसका भविष्य अंधेरे में है, लोगों को लेकर के नकारात्मक, भविष्य को लेकर, स्वयं को लेकर के, कई बार आत्महत्या का ख्याल आने लग जाता है, कई बार छोटी छोटी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा आदमी सोचता है, जिससे उसकी नींद प्रभावित होती है, भूख लगनी कम हो जाती है, बहुत ज्यादा खाना खाता है, दोनों तरफ हो सकता है, या बहुत ज्यादा नींद आए, बहुत कम नींद आए, और सबसे बड़ी

0: बात होती है कि उसके काम में मन नहीं लगेगा, किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पाएगा, मतलब किसी चीज में जिसको मजा आता था वो मजा आना बंद हो जाएगा। ये तमाम समस्याएं और तमाम ये लक्षण देखने को मिलता है मानसिक समस्या में। जी
1: ठीक है, नमस्कार।
0: जी जी नमस्कार।
2: जिन श्रोता ने आज अभी फोन किया था उसका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब से आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। सर आगे बढ़ते हैं और एक बात और पूछना चाहूंगी आपसे कि क्या ये जो मनोरोग है वो हर उम्र में हो सकता है या फिर इसका कोई उम्र निर्धारित होता है?
0: बहुत ही सही सवाल है आपका। देखिए, जब मन की बात है तो मन सभी का होता है, छोटे से लेकर के।
2: फोन आ रहा है, फोन सुन लेते हैं। हेलो
3: हेलो।
2: हेलो, हाँ जी, आरोग्यम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप थोड़ा हटकर बोलिए और अपना नाम बताइए, आपकी आवाज इधर साफ नहीं आ रही है।
3: मैं पूछ रहा मैडम जी, आज कौन सा विषय है?
2: अच्छा, आज कौन सा विषय है? आज का विषय
3: जी,
2: है
3: जी, जी।
2: मनोरोग के विभिन्न प्रकार, इलाज और बचाव के उपाय। और इसके लिए डॉक्टर साहब हमारे बीच मौजूद हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी। आप उनसे अगर कोई भी सवाल हो इससे संबंधित तो आप उनसे पूछ सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब मेरा नमस्कार, मैं जिला मिर्जापुर गांव सभा काम बोल रहा हूँ। हेलो
0: जी, बोले बोले। मैं नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मण बोल रहा हूँ।
3: ठीक है, जैसे ये क्या है, जो मन होता है क्या होता है, कौन सा मध्य होता है, इसको होने पर हमें कैसे पता चलेगा?
0: ये जो है ना मानसिक समस्या होती है, मन जब बीमार हो जाता है, हमारा मन ज्यादा दुखी रहने लग जाए, रोना आने लग जाए, छोटी छोटी बातों पे उदासी रहने लग जाए, और वो उसके अलावा आप बहुत ज्यादा सोचें, भविष्य को लेकर नकारात्मक सोचने लगे, बेचैनी होने लग जाए, घबराहट होने लग जाए, स्वयं को लेकर के आदमी के अंदर नकारात्मक विचार आने लग जाए, भविष्य को लेकर के नकारात्मक विचार आने लग जाए, लोगों से रहना दूर रहने लगे, लोगों के बीच में नहीं रहे, बहुत ज्यादा उग्र रहने लगे, या कभी कभी एकदम उदास रहने लगे, खाने भूख ना लगे या बहुत ज्यादा भूख लगे। ये
3: जैसे हमारे भूख नहीं लगता है और जब कहीं पर होने पर दिक्कत बहुत हो जाता है, घबराहट रहती है,
0: जी
3: इससे हमें क्या करना चाहिए?
0: जी आप कोई भी आपके नजदीकी मनोचिकित्सक से जाकर के आप मिल सकते हैं।
3: जी
0: जी है ना, उनको एक बार दिखाइए। जी
3: इसमें सर ये बता रहे हैं कि बीपी की भी उसमें होती है, बीपी जो बढ़ जाता है इसके लिए भी हो सकता है कि नहीं?
0: देखिए, बीपी कई बार ज्यादा चिंता से भी बढ़ता है, बट उसके लिए आपको चिकित्सक के पास जाकर के ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये आपका बीपी किस लिए बढ़ रहा है।
3: थैंक यू डॉक्टर, आपको भी
0: बहुत बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप।
2: सर मेरा सवाल फिर से एक बार वही है कि मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि ये मनोरोग जो होता है क्या वो किसी भी उम्र में हो सकता है?
0: बिल्कुल, देखिए मन तो सभी के पास रहता है, छोटा बच्चा पैदा होता है मन लेकर के पैदा होता है, वो अलग बात है, वो अपनी बातों को बोल करके व्यक्त नहीं कर पाता है।
2: सर फिर से रोकना चाहेंगे, एक फोन और आ रहा है। हेलो,
3: आरोग्यम।
2: हाँ जी, आरोग्यम में आपका स्वागत है। आप कहाँ से बोल रहे हैं और अपना नाम बताएं?
3: गुलाब चंद मिश्रा, ग्राम पटेखर, पोस्ट रामजालगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। दीदी,
2: डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं, आप उनसे अपना सवाल पूछें।
3: अच्छा, मनोरोग का पहचान क्या है डॉक्टर साहब?
0: जी अभी वही मैं बता रहा था, मनोरोग का पहचान है घबराहट होना, बेचैनी होना, बहुत ज्यादा सोच आना, अत्यधिक सोचना, उदास रहना, कई बार बिना बात के रोना आने लग जाना, बहुत भावुक हो जाना जिसको हम कहते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, लोगों से दूर रहने लग जाना, किसी काम में मन ना लगना, रोजमर्रा के जो काम है उसको टालने लग जाना, अकेले रहने का मन करना, कभी कभी बहुत ज्यादा नींद आएगी, बहुत कम नींद आएगी, भूख ज्यादा लगेगी, बहुत कम भूख लगेगी, कई बार आत्महत्या के ख्याल भी आने लग जाएंगे। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो मनोरोग में होते हैं। उसके अलावा एक ही विचार बार बार बार बार मन में आए।
3: क्योंकि हम टोटली ब्लाइंड हैं,
0: हाँ,
3: कभी कभी हमें घबराहट होती है और जैसे बेचैनी महसूस होती है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब?
0: देखिए, अगर जो आपको ये बहुत दिनों से हो रहा है, तो आपके नजदीकी जो भी मनोचिकित्सक है, जो मानसिक रोग के विशेषज्ञ होंगे, उनसे आप जाकर के जरूर सर मिलिए। थोड़ा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, लंबी गहरी सांस जिसको हम कहते हैं, रोज 10 से 15 मिनट, 20 मिनट तक आप लंबी और गहरी सांस लीजिए, अनावश्यक बातों को ज्यादा मत सोचिए, थोड़ा वॉक करिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब,
0: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: जो श्रोता फोन कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार अपनी बातों को शुरू करते हुए फिर वही सवाल पूछना चाहेंगे कि सर ये बात बार बार मन में आ रही है कि क्या हर उम्र के लोगों को मनोरोग हो सकता है?
0: जी बिल्कुल, किसी भी उम्र के लोग को मनोरोग हो सकता है, क्योंकि बच्चा चाहे 4 साल का हो, चाहे वो कोई 100 साल का आदमी हो, मन तो सभी के पास होता है, समस्याएं सभी के पास होती है।
2: हाँ?
0: कई बार इस पूरे वातावरण में हमारे मन के हिसाब से हमेशा

0: नहीं होता है और जो इस वातावरण के साथ अपना एक एडजस्टमेंट सामंजस्य नहीं बैठा पाता है तो उसको मानसिक समस्या होने के चांसेस कई बार रहते हैं। या छोटा ही बच्चा उसके मन की कोई ना माने या उसको कोई परेशान करे, बहुत ज्यादा डांट फटकार लगाए बेवजह का, बहुत रिस्ट्रिक्शंस डाल दीजिए तो उसका मन भी बीमार हो सकता है। आदमी बड़ा होता है, उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, आए दिन जीवन तो बड़ा अनिश्चित है ना, समस्याएं कभी भी किसी तरफ से आ सकती है।
1: बिल्कुल
0: ये एक मन पे नकारात्मक प्रभाव के कारण है। आप तनाव में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आपको कहीं ना कहीं जरूर वो साइकोलॉजिकल या जिसको हम कहते हैं मानसिक समस्या हो सकती
1: जी सर, अक्सर देखा जाता है कि एक उम्र के बाद भूलने की समस्या आ जाती है, जैसे आपने अभी कहा है ओल्ड एज में। ओल्ड एज में सर ऐसा अक्सर होता है कि कुछ बातें भूल जाते हैं हमारे बुजुर्ग, कुछ चीजें रख के भूल जाते हैं और उन्हीं में परेशान होते रहते हैं, खोजते रहते हैं, तो क्या ये भी किसी मनोरोग का संकेत है?
0: देखिए, पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, बट हाँ कई तरह के, जैसे आपने एक शब्द कहा बुजुर्ग, बुजुर्ग अवस्था ऐसी होती है कि जहाँ पर,
1: सर आपको रोकना चाहेंगे,
0: जी
1: एक फोन आ रहा है। हेलो
2: हेलो हेलो,
1: जी, आरोग्य में आपका बहुत स्वागत है, आप अपना नाम बताएं।
2: मैम हम गाजीपुर से निखिल बोल रहे हैं, रेडी कर
1: आज का विषय है हमारा मनोरोग
2: जी।
1: के विभिन्न प्रकार, इलाज और बचाव के उपाय, और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हमारे बीच हैं, आप अपना सवाल उनसे पूछें।
0: हाँ बोलिए सर, नमस्कार।
2: अपना तो घोटा गया है,
0: आपकी एज कितनी है बेटा? हाँ
2: उम्र है 18
0: 18 साल है। चलिए,
2: जी
0: अच्छा सवाल है आपका। देखिए,
2: जी
0: मन है तो मन तो आपको पता है, और होता है
2: जी
0: रोग। जब आपका मन को किसी तरह से समस्या आ जाए, है ना, मन
2: जी
0: पीड़ा
2: जी
0: में रहने लगे, उदास रहने लगे, क्योंकि
2: मैं बहुत आता
0: हाँ तो उदासी रहने लगे, आपको बेचैनी रहने लगे,
2: जी
0: आप बहुत ज्यादा सोचने लगे, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाए, हमेशा
2: हाँ
0: मन इरिटेट रहे, फ्रस्ट्रेट
2: मैं
0: रहे,
2: बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मतलब
0: ये तो अच्छी बात है कि आप ये सवाल आप पूछ रहे हैं।
2: जी
0: और मानसिक या जो मनोरोग है उसका इलाज संभव है, उसका आप काउंसलिंग थेरेपी से मतलब अभी ठीक हो सकते हैं। तो आप पास के कोई भी, आप मनोचिकित्सक के पास, किसी काउंसलर के पास आप जाकर के मिलिए। आपके तो स्कूल में भी काउंसलर होंगे, तो आप स्कूल के काउंसलर की मदद ले सकते हैं।
1: सर एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगी कि हमारी बात हो रही थी बुजुर्गों के भूलने की समस्या को लेकर, क्या ये भूलने की समस्या किसी मानसिक रोग के संकेत होते हैं?
0: जी, भूलने की समस्या बिल्कुल, क्योंकि आपके जब मनोदशा ठीक नहीं होती है तो आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, आप कई बार भूलने लग जाते हैं
1: सर
0: फिर
1: फिर से रोकना चाहूंगी,
0: जी।
1: और फोन आ रहा है सर। हेलो,
2: हेलो
1: आरोग्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप कहाँ से बोल रहे हैं और अपना नाम बताएं।
3: जी, आप टिंकू यादव बोल रहे हैं मैडम?
1: अच्छा जी, आज का विषय है हमारा मनोरोग के विभिन्न प्रकार, इलाज और बचाव के उपाय, इस पे डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी आपके सवाल का जवाब देंगे, आप अपना सवाल पूछें।
0: जी
3: हेलो मैडम,
0: जी नमस्ते सर, नमस्ते, मैं डॉक्टर लक्ष्मण बोल रहा हूँ जी, मनोचिकित्सक।
3: नमस्कार
0: सर, सर नमस्ते जी, सर बताएं।
3: सर, ये सारे मनोरोग का विषय है सर।
0: हाँ जी,
3: ये मनोरोग सर कैसे होता है सर?
0: जब बहुत समय से आप तनाव में हो, दिन से चिंता में चल रहे हो, किसी तरीके का चिंता हो
3: जी
0: और उसको लेकर के आप जब अत्यधिक सोचने लग जाएं, बहुत परेशान
3: सर
0: रहने लग जाएं, तो धीरे धीरे आपका
3: जी
0: मन बीमार होने लग जाता है, उसको मन नहीं लगता है, वो
3: जी
0: बेचैन
3: सर
0: रहने लगेगा या लोगों से कटने लगेगा, अकेले रहना चाहेगा, कई बार उसको लगेगा कि जीवन निरर्थक है, कभी कभी जरा तनाव की वजह से सर में दर्द रहने लगेगा,
3: सर
0: मन
3: इसमें डॉक्टर
0: उदासी
3: इसमें क्या
0: रहेगी
3: करना पड़ेगा, ऐसा कोई है हमारे पास तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर?
0: जी। उसके लिए आजमगढ़ के आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, वहां पे देखिए जरूर मानसिक रोग विशेषज्ञ होंगे। आजमगढ़ में कोई भी सरकारी या प्राइवेट किसी भी मनो रोग विशेषज्ञ के पास आप जा करके अपनी समस्या बताएं, वो लोग बहुत
3: अच्छा
0: निपुण
3: ठीक
0: होते हैं, जरूर आपकी समस्या को वो हल करने की कोशिश करेंगे जी।
3: नमस्कार।
0: बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमें फोन कर रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। सर फिर से इसी ओर आपको ले जाना चाहूंगी, जो मेरा सवाल था कि सर क्या बुजुर्गों में जो भूलने की समस्या होती है वो मानसिक रोग के संकेत होते हैं?
0: हाँ बिल्कुल, ये संकेत हो सकता है, बार बार भूलना, कंफ्यूजन रहना, है ना, चीजें जैसे आप चाह के याद कर रहे हो, याद नहीं आ रही हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका मन उदास है, परेशान है, तो निर्णय भी नहीं ले पाएगा, और उसके अलावा आपको लगेगा कि चीजें आप चाह रहे हैं याद करना, पर याद नहीं आ रहा, क्योंकि होता क्या है कि हमारे सामने वाला दिमाग

0: होता है, सोचने समझने की शक्ति उसमें होती है। तनाव आता है तो वो ठीक तरीके से वो काम नहीं करता है, ये सब होने लगेगा।
1: एक बात और पूछना चाहूंगी सर, ये देखा गया है कि जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनमें तो थोड़ी जागरूकता होती है, अगर ऐसी कोई समस्या हो रही है तो वो मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, लेकिन अक्सर गांव में देखा जाता है कि ये समस्या है लेकिन लोग इसे नहीं पहचान पा रहे हैं और ऐसी समस्याओं को लेकर वो अंधविश्वास की ओर मुड़ जाते हैं। समस्या कुछ और है लेकिन समाधान कहीं और खोजते हैं, उन श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
0: एक आपने कही ना बात, जागरूकता,
1: हाँ
0: ये बेहद जरूरी है। किसी समस्या को समाधान ढूंढने से पहले जानना तो कि समाधान मिलेगा कहाँ पे,
1: हाँ
0: और जिस समस्या है वो समस्या है क्या। कई बार लोगों को तो मीडिया का जमाना आ गया है, टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, आपके पास कंप्यूटर है, तो हर आदमी के लिए अब तो बहुत आसान है कि अब तो AI भी आ गया है, बहुत आसानी से ये पता चल जाता है कि ये मानसिक समस्या है, या मानसिक समस्या है तो इसका समाधान भी मानसिक वाला ही करेगा। गांव में काफी हद तक अभी भी लोग झाड़ फूक में ज्यादा बिलीव करते हैं, टोना
1: जी
0: टोटका में, उनको लगता है कि ये कोई भूत की बीमारी है। जैसे एक बीमारी होती है सिज़ोफ्रेनिया, जिसको हिंदी में मनोविकलता कहते हैं, उसमें क्या होता है कि आदमी को कुछ दिखने लगेगा जो है नहीं, वो दिखने लगेगा, जैसे जिसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन।
1: हाँ
0: हाँ, उसको कई बार गलत बिलीव हो जाता है, मतलब लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लोग उसके खाने में जहर दे दिए हैं, लोगों पे शक करेगा बेवजह, बिना वजह के वो शक करेगा कि उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, उसको लोग मारना चाहते हैं, वो हमेशा डरा डरा रहेगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। इस तरह की शंका की बीमारी होने लग जाएगी, कान में आवाजें सुनाई देगी, लेकिन ये एक सामान्य मानसिक समस्या है जिसमें कि दिमाग के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं कुछ रसायन के। ये किस तरह का कुछ लक्षण दिखे तो नजदीकी मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए, साइकाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, ऐसे में तो दवाइयां ही पहले कारगर होती हैं।
1: हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर आपके परिवार में किसी को भी ऐसी समस्या हो रही है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, ना कि किसी के कहने पर कहीं और जाएं, जैसे सर ने बोला कि अंधविश्वास की ओर ना चले जाएं। आपके परिवार के सदस्य आपके हैं इसलिए जिम्मेदारी आपकी बनती है। सर, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी आपसे कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है सर, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, ये मोबाइल का जो अत्यधिक उपयोग है और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग है, क्या वो भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है?
0: बिल्कुल मैम, आज के दौर में अगर जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, हमारे मन को जिसने चोट दिया है, गहरी पीड़ा दिया है, वो सोशल मीडिया उसमें से एक है। ये एक मीडिया है जो सोशली अवेलेबल है सभी के लिए, और जाहिर सी बात है इस पे कोई रोक टोक उस तरह से है नहीं। इंटरनेट की दुनिया बहुत भयावह है, जितनी अच्छी है उतना ही उसका दूसरा रूप भी है। इसमें आप देखेंगे कि कोई भी वेबसाइट पे आप चले जाइए, कुछ भी आप बच्चे आजकल खोल करके देखने लग जा रहे हैं, गेम का
1: बिल्कुल
0: एडिक्शन है, आप देख रहे हैं, जितने भी साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर बुली हो रही है, आजकल AI के जमाने में किसी की फोटो लगा के कुछ भी लोग वायरल कर दे रहे हैं। अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि जो भी इस पे मैसेजेस आ रहे हैं, जो वीडियोस है, जो ऑडियो है, सच है या झूठ है।
1: सर, आपको रोकना चाहेंगे, एक फोन आ रहा है सर। हेलो,
2: हेलो।
1: हाँ जी, आरोग्यम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप कहाँ से बोल रही हैं?
2: हम बनारस से ही बोल रहे हैं,
1: हाँ जी, अपना नाम बताएं।
2: गरिमा।
1: आज का विषय है मनोरोग के विभिन्न प्रकार, इलाज और बचाव के उपाय, और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हमारे बीच हैं, आप उनसे अपना सवाल पूछें।
2: मेरा
0: जी
2: सवाल ये था कि जिस परिवार में अगर किसी व्यक्ति को रोग होता है तो परिवार के, मतलब जिस इंसान को रोग होता है उसके साथ साथ परिवार वालों को भी बहुत अफेक्ट करती है ये चीज, तो हम एज अ परिवार मेंबर कैसे हेल्प कर सकते हैं उनको?
0: जी आपने रोग की बात करी, यानी मनोरोग की बात करी है,
2: जी
0: राइट? हाँ, बहुत सही सवाल है गरिमा जी आपका, क्योंकि देखिए परिवार में जब एक आदमी को कोई मानसिक समस्या होती है तो उसका, जाहिर सी बात है, उसका उसका व्यवहार, उसका भावनाएं दूसरे आदमी पे भी एक नकारात्मक या बड़ा प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो ऐसे में पहली बात तो ये है कि नियमित रूप से उनका काउंसलिंग, दवाइयां चलाते रहें, और साथ में अपनी भी काउंसलिंग कराएं, क्योंकि कई बार लोगों को ये पता नहीं होता है।

0: है कि कैसे किसी भी मनोरोग के व्यक्ति को या मानसिक समस्या से ग्रसित व्यक्ति को कैसे उसको हैंडल करना है वो नहीं पता होता है। तो इस वजह से आदमी उसको दिल से लेने लग जाता है, वो भी वो बीमार होने लग जाता है। तो पहली बात, उसके बारे में आप एक आसपास के किसी मनोचिकित्सक से जरूर से मिलिए और उससे बात करिए कि सर मैं कैसे कर सकती हूँ, मैम मैं कैसे अपने आप को या पूरे परिवार को कैसे व्यवस्थित रूप से मैं समझा सकती हूँ, और खुद को भी ये समझाइए। और नहीं मिल रहा है मनोचिकित्सक तो आपके पास इंटरनेट का जो सही वेबसाइट है, सही ऑथेंटिक सोर्स पे जाकर के देखिए कि किस तरीके से किसी भी मानसिक समस्या से ग्रसित व्यक्ति के साथ आप अपना भी ध्यान रख सकते हैं, उसका भी ध्यान रख पाए। और एक चीज और मान के चलिए कि जो भी हो रहा है वो आपके कंट्रोल में तो है नहीं, आप उसके केयर टेकर हैं, तो अपने आप को थोड़ा बहुत भावनाओं के साथ नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के, और कहते हैं ना एम्पैथेटिक होकर के, मतलब उसको भी समझिए कि ये भी एक जैसे शारीरिक बीमारियां होती है वैसे ही एक मानसिक ये बीमारी है, मानसिक समस्या है जो उसको हो गई है। और सही देखभाल, नियमित काउंसलिंग और थेरेपी और जो भी उसके प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करके जल्दी से जल्दी उसको ठीक करने पे फोकस किया गया, नहीं कि लोग अक्सर ये कहते हैं अरे क्यों हो गया, ये नहीं होना था, भगवान हमें कोई श्राप दे दिया है या किसी का पाप लग रहा है। लोग जब समस्या के निदान और समाधान पे ना बात करके उसको जब दिल से लेने लग जाते हैं और उसको लेके कुंठा पैदा करने लग जाते हैं, उसको बोझ की तरह देखने लग जाते हैं, तो इस तरह की समस्या आती है। अदरवाइज आप देखेंगे तो कोई ना कोई समस्या, कुछ ना कुछ शारीरिक या मानसिक, सबको कोई ना कुछ थोड़ा थोड़ा है, लेकिन इसी जीवन में है। क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि वो हमारे परिवार का एक व्यक्ति है, वो हमारे परिवार का एक अपना ही हमारा ही खून है, और हम साथ में जब वो स्वस्थ था तो किस तरह से खुशियों के साथ रहते थे, मिल मिला के रहते थे। आज उसकी जरूरत है तो मैं खड़ा रहूंगा, कल को मेरे को कुछ होगा तो मेरे लिए वो खड़े रहेंगे। तो एक तरह से एक होता है ना कि एक एक समान भाव रख करके, एक सम्मान का भाव रख करके जब हम किसी को ट्रीट करेंगे तो बहुत आसानी से ये ट्रीटेबल है। बस उत्तेजित नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, और क्यों मैं नहीं करना है ये पूछना है कि कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, कैसे हम, क्योंकि एक प्रेम एक शब्द है नहीं है बल्कि ये एक पूरा जीवन है। और बिना प्रेम के, जैसे होता ना बिना पानी के मछली नहीं रह सकती, वैसे प्रेम के बिना मनुष्य नहीं रह सकता। प्रेम से उसको रखिए, प्रेम से स्वयं को रखिए, और थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचिए, एम्पैथेटिक होके सोचिए, तो जरूर से आप अच्छे से सबको रख पाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी या हो सकते हैं मदद मिलेगी इससे।
1: समझ में आई जी, धन्यवाद आपका,
0: बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी, अच्छा सवाल था आपका।
2: सर, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम एक बार फिर से आपसे सवाल करना चाहेंगे और ये पूछना चाहेंगे सर, अगर किसी को ऐसी समस्या है तो सबसे पहले वो अपनी समस्याओं को छिपाना शुरू करता है, अगर उसके बारे में उससे कोई बात की जाए तो वो यही कहता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं है, उसे ऐसा समझ में आता है कि मुझे कोई समस्या नहीं है और सामने वाला हमेशा ही गलत कह रहा है मुझे। और अगर उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बात की जाए तो वो हमेशा वहां से दूर भागना चाहता है और किसी न किसी तरह से इस बात को टालना चाहता है। तो ऐसा क्यों होता है सर कि किसी को भी अगर मनोरोग की समस्या हो रही है तो वो डॉक्टर के पास जाने से घबराने लगता है?
0: देखिए, मानसिक रोगों को अभी भी लोग छुपाते हैं, एक समाज में ना एक्सेप्टेंस नहीं है, लोग आज भी मानसिक रोगों को एक बड़ी गलत दृष्टि से देखते हैं। गलत इसलिए कह रहे हैं, इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है ना उनको
2: जी जी।
0: उनको लगता है कि एक वर्ड है जो कहना नहीं चाहिए, क्या मैं पागल हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे
2: जी?
0: मैं क्यों जाऊं, मैं थोड़ी ना परेशान हूँ, मुझे तो कुछ थोड़ी हुआ, मैं तो मन का मजबूत हूँ। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण है, क्योंकि देखिये जैसे आपका मोबाइल है, सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब हो जाता है तो कुछ भी इसमें कोई भी फोटो खुल जाती, कोई फाइल खुल जाती है। वैसे आपका मन है, मन में क्या होता है कि आपका मन जब उदास परेशान बेचैन होता है तो वो भी हैंग करता है, उसके भी अंदर सॉफ्टवेयर ग्लिचेज आते हैं।
2: अच्छा,
0: तो वैसे ही जब आते हैं तो आदमी का व्यवहार थोड़ा सा सामान्य रूप से थोड़ा हटके, जिसको हम असामान्य कहते हैं, वो हो जाता है। और इससे सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसका व्यवहार, उसका मनोभाव या उसके जो इमोशंस है, जो उसकी भावनाएं हैं, ये सब कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। और जब वो डिस्टर्ब होती है तो उसका व्यवहार बिगड़ेगा, तो लोग बड़े अजीब से देखते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो गया, एक्सेप्ट नहीं करते।

0: उसका कई बार मजाक बनाते हैं लोग। लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत कमजोर है, ये मतलब उनको लगता है कि छोटी सी बात इसके लिए इतनी बड़ी बात है।
1: जी सर,
0: तो जो समाज में बनने वाले जो मजाक हैं, एक्सेप्ट ना करने वाले लोगों को आज भी लगता है कि लोग नाटक कर रहे हैं। तो इस तरह से लोगों के अंदर ना एक जो कहते हैं ना सिंपैथी जो होती थी, संवेदना लोगों को लेकर के, वो संवेदना अब कहीं ना कहीं कम हो रही है। अब उसके बहुत सारे अनेकों अनेक कारण हैं। तो लोग मजाक ना बने, लोगों के बीच में मखौल ना उड़े, इसलिए लोग डरते हैं। लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं है कि अभी भी मेंटल हेल्थ को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जब तक कि बहुत अत्यधिक समस्या ना उत्पन्न होने लगे, उनके पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब जब होने लग जाता है।
1: सर रोकना चाहूंगी और एक फोन आ रहा है तो उसे पहले देख लेते हैं। हेलो,
2: हेलो,
1: आरोग्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से बोल रही हैं और अपना नाम बताएं?
2: जी मैं अयोध्या से बोल रही हूँ, मनीषा, एक हाउस वाइफ हूँ।
1: जी मनीषा जी, आज का विषय है मनोरोग के विभिन्न प्रकार, इलाज और बचाव के उपाय। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हमारे बीच हैं, आप उनसे अपना सवाल पूछें।
0: जी नमस्कार मनीषा जी, बताएं। जी,
2: नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे ये पता करना था कि जैसे मेरे बच्चे टीनेज में हैं,
0: जी,
2: तो आपसे मैं ये जानकारी लेना चाहती थी कि जैसे टीनेज में कुछ अपोजिट सेक्स के लिए थोड़ा अट्रैक्शन होता है,
0: जी,
2: तो ऐसे में हम बच्चों के लिए बचाव के तौर पर क्या चीज कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, या फिर उनकी लिमिट्स हम उनको कैसे बता सकते हैं, इसके बारे में जानकारी करनी थी डॉक्टर मुझे।
0: जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आज के समय का बहुत रेलेवेंट, जिसको हम बोलते हैं प्रासंगिक सवाल है मैम। टीन एज में आते ही हमारे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे हमारे अंदर रासायनिक चेंजेस बदलाव आते हैं और ये प्यूबर्टी का एज होता है। उस एज में बहुत हद तक ये होता है कि एक दूसरे जेंडर के साथ एक अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन बहुत ये स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है। लेकिन बच्चे का जो दिमाग होता है, जो मैच्योरिटी होती है, वो उस तरह से डेवलप नहीं हुई होती है, तो उसको सही और गलत के बीच की पहचान नहीं होती है। पर कभी कभी कहते हैं ना एक कि जानकारी ही एक सुरक्षा का और एक दवा का रूप में काम करता है। तो बच्चों को अगर जो हम इसका एजुकेशन दें, खासकर उनके बारे में कि उनके अंदर कब कब किस तरह के बदलाव आएंगे और वो बदलाव किस तरह से उसके ऊपर एक अनुकूल प्रभाव डालेगा, कई बार वो प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जैसे कि बहुत स्वाभाविक है कि दूसरे जेंडर को देख करके उसका अट्रैक्ट होना, अच्छा फील होना। और आज का सबसे बड़ा हुआ है कि मल्टीमीडिया जो आया है ना, सोशल मीडिया, जिसमें चैटिंग के तमाम साधन संसाधन हैं, तो एक तो उसका कितना उपयोग करना है बच्चों को ये बताना है, और ये भी बताना है कि अंदर किस तरह से सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, किस तरह से उनमें जो सेक्सुअल चेंजेस की वजह से उनके अंदर मन पे किस तरीके से एक्साइटमेंट डेवलप होता है, और ये बड़ा प्रभावी उसके पढ़ाई को, उसके खेलकूद के जीवन को, उसके पारिवारिक जीवन को। तो ऐसे में कुछ योगा, मेडिटेशन, खेल कूद के प्रति लगाव, उसके अलावा बच्चे को ये बताना है कि उसका भी एक सही समय आता है, और कहते हैं कि हमेशा उसको प्राथमिकता, उसकी जो प्राइमरी गोल है उसके प्रति उसको जागरूक करते रहना नियमित रूप से, और उसको ये भी बताना है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना है, क्योंकि और दूसरी बात है इंटरनेट का लिमिटेड उपयोग, OTT प्लेटफॉर्म्स का लिमिटेड उपयोग, अगर जब उसको बताने में कामयाब रहे तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि बच्चे जो एक समाज से सीखते हैं, जो आजकल मीडिया, टेलीविजन और तमाम जो इंटरनेट के वर्ल्ड है उससे काफी हद तक प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में एक सही मार्गदर्शन माता पिता का, सही सकारात्मक उनके अंदर काउंसलिंग, क्योंकि पहला जो काउंसलर हो सकता है वो एक माँ हो सकती है, एक पिता हो सकता है, घर का कोई सदस्य हो सकता है, बिना जज किए एक अच्छा सा मित्रवत रूप में, और मित्रवत का मतलब सिर्फ उसको डोमिनेट करना नहीं, सही गलत से ऊपर उसके लिए क्या फ्रूटफुल है, उसके लिए क्या सुटेबल है, उसके फायदे और नुकसान बता करके किया जाए, तो हर व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक व्यवहार डेवलप किया जा सकता है, बस उस पे मार पीट के और मोरल प्रेशर बना के नहीं, वो ये गलत तरीका होता है। उसको स्वाभाविकता बताते हुए, नेचुरल प्रोसेस को बताते हुए, उसके कारण क्या उसके प्रतिकूल असर हो सकते, क्या अनुकूल असर हो सकते, दोनों को बताते हुए ऐसा करेंगे तो बच्चे देखिए वाकई में

0: और एक अच्छा सा एक दोस्त मतलब एक स्टैब्लिश करके, एक एक फ्रेंडशिप स्टैब्लिश करके, एक रैपर डेवलप करके बिना जज किए करेंगे तो डेफिनेटली उनको बहुत फायदा मिल सकता है। जी मैम, बहुत सही सवाल है आपका, बहुत धन्यवाद इतना बेहतर सवाल पूछने
1: आपने
0: के लिए।
1: जवाब भी बहुत अच्छे दिए डॉक्टर साहब, काफी रेलेवेंट हैं और मैं
0: थैंक
1: उनको
0: यू
1: अप्लाई करके पूरी कोशिश करूंगी।
0: जी।
1: बाकी मैं आपसे दोबारा कांटेक्ट कर सकती हूँ, वही नंबर बताएंगे आप क्या?
0: जी जी आप 9696384984 पे कॉल करके बात कर सकते हैं
1: ओके
0: लगता है तो। जी
1: ओके ओके
0: जी
1: थैंक यू डॉक्टर।
0: बहुत धन्यवाद
2: सर, आपकी बातों को सुनकर हमारे श्रोता बहुत ही संतुष्ट हुए होंगे, क्योंकि मनोरोग एक ऐसी समस्या है जिस पर जल्दी से बात नहीं हो पाती है। और कुछ श्रोता ऐसे होंगे जिनका फोन आज नहीं लग पाया होगा, तो उनके मन में भी सवाल रह गया होगा। लेकिन सर, समय की कमी के कारण अब अपने कार्यक्रम को यहीं रोकना होगा। आप आए और अब हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब दिए, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: स्वास्थ्य संबंधी साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम अभी आप सुन रहे थे। आज का विषय था मनोरोग के विभिन्न प्रकार, इलाज और बचाव। डॉक्टर लक्ष्मण यादव से बातचीत की मनु सिंह ने।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
5: चेक जाना पड़ेगा।
6: अरे गेम छोड़ के?
5: एक महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है।
6: अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को।
5: कैसे?
6: आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट, कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। आज की प्रस्तुति अरुण पांडे की।

0: इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का।
1: एक्सक्यूज मी,
2: हाँ बोलना।
3: क्यूट है ना?
0: और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार।
4: सलाम।
0: आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
5: हाँ सर, नमस्ते।
0: नमस्ते।
5: समाज सेवी शंभुनाथ खरवार बोल रहा हूँ, नौगढ़ से सर।
0: नौगढ़ से? तो ये बता दें, समाज सेवा का कौन सा काम कर रहे हैं अभी आप?
5: सर, हर तरह का, जैसे बड़े बुजुर्गों महिलाओं का सम्मान करना, उनका सेवा सत्कार करना, नौजवानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना।
0: जी जी। और अब तक कौन से महत्वपूर्ण कार्य आपने किए हैं?
5: उनके दुख सुख में हाजिर होना।
0: जी जी। तो किसी संगठन वगैरह से भी जुड़े हुए हैं?
5: जी नहीं, संगठन से नहीं जुड़े हैं।
0: जी जी। अच्छा, स्वयं अपने स्तर पर आप समाज सेवा करते हैं, यानी कभी भी कोई जरूरतमंद आपको दिखे तो उसकी आप मदद करते हैं?
5: जी, हमें प्रेरणा।
0: और अब बता दें कि हमारे आकाशवाणी केंद्र से किस प्रकार जुड़े और प्रोग्राम कैसे लगते हैं आपको, कितने समय से सुनते हैं?

0: ये प्रोग्राम तो आपका बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत क्षेत्रों में इसका आवाज सुनने को मिलता है
1: जी।
0: इसमें अपने मन की बात कहने को पूरी आजादी है कि आप अपने मन की बात खुल करके कहें।
1: हाँ हाँ, हालांकि हम लोग की थोड़ी सी अपनी सीमाएं हैं, कुछ कुछ चीजें हम लोग रेडियो में नहीं रख सकते, तो उसके बाद भी बहुत सी बातें आपकी रहती हैं प्रोग्राम में।
0: जी जी,
1: ये तो है कि श्रोताओं की आवाज इस कार्यक्रम के जरिए पूरे समाज, देश, दुनिया तक पहुंचती है।
0: सबका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप लोगों का आशीर्वाद से मेरा ये हेलोफोनिक फरमाइश कार्यक्रम में फोन से बात हो रही है आपसे।
1: जी जी, बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका। तो ये नौगढ़ तो बड़ा ऐतिहासिक जगह है और वहाँ किला वगैरह है जिसका बड़ा जिक्र आता है।
0: जी जी, चंद्रकांता वाला।
1: जी जी जी, तो अभी उसकी स्थिति क्या है? हाल में हमने कहीं पढ़ा कि उतनी देख रेख नहीं है, या फिर अंदर की जगहों को लोग जाकर अब देख सुन नहीं पाते हैं?
0: जी, उसपे जो नौगढ़ से थोड़ी दूर पे वो किला है
1: जी,
0: अभी भी हम खुद यहाँ रहने वाले हैं, अभी उसकी गहराई से हम लोगों को खुद ही जानकारी नहीं है। वो अभी एक तिलस्मी की तरह बना हुआ है।
1: जी जी जी,
0: गवर्नमेंट चाहे तो उसकी खोजबीन करा करके और वहाँ पर्यटक।
1: अच्छा, थोड़ा सा उसको ध्यान दिया जाए, उसका थोड़ा सा आवागमन और उसका देख रेख अगर ध्यान से हो तो वो पर्यटन का अच्छा केंद्र हो सकता है।
0: बहुत अच्छा सर, ये ऑल इंडिया चल रहा था निर्जा गुलेरी साहब जी का।
1: जी जी,
0: कितना लोकप्रिय हुआ था, इतना लोकप्रिय कि हम क्या बताएं। जैसे हमारा ये रामायण है, हमारा महाभारत जो,
1: ये कहते हैं कि जो हमारे यहाँ ये जो खत्री जी थे जिन्होंने चंद्रकांता संतति लिखी वाराणसी के, उन्होंने इतना तिलिस्मी लिखा और उसके पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी कि वो उपन्यास पढ़ सके और वहां के बारे में जानकारी हो सके। और हाल में धारावाहिक तो कुछ एक वर्षों पहले आया था तो चर्चा और हुई थी।
0: जी, देवकी नंदन खत्री वाला।
1: जी जी जी, तो ऐसी जगहें हैं, बहुत अच्छी बात है।
0: जी जी, और इसी तरह से है, सब कराना चाहिए गवर्नमेंट को। विकास, पर्यटक स्थल बनेगा तो जरूर डेवलप होगा, विकास होगा हमारे नवगढ़ का।
1: और खासतौर से इतनी तेज गर्मी का मौसम है, तो ऐसे में जैसे कि पानी वगैरह की व्यवस्था व्यक्तियों के लिए, पशुओं के लिए किस तरह से हो रही है आपके इलाके में?
0: हमारे इलाके में समस्या है, यहाँ तक कि मेरा ग्राम पंचायत ये पसहावा चकरघट्टा पड़ता है, जबकि चकरघट्टा पावर हाउस स्टेशन है, चकरघट्टा रोडवेज स्टेशन है, चकरघट्टा पोस्ट ऑफिस है, यहाँ सारी पशु अस्पताल है, अब यहाँ सेंटर तक एक तरह से है।
1: जी जी,
0: लेकिन अभी यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ नहीं पूरे नवगढ़ ब्लॉक में पानी की समस्या है। अब यहाँ पानी पूरा, जब धरती पर ही नवगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पे पूरे क्षेत्रों की हालत यही है, तो सर फिर इसको सुधारना तो हमारे समझ से बहुत कम ही है।
1: जी जी, पठारी इलाका है और पथरीली जमीन है ज्यादातर।
0: जी जी जी, ये पहले तो आप का ही जिले का मेरा हिस्सा था सर, बनारस ही था।
1: जी जी
0: जी, कट करके चंदौली हुआ, चंदौली है।
1: अब बता दें कौन सा गीत इस कार्यक्रम में सुनेंगे आप?
0: जी, एक दिन बिक जाएंगे माटी के मोल, मुकेश जी का।
1: फिल्म है धर्म करम, 1975 की फिल्म है। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है, राहुल देव बर्मन का संगीत है और जीवन का दर्शन यथार्थ इस गीत में बताया गया है और मुकेश की आवाज में गीत है। आइए सुनिए, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: और भाई बनते मोहनट खट शाम सताए। जी सर नमस्कार।
0: नमस्ते। अच्छा श्याम ने सताना बंद कर दिया इसलिए अब नमस्कार हो गया। कुछ देर और सताते तो लंबी टेर हो जाती, गाना थोड़ा और बड़ा हो जाता।
1: हाँ लंबा हो जाता इसके।
0: और अभी पनघट और भोर शहरों में कहाँ पनघट कहाँ पहले वाली भोर, जब पुरवाई चलती थी ठंडी हवा रहती थी। हम लोग तो बहुत गर्मी में गुजारा हो रहा है आजकल शहरों में।
1: जी जी जी मैं अपना तारुफ करा देता हूँ।
0: बिल्कुल अपना तारुफ कराइए, हम लोग भी वही चाहते हैं।
1: मैं कोटवा बनारस से मोसी मंसारी बात कर रहा हूँ।
0: जी बहुत स्वागत है आपका, और एक अरसे बाद हमारी आपकी हाल के दिनों में बात हो रही है।
1: जी जी और मैं अपना जगह जगह चेंज कर चुका हूँ ना, उसके वजह से नेटवर्क पकड़ नहीं रहा है।
0: अच्छा वहां से नहीं मिल पाता है। हालांकि आप वाराणसी वाइब्स वाले प्रोग्राम में नुमाया होते हैं वहां पर अक्सर शाम को।
1: जी जी मजा आता है, अच्छा लगता है प्रोग्राम तो उसमें जुड़ते हैं सर।
0: ये कि पहले आप लोगों को देखने मिलने आरजेस को आना पड़ता था, वो सीधे आपको दिख जाते हैं। ये
1: हाँ
0: तो
1: आने की
0: जमाना
1: जरूरत नहीं
0: आया कि
1: पड़ता।
0: इंटरनेट और इस तरह के सोशल मीडिया के दौर में पहले जैसी बात नहीं है कि कौन कैसा दिखता होगा उसको देखा जाए।

0: अब आप लोग किसी का भी नाम खोज करके देश दुनिया में किसी भी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं।
1: सोशल मीडिया जब से आ गया तो सब कुछ देख रहे हैं हम लोग,
0: आसान हो गया।
1: हाँ आसान हो गया, पहले सोनी में आना पड़ता था, और वैसे आपको भी पहले कभी मैंने नहीं देखा था।
0: जी जी जी,
1: तो आप भी सोशल मीडिया पे आ गए तो आपको भी देख लेता हूँ। तो आकाशवाणी में आने का मन है, मगर अभी तो
0: नहीं। इसमें ऐसा भी होता है ना कि जैसे अभी मान लीजिए प्रोग्राम कर रहे हैं, और पहले तो 4-6 लोग हम लोग थे, अब तो अकेले कुछ ही लोग रह गए हैं, और हर कोई हर समय रहता भी नहीं है, और किसी काम में स्टूडियो में व्यस्त होता है तो बाहर मिलने का संभव भी नहीं हो पाता है।
1: जी, कल जिन्होंने वाराणसी वॉइस प्रोग्राम पेश किया था उनका नाम मैं भूल रहा हूँ
0: जी,
1: जो उनकी प्रस्तुति पेशकश बहुत ही मुझे लाजवाब, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: तो आपके यहाँ इंटरनेट तो है ना, आप उस पे तो लिख सकते हैं पत्र वाले में।
1: जी पत्र वाले में लिख सकते हैं, उसमें जरूर लिखेंगे।
0: हाँ,
1: और बताएं अरुण सर, आप कैसे हैं?
0: हम लोग ठीक ठाक हैं, और बस गर्मी का आनंद ले रहे हैं हम लोग।
1: गर्मी का आनंद तो हम भी ले रहे हैं,
0: जी
1: मगर
0: जी जी
1: इतनी तेज धूप है।
0: हाँ, ये कि सावधानी बहुत जरूरी है कि देखिए गमछा वगैरह हमेशा रखना चाहिए कि आपको जब जरूरत पड़े आप सर ढक सकें, चश्मा लगाएं, बाहर अगर निकलना हो जरूरी तभी निकले।
1: हम लोग को जरूरी तभी निकलना होता है क्योंकि दोपहर में जब खाना खाने ड्यूटी से तो तभी जरूरत होता है, वैसे तो दिन भर ही काम में रहते हैं, अपना कूलर वगैरह चलाते।
0: अच्छा, अभी आप जिस जगह दूसरे मकान में गए हैं वहां से अब आपका कारखाना दूर हो गया है दूसरी जगह?
1: जी मैं दूसरे यहाँ काम करता हूँ ना, घर पे काम नहीं है ना, तो मजदूरी करता हूँ किसी घर पे।
0: जी जी जी,
1: बजटिया में रहता था तो अब बजटिया नहीं रहता, यहाँ पे चला आया 1 महीने से।
0: जी जी,
1: तो मैंने सोचा क्यों ना अपना जगह भी बदल
0: दूं। अब धीरे धीरे आपको हम लोग बहुत छोटे से देख सुन रहे हैं, लेकिन अब आप धीरे धीरे, उम्र तो सभी की होती जाती है, तो अनुभव और परिपक्वता आपको समय के हिसाब से साथ साथ आता रहता है। कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
1: मूवी है एक रिश्ता, गीत पे बोले दिल लगाने की सजा तो न दोगे तुम, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार वाली,
0: कुमार सानू और अलका याग्निक है, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।
1: अरुण सर आपकी इजाजत है तो दो नाम ले ले।
0: जी जी बताइए।
1: हमारी एक आपके रेडियो के माध्यम से एक मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त बनी है आलिया खान शाहजहांपुर से, और मेरे भाई हैं वो शकील अंसारी जी,
0: जी।
1: और उनको ये गाना सुनाना चाहता हूँ,
0: दिल लगाने की सजा।
1: दिल लगाने की सजा तो ना दोगे। और एक बात और कहना चाहते हैं कि हेलो फरमाइश का ये जो प्रसारण है विविध भारती पे कर दिया जाता
0: है, ये अगर हमारे वश में होता तो कब का हो गया रहता है।
1: क्योंकि सुनने में थोड़ा सा सभी को दिक्कत होता है।
0: हाँ जी बिल्कुल, ये है कि पहले भी जब दोनों चैनल थे तो दोनों ही चैनलों पर हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम जाया करता था, लेकिन फिलहाल अभी क्या है कि हम आप लोगों के साथ ही साथ हैं, और बस इस प्रोग्राम में बातें हो जाती हैं, आपकी बातें हम लोग वहां तक पहुंचा जरूर देते हैं।
1: और एक बात और भी है कि इंटरनेट से हम लोग सुनते हैं तो कभी कभी आवाज बहुत धीमा मिलता है, मगर जब आप प्रोग्राम करने आते हैं
0: जी जी
1: तो आवाज रेगुलर बहुत ही अच्छा मिलता है, और जितने आरजे आते हैं तो उनको थोड़ा सा जानकारी नहीं, उसके वजह से
0: अब सारी चीजें प्रशिक्षण के समय सब कुछ बताया गया है, और बार बार हम तमाम प्रोग्राम में कहते भी रहते हैं कि हमारे यहाँ जो कंसोल है, जैसे हमारी आपकी बात हो रही है, तो ये दोनों का ही लेबल इसमें दिखाई देता है, तो उस पर थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: कई लोग अगर यहीं से लो लेवल यहाँ से आपको ब्रॉडकास्ट होगा तो आप तक तो धीमा सुनाई देगा ही।
1: हाँ, और हम लोगों के एरिया में बहुत धीमा सुनाई देता है, और जैसे गांव के एरिया में जो बाहर के सोता है उनको बहुत ही अच्छा सुनाई देता है।
0: गीत अब सुन लेते हैं, और आपकी बात हमारे साथियों तक भी पहुंच रही है, फिल्म है एक रिश्ता। बहुत शुक्रिया मोहसिन जी, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: प्रणाम गुरुदेव जी।
0: बहुत स्वागत है, प्रणाम। आपका फोन लग गया, हमें भी खुशी होती है कि आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है। वैसे एक वक्त के बाद मेहनत का फल मीठा होता है।
1: जी जी जी बिल्कुल सही बोला गुरु जी आपने। ऐसा है ना कि शुरू में 10-10 से मैं नहीं लगाता हूँ, शुरुआत से ही मेरी आदत है।
0: जी जी आप दूसरों के लिए मौका छोड़ देते हैं। हाँ
1: हाँ हाँ, मतलब कि कम से कम 10 मिनट बचता है तब मैं लगाता हूँ कि नए लोगों को
0: जी जी
1: बाहर से फोन लगाते हैं, बहुत दिन हो गया उनका नहीं लगा, उन श्रोता मित्रों का फोन लग जाए, आपसे बातचीत हो जाए, बड़ी अच्छी लगती है बातचीत सुनने।
0: जी नए नए लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन आपका भी अंदाज बातचीत करने का, और चूंकि रेडियो से बड़ा पुराना जुड़ाव है, गीत संगीत के आप शौकीन हैं, तो श्रोता भी अब आपका इंतजार करते हैं।
1: ये तो आप लोगों की ही मेहरबानी है, आकाशवाणी की कृपा है और आप लोगों का बढ़ावा है, प्रोत्साहन है।
0: जी जी ये है कि इस जो सोशल मीडिया है या फिर रेडियो में इस तरह के जब प्रोग्राम शुरू हुए, इससे एक तो लाभ है कि व्यक्ति का गांव शहर में एक थोड़ा सा पहचान बन जाती है और आत्मविश्वास में इजाफा होता है और लगता है कि जीवन थोड़ा सा सार्थक और सफल हो रहा है।
1: जी जी बिल्कुल सही है। आकाशवाणी से गुरुदेव जी सभी ने बहुत कुछ सीखा।
0: जी जी और हमारे बहुत से वो श्रोता हैं जैसे जो किन्हीं कारणों से दिव्यांग हैं, घर में रहते हैं, और रेडियो में जब फोन इन वगैरह में वो आने लगे तो उनकी भी एक सामाजिक प्रतिष्ठा बनी, उनमें आत्मविश्वास आया, उनमें ये फीलिंग आई कि हम भी कुछ हैं और लोग हमें जान रहे हैं और हम कुछ कर सकते हैं।
1: बहुत बहुत सही, बहुत सही कहा आपने सर, क्योंकि जितने भी मैं देख रहा हूँ कि लोग भी जो लब्ध प्रतिष्ठित लोग हैं, नामचीन लोग हैं, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप से शुरुआती दिनों में आकाशवाणी से अवश्य वो लोग जुड़े।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: जितने बड़े बड़े साहित्यकार हैं, मतलब इसमें जो लब्ध प्रतिष्ठित उद्घोषक लोग हैं,
0: जी जी
1: इसमें आप भी शामिल हैं, तो वो लोग साहित्य से बड़ा प्रेम रखते हैं।
0: शुरुआत में देखिए आकाशवाणी में गीत संगीत कला नाटक थिएटर फिल्मों से जुड़े वैसे लोग आते थे जो एक बड़ा शौक से जुनून से

0: अपनी सृजनशीलता के चलते यहाँ पर आते थे,
1: जी जी जी
0: और
1: है
0: एक से
1: ना।
0: एक बड़े बड़े संगीतकार हुए, और जो शुरू में साहित्यकार हुए जिनका जुड़ाव आकाशवाणी और दुनिया के तमाम रेडियो स्टेशनों से रहा है। आप ये
1: जी
0: देखिए,
1: हाँ
0: सुनील दत्त हो, बलराज साहनी हो, या हमारे यहाँ पंत जी हो, नागर जी हो, ये सभी आकाशवाणी से जुड़े रहे।
1: जी जी मुझे शुरुआत के दिनों की याद आ रही है कि बहुत से जितने लोग थे, मतलब कि सभी लोग किसी ना किसी रूप से साहित्य भाषा,
0: जी
1: और
0: जी
1: ये चाहे कवि हो, चाहे गजलकार हो, चाहे शायरकार हो, चाहे ऑथर हो, मतलब सब प्रेमी हुआ करते थे इस साहित्य की दृष्टि से।
0: दरअसल ये रेडियो तो कला संस्कृति का माध्यम ही है। यहाँ हम गणित के सवाल नहीं लगाते, और हम लोगों में क्रिएटिविटी को, सांस्कृतिक और जीवन के मूल्यों को हम बढ़ावा देते हैं।
1: और इसमें जो लोग जुड़े हैं, जो आपने कहा ना कि दिव्यांग लोग जुड़े हैं, तो वो तो आजकल की बातें हैं, क्योंकि इधर सोशल मीडिया जो आधुनिकीकरण में इतना प्रचार प्रसार हो गया है, तो इन लोगों को भी लाभ मिल रहा है।
0: जी
1: लेकिन
0: जी
1: शुरुआती दिनों में, रेडियो के जब शुरुआती दिन थे, उस समय बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े मतलब कि नामचीन लोग इसको सुनते थे और जुड़े रहते।
0: जी जी जी
1: बाकी
0: अभी भी
1: इतना
0: जैसे
1: बढ़िया
0: जो नए लोग हैं, थोड़ा सा उन्हें और पढ़ने की, भाषा में सुधार लाने की, बोलचाल के लबो लहजे में, और थोड़ा सा आकाशवाणी की एक संस्कृति है उसमें ढलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में जो व्यक्ति उसमें टिक पाएगा वही टिक पाएगा जो उन मूल्यों का पालन करता हुआ रहेगा।
1: जी। मैं उर्दू वाला प्रोग्राम सुनता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उर्दू जबान में कितनी तहजीब है
0: जी जी जी
1: बोलने में। जैसे कि हिंदी के शब्दों में अलंकृत हम लोग करते हैं, कई अलंकार शब्द हैं, मतलब ढूंढ ढूंढ के शब्दों का आप लोग स्क्रिप्ट जब लिखते हैं तो तैयारी करते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: मतलब मेहनत पड़ती है। आदमी फिर उसको अपने भाव को जब प्रकट करता है तो वो और ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं वो सब।
0: बिल्कुल। अब बता दें कि प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं, ये बात आपको पत्र के लिए धन्यवाद में लिखना है, क्योंकि बड़ा लंबा अंतराल हो गया उस प्रोग्राम में आपका।
1: अब ये तो अंतराल चलेगा ना, क्योंकि नए नए लोग मिल ही रहेंगे, नहीं नहीं करेंगे, सीखेंगे। अब मैं अब बार बार बहुत बातें लिख चुका हूँ सर, वही सब चीजें फिर दोबारा कहिए तो रिपीट कर।
0: हाँ, कुछ कुछ हर एक दो हफ्ते में लिखते रहने से क्या होता है कि सबकी उपस्थिति वहां रहती है।
1: गलती आग से दिक्कत रहती है, और लिखता हूँ कई बार स्क्रीन शॉट खींचता हूँ तब भी कुछ कम्बोज जी जुड़ गए आपके वहां से, कश्मीर से लोग जुड़ गए, तो ये लोग जुड़ेंगे ना, आपने जब जोड़ा है तो सभी लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे।
0: जी
1: हमको अपना डेवलपमेंट धीरे धीरे करना है, तुरंत उछाल नहीं मारना है कि तुरंत गिर जाए,
0: वही
1: स्टेप
0: टिकाऊ
1: बाय स्टेप
0: होता है।
1: चढ़ेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप जब चला जाएगा तो जरूर तरक्की होगी। चलिए
0: अब
1: इस
0: गाना
1: गर्मी
0: बता
1: के
0: दीजिए। हाँ
1: इस गर्मी के मौसम में जाड़े का गाना सुना
0: जी,
1: आनंद बख्शी साहब बड़े सहज और सरल भाषा में गीत लिखते थे। 1971 की फिल्म थी बनफूल,
0: आहे न भर ठंडी ठंडी, आप जैसे ही आपने शुरू किया हम समझ गए। नहीं, ये तो थोड़ा हम देर से बोले जब आप आनंद बख्शी पे आए, लेकिन जैसे ही आपने ठंडी वाली बात कही तो हम समझ गए कि आप वही गाना कहेंगे।
1: मैं तो ये पिछली बार ही मांगने वाला था, क्योंकि मुझे याद आया कि आपने जब व्हाट्सएप फरमाइश में मेरा नाम पढ़ा
0: जी।
1: तो कुछ आप रुक के फिर पढ़े, तो मैंने कहा ऐसा तो मैंने आज तक गुरुदेव जी को सोचा नहीं, तो मुझे सुनील जी का नाम लेने के बाद जब आपने मेरा नाम, इस बार नहीं इससे पिछले वाले प्रोग्राम, तो उसी समय मैंने कहा कि अब गुरुदेव जी से बात होगी तो गाना यही मांगेंगे कि आए ना ठंडी ठंडी चाय पी ले,
0: गरम गरम चाय पी ले,
1: गरम गरम चाय पी ले, तो गर्मी में सर्दी का आनंद लिया जाए।
0: अब ये कि ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो हाल के मौसम में आया, पहले तो चाय ही थी, और अभी भी जो चाय पीने वाले हैं वो कितनी भी गर्मी रहे वो चाय ही पीते हैं।
1: वही फायदा करती है सर, तो बार बार प्यास लगती है ना।
0: जी जी
1: जो बार बार प्यास लगती है, आपके आकाशवाणी भवन के बगल में बलदेव पान वाला,
0: जी जी जी
1: पच्चीस है मेरा, जो किनारे पे जो पोस्ट ऑफिस रास्ता जाता है,
0: जी जी बलदेव के यहाँ ही हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, मालूम
1: तो
0: है।
1: उसके यहाँ लक्ष्मण मेरे साथ काम करता था, लक्ष्मण एक बैठता था बहुत पहले, तो बलदेव के यहाँ
0: अब उनके लड़के रहते हैं किशन विकास, ये सब रहते हैं।
1: जी जी जी जी और एसपी श्रीनिवास बैंक में वो भी आपको याद करते हैं, आजकल थोड़ा वो है, मैनेजर थे पंजाब नेशनल बैंक है क्या आपके आस पास।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: चलिए गुरुदेव जी बहुत दिन बाद
0: गीत सुन लेते हैं,
1: बहुत अच्छा लगा
0: जी, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बनफूल फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: जी सर जी।
0: नमस्ते, स्वागत है, नाम बताइए अपना।
1: जी सर, ग्राम नरेला दामोदर भोपाल मध्य प्रदेश से रामबाबू शर्मा बात कर रहा हूँ।
0: बिल्कुल रामबाबू शर्मा जी का स्वागत कर रहे हैं भोपाल से हम। झीलों की नगरी है और बहुत ऐतिहासिक जगह है वहाँ पर।
1: हाँ जी सर। हाँ
0: और खासतौर से भोपाल तो थिएटर के लिए, रंग कर्म के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा, केंद्र रहा है एक समय जब एक से एक नाट्य और रंगकर्मी वहाँ पर थे।
1: जी सर जी सर।
0: जी जी, तो रेडियो से उसी प्रकार का जुड़ाव है, बड़ा एक सांस्कृतिक नगरी है भोपाल आपकी, और हमारा बनारस तो खैर है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: जी, तो ये मिलन हो रहा है, कैसे है मौसम आपके यहाँ भी? तेज गर्मी वाला ही होगा।
1: जी सर।

0: गर्मी 45 डिग्री है आज बिल्कुल, और लू चल रही है बिल्कुल अंदर ही है।
1: अब ये जो आखिरी 15-20 दिन है गर्मी का, इसमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसा आपने कहा कि तेज दोपहर में घर में ही रहा जाए और रेडियो सुना जाए वो सबसे अच्छा होगा, जब तक बेहद जरूरी न हो बाहर नहीं निकलना चाहिए।
0: जी सर बिल्कुल बिल्कुल।
1: कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
0: जी सर फिल्म का नाम है माफिया, उसमें गाना है दिल ए पागल दिल मेरा।
1: गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश
1: जी सर
0: नमस्ते।
1: नमस्ते साहब नमस्ते, मैं ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया।
0: क्या कहने, आपका नाम तो हम लोगों को याद हो गया है, आपके इलाके से आप बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप वगैरह के कार्यक्रम में भाग लेते हैं।
1: हम
0: तो
1: भाग भी लेते हैं और
0: जी
1: रिपोर्टिंग करके भी अपनी तरफ से भाग लेते हैं, अपना शौक पूरा करते हैं।
0: जी जी जी बहुत अच्छी बात है।
1: और उसको फिर अपने ग्रुपों में बांटते हैं कि आज आकाशवाणी वाराणसी से
0: जी
1: ये लोग शामिल हुए। पर हमें एक शिकायत आकाशवाणी वाराणसी से ये है कि यहाँ लोग, हालांकि शिकायत आपसे न कर गई तो श्रोताओं के लिए होगी
0: जी जी,
1: क्योंकि एक बार नाम शामिल हो गया और आपकी बार बार रिक्वेस्ट के बाद।
0: हाँ ये है कि और कुछ बड़े पुराने पुराने लोग भी हैं जो बार बार नाम भेजते हैं और शामिल होने के बाद ये कहते हैं कि नहीं हुआ, जबकि हमें याद रहता है कि शामिल हुआ है।
1: अब आपने कहा पुराने पुराने, इसको हम कह सकते हैं कि होता।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: और वो जब दोबारा नाम भेज देते हैं तो बड़ा अच्छा नहीं लगता।
0: हाँ हम इशारा भी करते हैं।
1: मैं इस मामले में मैं अपने तरफ से अपने लिए मैं कहता हूँ ये कि हम ये काम नहीं करते, क्योंकि हमें आकाशवाणी वाराणसी के जितने भी हमारे अनाउंसर महोदय हैं सभी पे विश्वास है कि उनकी अपील जो रहती है
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: सही रहती है। एक बार समय के अंदर भेज दो तो आपके यहाँ नाम जरूर शामिल हो।
0: बिल्कुल, इसीलिए अब तो हमने कहा कि आधे घंटे के अंदर भेज दीजिए, क्योंकि नाम बहुत ज्यादा आते हैं और लोग बार बार, कई लोग 12 बजे के बाद भी भेजते हैं तो हमें लग जाता है कि ये प्रोग्राम सुनते नहीं है। और कुछ लोग उसमें बाहर की फिल्मों के भी नाम भेजते हैं, कई श्रोता हमें लगता है 20-30% ऐसे हैं जो प्रोग्राम सुनते नहीं है, बस नाम भेजते हैं।
1: हाँ, हमें आपके अनाउंसर महोदय मैडम बहन जी स्वस्तिक श्रीवास्तव जी हैं, उनसे अगर मिले तो जरूर कहिएगा।
0: जी जी,
1: उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग की, हालांकि उसकी मुझे तारीख तो याद नहीं है, लेकिन समय हो गया 5-6 महीने हो गए।
0: जी जी जी, उधर जब हम 1-2 महीने नहीं कर रहे थे।
1: हाँ वो हाँ, और जब उन्होंने रिकॉर्डिंग हमारी, जैसे आप मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अब हम इसको सुनेंगे, लालायत रहेंगे कि हमारी
0: हमारा तो जैसे पिछले 20-25 वर्षों का जब से ये फोन इन शुरू हुआ एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि रिकॉर्डिंग हमने की और किसी को बजाया नहीं।
1: उन्होंने किया है मेरे साथ,
0: हम उतने ही लोगों से बात करते हैं, जिन लोगों से हम जितने नंबर बजा पाते हैं उतनी ही रिकॉर्डिंग ही हम करते हैं। और हालांकि ये हम भी विविध भारती में थे, वहां भी ऐसा नहीं था, वहां भी कई लोग 3 घंटे रिकॉर्डिंग करके और कुछ लोगों को छोड़ भी देते थे, तो उससे मेरी सहमति नहीं। जी जी जी,
1: अरे वाह, बिल्कुल सटीक पहचाना।
0: जी जी, तो अब बता दें कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं।
1: आज हमने चुन रखा है दो रास्ते फिल्म का। अपनी अपनी बीवी पर सबको गुरूर है।
0: क्या कहने, देखिए मौसम के अनुकूल है क्योंकि गर्मी के मौसम में तापमान हर जगह बढ़ा रहता है।
1: बिल्कुल। और इसको एक सुनने के पीछे हमारी मजबूरी भी है आपको बताने के।
0: जी,
1: क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने एक गीत सुना था, जैसे जहाँ भी हमारी फरमाइश फोन लगा वहाँ हमने गीत सुना अपना बना लो फिल्म का।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, अपने अपने मियाँ पे।
1: बिल्कुल ठीक,
0: वहाँ पे वो गाना है। हाँ
1: तो जब हमने वो सुना है
0: तो ये भी सुनना फर्ज बनता है। हाँ फर्ज बनता है, ये तो है कि बराबरी रहे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और 1969 की ये फिल्म बड़ी प्रसिद्ध है, हर गाना इसका बड़ा मकबूल है।
1: फिल्म के तो सभी गाने सुपरहिट रहे, मैंने देखी भी है।
0: जी जी जी,
1: तो
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।
1: हाँ हाँ,
0: और बड़े राज खोसला ने ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई जो आज भी उसके गाने फिल्में लोग देखते सुनते हैं। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, अच्छा लगा।
1: जी सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके मुझे।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फोन इन फरमाइश।
0: नमस्ते।
1: जय बाबा विश्वनाथ।
0: जय बाबा विश्वनाथ। ये कि विश्वनाथ की नगरी में बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और बाबा का प्रताप है, और गर्मी भी जरूरी है, हर मौसम का अपना महत्व है प्रकृति में।
1: जी, निसंदेह मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। मैं मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी से बाबा विश्वनाथ जी की नगरी से जुड़ा हुआ हूँ और आपको करता हूँ सर सब प्रेम प्यार है। नमस्कार।
0: जी, नमस्कार नमस्कार। यानी आप मथुरा से बात कर रहे हैं।
1: जी,
0: तो देखिए, दो बड़ी प्राचीन नगरी जो है, दोनों ही वो पुरियां हैं, उनका मिलन हो रहा है हेलो फोन इन फरमाइश में।
1: जी,
0: तो मथुरा में भी जैसे पर्यटकों का आना इस समय भी गर्मी में भी है, घूमने फिरने वाले तो साल भर आते जाते रहते हैं।
1: जी निसंदेह, यहाँ तो 12 महीने आना जाना पर्यटकों का, श्रद्धालुओं का, भक्तों का लगा रहता है। ये है कि 12 बजे से लेके 4 बजे शाम तक काफी प्रचंड धूप।
0: जी, और ऐसे में हम लोग भी कह रहे हैं कि इस तेज धूप में दोपहर में तो बिल्कुल ही बाहर न निकले जब तक बेहद जरूरी न हो, और अगर निकलना पड़े तो सिर को ढक कर रखें, पूरी बाह के कपड़े पहने, पर्याप्त पानी का सेवन करें और अधिकतर सायेदार जगह में छाया में रहें।
1: जी, मानवर मैं अपने आपको और अपने श्रोताओं को परिचय देना चाहता हूँ।
0: जी,
1: कि मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: बिल्कुल, तो बहुत पुराने आप रेडियो के श्रोता हैं और तमाम केंद्रों से जुड़े हुए हैं।
1: जी निसंदेह, आपकी बातों से सहमत हूँ। मैं कई आकाशवाणी केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ।
0: जी, और आज हमारे इस कार्यक्रम में किस गाने की फरमाइश है, क्या कह रहे हैं, कह लीजिए।
1: मानवर यही कहना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा कि गर्मी के प्रकोप से बच रहे, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में लू का प्रकोप चल रहा है, और घर में रहते हुए आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहे, आकाशवाणी से जुड़े रहे।
0: बिल्कुल, और ये एहसास भी नहीं होगा कि आदमी अकेले है, क्योंकि अलग अलग तरह के कार्यक्रम, समाचार, सूचना, शिक्षा, मनोरंजन सब कुछ एक ही जगह पे मिलता है, और वो है रेडियो सेट आकाशवाणी।
1: जी, रेडियो का तो यही उद्देश्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी श्रेणी के लोगों के लिए कुछ न कुछ आकाशवाणी केंद्र अवश्य प्रदान करता है, और अपने रुचि के अनुसार कार्यक्रम का आनंद लेते रहे।
0: जी, और खुशी की बात ये भी है कि आकाशवाणी जो है वो 90 वर्ष अपने मना रहा है, और इस मौके पर

0: आप जैसे पुराने श्रोता रेडियो के चाहने वाले कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो और अच्छा लगता है। आज किस गाने की फरमाइश है आपकी?
1: जी आपने याद दिला दिया कि 90वां वर्ष चल रहा है और 8 जून 2026 को ये 90 वर्ष पूरे कर जाएगा आकाशवाणी के प्रसार भारती के माध्यम से
0: जी।
1: और आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
0: हमारे तमाम श्रोताओं को भी हार्दिक बधाई। वो वास्तविक बधाई के पात्र हैं क्योंकि रेडियो से उनका जुड़ाव ही इस यात्रा को सफल और अहर्निश बनाए हुए है।
1: जी जी आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ बाबा विश्वनाथ की नगरी से आपसे एक गीत की फरमाइश है
0: जी।
1: हर हर महादेव शिव शंभु भोलेनाथ।
0: ये जैसे ये शिव महिमा का है,
1: शिव शंकर बेड़ा पार करो।
0: हरिहरन की आवाज है और महेंद्र देहलवी ने इसे लिखा है। अरुण पौडवाल का संगीत गीत आपको सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं साथ करता हूँ। सादर नमस्कार
0: जी आप।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो, होनी फरमाइए।
0: नमस्ते
1: नमस्ते आदमी भाई, बोल रहे हैं क्या?
0: जी। बिल्कुल,
1: हम राज नारायण पटेल, ग्राम मन्नापुर, जिला चंदौली से बोल रहे हैं।
0: स्वागत है राज नारायण जी। आप प्रोग्राम में अच्छा लगता है। गर्मी का मौसम है, बहुत तेज गर्मी वहां भी होगी, तो श्रोताओं से ये कहें कि बहुत सावधानी सतर्कता बरतें और रेडियो का आनंद लें। रेडियो सुनने के लिए आपको धूप में नहीं निकलना पड़ता है।
1: नहीं, रेडियो तो
0: जी
1: जहां मन करे तहां सुन लीजिए।
0: जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये कुछ दिनों की तेज धूप है जो बहुत नुकसान

0: आंदे होती अगर सीधे दोपहर में इस वक्त कहीं आदमी बाहर निकले। कैसे हैं, क्या हालचाल हैं आपके?
1: बहुत बढ़िया है।
0: जी
1: आप अपना हाल चाल बताइए।
0: हम लोग अच्छे से हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, पसंद आ रहे हैं आपको।
1: बहुत ये जो बदलाव हुआ है बहुत बढ़िया चल रहा है।
0: जी आज किस गाने की फरमाइश है आपकी?
1: फरमाइश तो दाता फिल्म का तेरी मेरी यारी है दोस्ती हमारी।
0: जी कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, 89 वाली दाता ना, तेरी
1: हाँ
0: मेरी
1: हाँ
0: यारी, सुरेश वाडकर और मोहम्मद अजीज की आवाजों में, फारूक कैसर ने इसे लिखा है।
1: दो हफ्ता पहले आपसे बात हुआ लेकिन कट गया।
0: हाँ, कई बार कट जाता है, कई बार आवाज भी सही नहीं आती है टेलीफोन पे, तो वो भी एक कारण हो जाता है। गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:10 से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 1052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। ये प्रोग्राम प्रसारित होता है शनिवार को 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे तक। और प्रोग्राम हमारे आकाशवाणी वाराणसी के आप मीडियम वेव के मीटर, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH, DRM और वेव्स OTT पर एक साथ सुन सकते हैं। तो आपके फोन कॉल का हमें इंतजार रहेगा। आज का प्रोग्राम समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: फरमाइश आज की प्रस्तुति अरुण पांडेय की थी। श्रोताओं, हमारे प्रसारण आपके लिए मीडियम वेव के मीटर, न्यूज ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच, डीआरएम और वेब्स ओटीटी पर एक साथ उपलब्ध हैं। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन का 1 बजने को है। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉ जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और

0: अधिग्रहण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्जापुर से प्राप्त सूचना, इसके अनुसार प्रीति पटेल, पिता का नाम गुलाब पटेल, ये ग्राम पकड़ी थाना अदलहाट मिर्जापुर की निवासी हैं और 29 अप्रैल 2026 की सुबह 10 बजे से जमालपुर मिर्जापुर स्थित डिग्री कॉलेज से लापता है। प्रीति पटेल की आयु है 22 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा लंबा है, आंखें और बाल काले हैं। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था जामुनी रंग का सूट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्जापुर को सूचना दें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय बलिया से प्राप्त एक सूचना, इसके अनुसार स्वीटी शर्मा, पिता का नाम सुबीर शर्मा, ये छतवा नगर पंचायत रत्सर कला छतरपुर की निवासी हैं और 21 अक्टूबर 2025 से लापता हैं। स्वीटी शर्मा की आयु है 14 वर्ष। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद बलिया को सूचना दें। स्वीटी मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज से प्राप्त एक सूचना, इसके अनुसार गोविंद चंद बर्मन, पिता का नाम महेंद्र चंद बर्मन, ये मपगर थाना मैनामुरी जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के निवासी हैं और रेलवे स्टेशन दीनदयाल उपाध्याय नगर से 25 सितंबर 2025 से लापता हैं। गोविंद चंद बर्मन की आयु है 58 वर्ष, कद 5 फीट 4 इंच, रंग सांवला, चेहरा लंबा है, इनकी दाहिनी आंख के ऊपर चोट का निशान है, ये बांग्ला भाषा बोलते हैं। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था सफेद शर्ट और काले रंग की पैंट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज को सूचित करें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में आज रात में 10 बजे आप सुनेंगे पंडित हर्ष शंकर भट्टाचार्य का सितार वादन। अंजुमन कार्यक्रम होगा रात में 9:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में अशोक खोसला की गई गजलें सुनवाई जाएंगी रात में 8:00। पत्र के लिए धन्यवाद, ये साप्ताहिक कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:31 पर। इसमें श्रोताओं के ईमेल के साथ होंगे अरुण पांडे और सना सलीम। 6:30 पर किस जगत कार्यक्रम में बातचीत का विषय होगा गर्मी में दुधारू पशुओं की देखभाल। डॉक्टर पुष्पराज शिवहरे से बातचीत की है सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने। इसी कार्यक्रम में लोकगीत के कलाकार होंगे छोटेलाल पटेल और उनके साथी। युवाणी कार्यक्रम में 5:15 पर आज की बात युवाणी क्विज, यूथ डायरी में आज के शब्द, विश्व घटना चक्र, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत, ये आज के आकर्षण है। बाल गोपाल कार्यक्रम होगा 5:00, इसमें आप सुनेंगे डॉक्टर विंध्यवासिनी मिश्रा की वार्ता

0: दृढ़ संकल्प होना सफलता की कुंजी। इसके अलावा चर्चा और बाल गीत एक ही फिल्म से कार्यक्रम में 2:30 पर आज की फिल्म होगी दिल चाहता है, पेशकश सना सलीम की। लोक रंग कार्यक्रम आप सुनेंगे 1:30 पर, और आज इतवार है। कार्यक्रम में सुनवाई जाएगी झलकी हाकिम की पतलून। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1:10 होने वाले हैं, इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले होंगी।
1: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सख्त गर्मी और बढ़ती हुई बिजली की मांग के दरमियान रियासत में बिला तातुल और मेयारी बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वजीर आला ने कहा कि हर सतह पर मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए ताकि आम लोगों, किसानों, ताजिरों और सनतों को बिजली के बहरान का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि महकमा तवानाई को गर्मी के इस मुश्किल दौर में पूरी हसासियत और तंदही से काम करना चाहिए। आज वजीर तवानाई अरविंद कुमार शर्मा और रियासती वजीर अखिलेश सिंह राजपूत की मौजूदगी में वजीर आला महकमा तवानाई, पावर कारपोरेशन और तमाम डिस्कॉम के अफसरान के साथ बिजली की फराहमी के निज़ाम का जायजा ले रहे थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में मेहनत और रोजगार महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों पर एक जायजा मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने चाइल्ड लेबर एजुकेशन स्कीम के बारे में बातचीत की, जो इस वक्त 20 अजला में चल रही है, और हिदायत दी कि इसे रियासत के तमाम 75 जिलों में नई दफात के साथ नाफिज किया जाए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी है कि महसूलात के मामलात को तेजी के साथ शफाफ और मेयारी तरीके से निपटाने को हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि जमीन और रेवेन्यू से मुतालिक मामलात में गैर जरूरी ताखीर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। वजीर आला ने वाज़ह हिदायत दी कि मुकर्रा मुद्दत के बाद भी ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात में मुतालिका अफसरान और अहलकारों की जवाबदेही तय करके ज़रूरी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। कल लखनऊ में रेवेन्यू अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात के निपटाने की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए वजीर आला ने कहा कि टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम, जवाबदेही और बरवक्त काम के जरिए रेवेन्यू अदालतों को मजीद मुअस्सर बनाया जाए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में मौसम से मुतालिक इब्तदाई वार्निंग सिस्टम को ज़्यादा दुरुस्त, तेज़ और अवाम पर मरकूज बनाने की हिदायत दी है। कल लखनऊ में रिलीफ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की एक जायजा मीटिंग में वजीर आला ने कहा कि कुदरती आफात के दौरान बरवक्त और दुरुस्त मालूमात बहुत सी जानें बचा सकती है, इसलिए मौसम की पेशगोई और वार्निंग के निज़ाम को सिर्फ तकनीकी इंतजाम तक महदूद रखने के बजाय मुअसर तरीके से आखिरी फर्द तक पहुँचाने के इंतजाम किए जाएँ। उन्होंने गाँव और हसास इलाकों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत करने, IVRS पंचायत सतह के लाउड स्पीकर्स, मकामी FM रेडियो, मोबाइल अलर्ट्स और सोशल मीडिया का वसी इस्तेमाल करने की हिदायत दी। रियासत के शहरी तरक्की और तवानाई के वजीर AK शर्मा की हिदायत पर बिजली महकमे में काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इस सिलसिले में मेरठ में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर योगेश कुमार को महकमा जाती कामों में लापरवाही बरतने पर फौरी असर से मुअत्तल कर दिया गया है। वहीं गाजियाबाद में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राहुल को भी अपने फराइज में संगीन लापरवाही बरतने पर फौरी असर से मुअत्तल कर दिया गया। सिविल सर्विसेज के लिए प्रीलिम्स 2026 का इम्तिहान आज मुनक्किद किया जा रहा है। इस बार सिविल सर्विसेज के इम्तिहान के लिए मेरठ, कानपुर और भुवनेश्वर में नए इम्तिहान मरकज जोड़े गए हैं। UPSC के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार ने आज मेरठ में इम्तिहान मरकज KV डोगरा लाइन का मुआयना किया और बताया कि मेरठ में तमाम इम्तिहान मराकज पर सारे इंतजाम अच्छी तरह किए गए हैं। डॉक्टर अजय कुमार ने यह भी कहा कि कमीशन का मकसद इम्तिहानी अमल को आसान, قابل رسائی اور

0: मुअसर बनाना है। उन्होंने कहा कि नए मराकज़ के इजाफे से उम्मीदवारों को बेहतर सहूलियात मुयसर होंगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ के जरिए मुनाक़िद मुंशी मौलवी सेकेंडरी और आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड इम्तहान 2026 के नतज का कल ऐलान कर दिया गया। इस साल मदरसा बोर्ड के इम्तहान का नतीजा 88.26% रहा, जिसमें लड़कियों ने लड़कों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। रियासत के तकरीबन तमाम अजला में इन दिनों शदीद गर्मी पड़ रही है, जिससे लोगों की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर है। बेशतर अजला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ कर गया है। बांदा रियासत का गर्म तरीन ज़िला बना हुआ है। बांदा के एडिशनल ज़िला मजिस्ट्रेट कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि इंतजामिया ने गर्मी और बचाव के लिए वसी इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:15 और 35 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम आज इतवार है।
2: आइए सुनते हैं झलकी हाकिम की पतलून। लेखिका है सुधा जौहरी, प्रस्तुतकर्ता सीमा विजय, कलाकार हैं पूजा हाड़ा, रमन कृष्ण अत्रे, सुब्रता पाराशर, धनेश वर्मा और तरुण व्यास।
3: हाँ जी।
4: अरे मेरी लता मंगेशकर, मेरा रुमाल ना मिल रहा है।
3: हाजी क्या है? हाजी वो सामने ही तो धरा है टेबल पर।
5: आज तुम्हें क्या हो गया है जी?
4: अरे के बताऊं, एक नया हाकिम आ रहा है चार्ज लेने को। सुना है बड़ा कड़क आदमी है।
5: अच्छा, नाम क्या है उसका?
4: सुमेर सिंह।
5: हाजी तो क्यों फिक्र करो हो, वो सुमेर सिंह तो तुम दिलेर सिंह। घबराने की के बात है?
4: अरे सब कहवे बड़ा कड़क पुलिस वाला है भाई।
5: कड़क होवेगा अपने घर का, कलफ लगा के अकड़ के अमचूर बना रहे। अजी तुम्हारा के बिगाड़ सके है, तुम कम कड़क हो के।
6: हमने आप सबको इसलिए बुलाया है कि अगर विभाग की तरफ से आपको कोई शिकायत हो तो हमें बताएं।
7: जी सर।
6: हम चाहते हैं कि ये शहर पूरे प्रदेश में आदर्श कहलाए। आप हमसे सहमत है ना?
7: जी सर।
6: गुड गुड। और ये भी हम बता दें, अनुशासन में किसी तरह की लापरवाही हमको बर्दाश्त नहीं है, समझे?
7: जी सर।
6: समय की पाबंदी, कर्तव्य निष्ठा, लगन बहुत जरूरी है।
7: जी सर।
6: आशा है आप हमें कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे।
7: नो सर, नो सर, नो सर।
6: गुड गुड। हम नियमित रूप से सभी विभागों का निरीक्षण करते रहेंगे और जैसा कि कहा है, लापरवाही हमें बर्दाश्त नहीं है, न किसी प्रकार का भ्रष्टाचार सहन करेंगे। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं।
7: जी सर। गुड डे सर। गुड डे सर।
6: आप पुलिस विभाग से है ना?
7: यस सर।
6: दिलेर सिंह।
7: जी सर।
6: आप ठहरिए, शहर की सुरक्षा कानून व्यवस्था वगैरह के बारे में बात कर लें, क्यों? ठीक है ना?
7: बेहतर है सर।
6: हाँ तो दिलेर सिंह।
7: यस सर।
6: यहाँ कानून व्यवस्था सब ठीक है ना?
7: जी सर, क्राइम इधर नहीं है सर, बस थोड़ा सा अतिक्रमण की समस्या है। ये ठेले ठुले वाले रास्ता जमा लेते हैं, बस उनको हटाना पड़ता है सर।
6: हाँ हमें भी पता लगा था, पर हम सब मिलजुल कर निपट लेंगे। इधर दूध वगैरह का क्या रेट है?
7: सर आप चिंता मत करिए सर, दूध वाले से मैं कह दूंगा, रोजाना सुबह 5 बजे आपके पास दूध पहुंचा जाएगा सर।
6: अच्छा, आप कह रहे थे कि क्राइम नहीं है, यानी?
7: जी सर, चोरी चकारी तो नहीं के बराबर है सर।
6: और मर्डर, मेरा मतलब है किडनैपिंग वगैरह कुछ?
7: बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बहुत शांत शहर है सर अपना, सब मेहनत से रोजी रोटी कमाते हैं सर और बिल्कुल मस्त रहते हैं सर।
6: चलिए चलिए, सब ठीक है।
7: सर आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी सर, ये रघु है बहुत होशियार है सर, आपके सारे काम अच्छे से करेगा सर। और कोई सेवा हो सर तो मेरे को आप बिल्कुल फोन कर सकते हैं, मैं आधी रात को हाजिर हूँ सर।
6: ठीक है।
7: जय हिंद सर।
6: जय हिंद।
4: चंद्रमुखी, लता मंगेशकर,
7: आज घर के बाहर

0: क्यों खड़ी है भाई है?
1: हाजी के करूं, टेंशन जो हो गया था।
0: अरे भाई तुझे काहे का टेंशन, तेरे तो सैया कोतवाल है, पुलिस वाले है।
1: अजी तुम गए तो कितना घबरा रहे थे ना, हाकिम ज्यादा कड़क है के?
0: हाकिम बातें तो ऊंची ऊंची करे था।
1: अच्छा?
0: समय की पाबंदी, कर्तव्य निष्ठा और वो काके वे, वो
1: काके वे?
0: काम की लगन वगन।

0: काई।
1: तो तुमने के भापा?
0: अरे भाई, पहली तो दूध की रेट पूछ रहा था हाकिम, पर
1: हाँ
0: जब मैंने कही कि सब इंतजाम हो जाएगा, फिर कुछ ना बोलिया। इसका
1: हाँ
0: मतलब
1: जी,
0: समझे?
1: हाँ जी, और के जी, फ्री की लेवे गो, फ्री
0: हाँ,
1: की।
0: फिर की ले गो। ये टेलीफोन भी ना चैन से सोने नहीं देता। पता नहीं सुबह सुबह कौन फोन पे भौंक रहा है। हेलो जी सर, जी सर, हाजिर हुआ सर, अभी आया सर, अभी आया।
1: अजी उठ गए? अजी टेलीफोन पर किसे सलूट कर रहे हो?
0: अरे हाकिम साहब को आदत पड़ गई है मेरी कि भाई उनकी आवाज सुनते ही सावधान मुद्रा में खड़े होके सैल्यूट, जय हिंद।
1: पर सुबह सुबह उनका फोन क्यों आया?
0: पता नहीं कुछ नाराज लग रहे थे।
1: हैं?
0: चलता हूं चंद्रमुखी, आज क्लास लगनी है, आज उनके तेवर कुछ ठीक ना लग रहे, झटपट तैयार होके निकलूं।
1: अब बोलो भला, ये भी कोई बात हुई? फोन सुना नहीं कि वर्दी खींच के तैयार हो गए? इतना बेकार हाकिम से डरना? हाकिम ना हुआ कोई भगवान हो गया हमारी जान को। उठो
0: तो
1: कहे तो उठो और बैठो कहे तो बैठो। अजी
0: हाँ,
1: अभी भी के जल्दी है आपको? अभी तो ड्यूटी का टाइम भी नहीं हुआ।
0: अरे तू ना समझे चंद्रमुखी, अरे पुलिस वाला 24 घंटे की ड्यूटी पे तैनात रहता है। और सुन, मैं जा रहा हूं, बस मदद करना बजरंगबली,
1: हे
0: नौकरी बचा
1: भगवान!
0: लेना, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो
1: अजी
0: गड़बड़ है। अरे रघु चाचा,
2: जल्दी आओ सर जी, जल्दी आओ, हाकिम
0: हाँ
2: साहब आपका इंतजार कर रहे हैं।
0: अच्छा,
2: आप ही रुको, मैं उनको जाकर बताता हूं कि आप आ गए हैं।
0: पर हुआ क्या है? ठीक है सर, सर नमस्ते सर।
3: हाँ नमस्कार नमस्कार, आइए दिलेर सिंह जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे।
0: हुकुम कीजिए हुजूर।
3: आप तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें कह रहे थे कि शहर बड़ा शांत है, यहां अपराध नहीं होते, चोरी चकारी नहीं होती, फिर दिन दहाड़े ये वारदात।
0: क्या हुआ सर जी, क्या हुआ?
3: क्या हुआ, हुआ क्या है? इतनी बड़ी वारदात हो गई और आप पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है? रघु,
4: जी सर,
3: चंपा, बताओ इन्हें क्या हुआ है।
4: जी सरकार, हुआ यूं कि कल शाम को सरकार ने आकर कपड़े बदले।
5: अरे हाँ सर जी, फिर मैंने जेबें देख के सारे कपड़े ले जाके बाल्टी के पानी में झाग वाला साबुन डाल के भिगो दिए।
4: और आधे घंटे बाद सर जी, ये चंपा तो चली गई रसोई में।
5: अरे साहब जी, रसोई में कितो काम होवे है थे जानो हो? खाना बनाना था ना, गवार की फली थी, मटर थे, आलू थे, कांदे थे। अब बताओ साहब, छीलने काटने में टाइम तो लगे साहब।
4: हाँ, और फिर मैंने कपड़े धोके निचोड़ के पीछे के आंगन में सुखा दिए, एक शर्ट, एक पतलून, एक बनियान, अंडरवियर और रुमाल। और सुबह जब कपड़े उठाए तो शर्ट, बनियान, अंडरवियर, रुमाल ये तो थे, पर पतलून नहीं
3: वही
4: थी।
3: तो, अब सवाल यह है कि पतलून गई कहां? आप जानते हैं कि पीछे के आंगन के चारों तरफ 8 फीट ऊंची दीवार है, उड़के तो जा नहीं सकती।
4: नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं। अरे उड़ेगी कैसे, हमने सब कपड़ों के चुटकी लगाई थी, चुटकी। अब हाथ से चुटकी खोले बिना उड़ नहीं सकती पतलून।
3: इसका सीधा साधा मतलब है, चोर आया, उसने चुटकी दबाकर पतलून निकाली,
4: जी
3: दीवार फांदी और ले गया। यह है शहर में आपका लाइन आर्डर।
0: पर सर जी, यो समझ में नहीं आ रहा, चोर भला अच्छी खासी शर्ट को क्यों छोड़ गया है?
3: आप चोर को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं दिलेर सिंह जी। आई वांट माई पतलून बैक, मुझे अपनी पतलून वापस चाहिए, किसी भी तरह कुछ भी कीजिए, समझे आप?
0: जी सर। रघु,
4: जी सर,
0: मुझे वो मौका वारदात पर लेकर चलो।
4: जी चलिए लेके चलता हूं।
0: अच्छा, तो यही वो जगह है जहां पर कपड़े सुखाए थे?
4: जी सर,
0: यही वो रस्सी है?
4: जी हाँ,
0: पक्का?
4: पक्का,
0: श्योर हो?
4: एकदम श्योर है सर जी, कल ही तो सुखाई थी।
0: तो ये सुखाई कितनी बजे थी?
4: सर जी,
0: जब चोरी हुई उससे पहले तुमने कब देखा था पतलून?
4: अब चोर मुझे बता के थोड़ी आया था सर जी।
0: चंपा, तुम बताओ कि पतलून तुमने सूखी सुखाई थी या गीली?
5: सब गीली थी।
0: मतलब तुमने ड्रायर में सुखाई नहीं?
5: नहीं साहब।
0: मतलब ये तुम्हारी गलती है। सर सर, मैंने मुकाम मुआयना चेक कर लिया है, तफ्तीश करके आपकी पैंट पता।
3: सारे हिस्ट्री शीटर्स को तलब कीजिए,
0: जी सर।
3: अपने खबरियों को एक्टिवेट कीजिए। आई वांट माई पत्नी बैक।

0: साहब जी, वो आपकी जो पतलून है उसकी कुछ डिटेल्स बताएं कि भाई कितनी वो लंबाई में थी, या चेन थी, या बटन लगे हुए थे, और मतलब
1: ना ऑफकोर्स बताऊंगा। डार्क चॉकलेट रंग था और हम मामूली कपड़े नहीं पहनते, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड। ये पतलून हमारी मदर इन लॉ ने शादी की एनिवर्सरी पर हमें गिफ्ट दी थी, गिफ्ट, समझते हो?
0: हाँ हाँ सर।
1: उनसे पूछकर हम आपको कपड़े का ब्रांड और टेलर का नाम भी बता देंगे।
0: जी सर।
1: याद रखिए दिलेर सिंह जी, इस पतलून के साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। महंगी होने के साथ ही इसकी सेंटीमेंटल वैल्यू ज्यादा है। हमारा पूरा महकमा लगा दीजिए।
0: सर आप वरी मत कीजिए सर, हम पूरी कोशिश करेंगे सर, आपकी पतलून आपको जरूर मिलेगी सर।
1: आई वॉन्ट रिजल्ट।
2: अजी सुनो जी, 10 दिन में ही तुम्हारा मुंह कैसा निकल आया है। हाँ
0: अरे क्या करूं चंद्रमुखी, पूरी कोशिश कर ली पर हाकिम की पतलून है कि मिल ही नहीं रही है।
2: अब के करोगे?
0: समझ में नहीं आ रहा के करूं और के नहीं करूं।
2: हाकिम को एक नई पतलून ला के दे दो।
3: हाँ
2: हाँ,
3: एक आध दोस्त ने यही सलाह दी थी।
2: हाँ तो सही है,
3: देखो बात करके देखूं। अगर हाकिम मान जाए तो नई पतलून दे के पीछा छुड़ाऊं।
2: अजी
3: हाँ?
2: अगर बहुत पैसे बताए फिर के करेंगे?
3: अरे बावली चंद्रमुखी, तुम मने को नहीं जानी के? अरे सब इंतजाम हो जाएगा।
2: हाँ हाँ।
3: देख अभी यूं जाता हूँ और यूं लेके आता हूँ।
2: अजी कमरा बंद करके क्यों बैठे हो? हाय राम, इतने रुपए?
3: अरे बावली बावली चुप कर।
2: अच्छा,
3: दीवारों के भी कान होते हैं।
2: पर इतने रुपए? हाकिम ने पतलून के पैसे बता दिए क्या?
3: हाँ बता दिए।
2: अच्छा,
3: पता है पूरे 5,000।
2: क्या?
3: हाँ
2: अजी, एक पतलून के 5,000? मानो या ना मानो, पतलून इतने की हो ही ना सके, लगे पैसे ज्यादा बता दिए उसने।
3: अरे बावड़िया, बता दिए तो बता दिए, उसका ईमान उसके साथ।
2: यानी ठेले वालों और आगे बढ़ाई दुकान वालों से वसूली करी।
3: अरे फिर और के करता, अपनी जेब से देता के?
2: अजी ना जी।
3: हाँ देख, ये है गणित, समझ है? हाकिम चिल्लाया मेरे पे, मैं चिल्लाया मेरे सिपाहियों पे, सिपाही चिल्लाए जनता पे, सिपाही ले आए वसूली, वसूली आई मेरे हाथ में और मैंने पहुंचा दी ऊपर, और वसूली ऐसे ऊपर तक जाती है। हैं
2: अजी, तो अब आई समझ में? हाँ। ये है असली गणित।
3: अब गणित तो तेरी समझ ले।
2: हाँ।
3: तेरे भतीजे के ब्याह में पहनने के लिए नई साड़ी के 4,000 चाहिए थे ना?
2: हाँ जी।
3: तो ये ले 2,000 के 2 कड़क कड़क नोट।
2: हाय सच्ची,
3: गिन ले।
2: हाँ।
3: जब हाकिम के नाम से वसूली हो ही रही है तो फिर अपना भी तो कुछ हिस्सा, कुछ हक बनता है, है? और सुन, घर की गृहिणी है, बढ़िया सी चाय बना के ला, है?
2: हाँ जी, चाय तो मैं अभी लाऊं चुटकी में।
3: चुटकी में।
4: अभी आपने सुनी झलकी हाकिम की पतलून। लेखिका थी सुधा चौधरी, प्रस्तुतकर्ता थी सीमा विजय, और कलाकार थे पूजा हाड़ा, रमन कृष्ण अत्रे, सुब्रता पाराशर, धनेश वर्मा और तरुण व्यास।
5: आज इतवार है, कार्यक्रम समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे लोक रंग।
6: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
7: जी,
6: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
7: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
6: पर ये होगा कैसे?
7: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
6: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
7: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
6: बस
7: बस
6: समझ गया।
7: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
8: आरबीआई कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
2: 0542227658।
3: 0542227658।
0: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।
4: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

लोक रंग कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और दिन के वक्त बहुत तेज धूप और गर्मी है, इस वजह से अपना ख्याल रखें, बाहर ना निकलें। बेहद जरूरी हो और बाहर निकलना पड़े तो सिर को ढक कर रखें, पूरी बांह के कपड़े पहनें और तरल पदार्थों का, पानी का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें। तो आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। और आज का ये प्रोग्राम जो लोक रंग होता है, आप जानते हैं, व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित। 7905519981 ये कार्यक्रम का व्हाट्सएप नंबर है। कलाकारों के नाम हम आपको शुरुआत में बता रहे हैं, उन्हीं कलाकारों के लोकगीत की फरमाइशें आपको भेजनी है। आज इस कार्यक्रम में शामिल कलाकार हैं हंसलाल सिंह, रेणु भारती और मन्नालाल यादव। हंसलाल सिंह, रेणु भारती और मन्नालाल यादव। सबसे पहले कलाकार का नाम जरूर लिखें और उसके बाद अपना नाम और जगह का नाम, वक्त रहते यानी 1:45 बजे तक संदेश भेज दें, ताकि लोकगीत भी आप पूरे के पूरे सुन पाएं और आपके नाम भी कार्यक्रम में शामिल हो जाएं। 7905519981 ये व्हाट्सएप नंबर है। और आपके बहुत सारे संदेश कार्यक्रम शुरू होने से पहले से ही आ रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि कलाकारों के नाम या फिल्मों के नाम जब हम बताते हैं, उसके बाद जो आपके जेन्युइन संदेश आते हैं वो कार्यक्रम में शामिल हों।

और आपके संदेश आ ही रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे जरूर गुजारिश करें कि हमारे तमाम श्रोता कार्यक्रमों से जुड़ी प्रतिक्रियाएं जरूर हमें भेजा करें कि कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं दोनों ही चैनलों के। और उसके लिए मेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। और पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम प्रसारित होता है जिसमें आपके मेल शामिल होते हैं रविवार यानी आज ही के दिन शाम 7:31 पर। उसे भी सुने और आकाशवाणी वाराणसी का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल है उसके साथ भी जुड़े रहें। और अब आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इस दादरा के साथ कलाकार हैं हंसलाल सिंह, फरमाइश हैं बहुत सी हैं, पहले लोकगीत सुनते हैं।

हंसलाल सिंह का गाया ये दादरा आप सुन रहे थे। फरमाइशें आप सबकी आई हैं। लाल माता सुदामा नगर अटलाई झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा और मनोहर बाई बागरी साथ में प्रभुलाल बागरी। हमारे श्रोता हैं हस्तुपुरा मऊ से मजहर अली अंसारी रजिया बेगम अंसारी मोहम्मद सादिक अंसारी बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। मजनू कटिला दिल्ली से ये संदेश कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा का और सतना से उमंग मलिक आकांक्षा मलिक और माही मलिक का है। आदर्श नगर मलोट पंजाब के श्रोता हैं राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा और सौरभ शर्मा। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा और गव्या मल्होत्रा। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून अंसारी असलम अंसारी अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी और डॉक्टर सोनम अदीबा। सारिमपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी आसमा खातून अंसारी आफताब मेहताब मेराज कल्लू और मल्लू अंसारी। गोलाबाजार बक्सर के श्रोता हैं श्रद्धानंद आर्य और अभियानंद आर्य। तुलसी

किन विना मस्किन आशीष राजा चेतन मस्किन की फरमाइश गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से आई है। चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रजता खुराना, केशु और रिधान खुराना। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा की फरमाइश छत्तीसगढ़ पलारी से। जमानिया गाजीपुर के श्रोता हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जायसवाल। गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल आशुतोष और अभिनव जायसवाल। ये व्हाट्सएप संदेश दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला गाजीपुर से आया हुआ है। जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम शाह का। लोको कॉलोनी लोहारू हरियाणा से हैं बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, बरखा, निहारिका, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार और उनके परिवार के बाकी सदस्य। मोटाला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर, रतन माला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं बत्ता, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू और निहारिका। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल। बबरी बाजार चंदौली से विजय और सरोज जायसवाल। रामनगर कदमा से मुरहू और देवंती जायसवाल और चकिया बाजार चंदौली से सुंदर और सुमन जायसवाल। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत की सूता, सुवर्ण, आनंद और सत्यमानंद हैं पाकुड़ झारखंड के श्रोता। ग्राम नागर कोहरा राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू और आराध्या साहू। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। सूर्यभान सिंह है बिसुंदरी घोरावल सोनभद्र के हमारे श्रोता। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया की फरमाइश डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। आरजू बानो, आलिया बानो, नेहा बानो, सिमरन बानो, सना बानो, सानिया बानो, मनीषा बानो, गुड़िया बानो है क्रिकेट स्टेडियम गंगापुर रोड वाराणसी के हमारे तमाम श्रोता। मुजफ्फरपुर बिहार से हमें सुन रहे हैं राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, नंदिनी कुमारी और चांदनी कुमारी। ग्राम पजौनिया जालौन से हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया। और अब कार्यक्रम का अगला लोकगीत। ये पूर्वी बहुत सारे श्रोताओं की फरमाइश पर कलाकार हैं रेणु भारती।

लेकिन श्रोताओ, आपके बहुत सारे संदेश इस पूर्वी के लिए आए हुए हैं और ये आवाज रेणु भारती की फरमाइश है आप सबकी। पटेल नगर मुगल सराय से हमारे श्रोता हैं सुनील कुमार सिंह। ये फरमाइश है सोनू बिंद की, जौनपुर से आई हुई। अमितेश कुमार तिवारी की फरमाइश कर नई बलिया से। इसी लोकगीत को सुनना चाह संतोष पांडे, रेखा पांडे, शिवम पांडे, आप सभी हैं चौखंडी हाथी बाजार वाराणसी के श्रोता। भोपाली यवतमाल के श्रोता हैं जयराम शिंगड़कर, दिशांत कुमार शिंगड़कर, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा और ज्योति की फरमाइश पीपर लोड सरगांव से आई हुई है। बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान और रितेश कुमार, दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा और पुष्पेंद्रमणि वर्मा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता हुजा, जोधपुर राजस्थान से संदेश रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और गर्वी का, संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह और विकास सिंह हमें सुन रहे हैं उमरिया मध्य प्रदेश से। मुबारकपुर रुचि तकी आजमगढ़ से हैं, दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकार हैदर, कनीज सकीना और हसीना दिलशाद, आयशा तालाब मुबारकपुर से, शाहीन फातमा, वसीम फातमा, अनीस फातमा, हसन जहरा और कनीज जहरा। अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिव प्रकाश प्रजापति, मोनी प्रजापति और राहुल प्रजापति कोरौता वाराणसी से, इमृति यादव ग्रामबर्ठी सकलडीहा चंदौली से, विजय यादव, बिंदु यादव, प्रतीक यादव अमोघ और वैदेही हैं रैदा आजमगढ़ के श्रोता। ग्राम चकपुटही असनाव बाजार जिला भदोही से गिरधारी लाल यादव, नागेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार यादव, साथ में सानवी यादव, रविंदा सिंह, रमन कुमार, जयंत कुमार देवरिया, नुआ और रामगढ़ कैमूर बिहार के श्रोता है। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और परिवार के सदस्य रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से हमें सुन रहे हैं, शुक्रिया आपका। वलीदपुर मढ़ा मऊ से राजेंद्र यादव, भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि, अनुराग दीप और भागल यादव। साउथपुर छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं ऋषि सेन, रितेश सेन और हर्ष कुमार सेन। ये फरमाइश आई है गाजीपुर गांव नारी पचदेवरा से अजय कुमार सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके माता पिता की। एमडी इरफान खान, मुस्कान खातून, रौनक खातून और बेबी आलिया हैं मलेर कोटला पंजाब से। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। मारहरा दरवाजा एटा के श्रोता

कहरवा मन्नालाल यादव और साथियों की आवाजें, फरमाइशें आप सबकी। परवेज अहमद की फरमाइश शुक्लपुरा वाराणसी से आई है और हमारे श्रोता हैं पहड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से अनिल गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, अंकुश कुमार गुप्ता और पूजा गुप्ता गौंड। सतना मध्य प्रदेश के श्रोता हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजता खुराना, केशु रिधान खुराना और तुलसी मस्किन जी भी हैं। गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी। नया पारा भिरई बालोस से हैं बसंत कुमार ठाकुर, सरोजबाई ठाकुर और ईश्वर राज साथ में पप्पू ठाकुर। काली माता मंदिर दिलदार नगर गांव गाजीपुर से किशुन सिंह कुशवाहा, हृदय नारायण गुप्ता और छविनाथ शर्मा। शाहकुटी मुगलसराय से सोनू जायसवाल और मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगलसराय से डब्लू और माया जायसवाल। ऊपरकोट मोहल्ला चखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी और सरफराज अब्बासी, सुदर्शन शाह, पलवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह की फरमाइश पद्मा टॉकीज नेपानगर से आई है। रुचिरा की ये फरमाइश आई है जौनपुर से, शुक्रिया आपका। गणेशपुर शिवपुर वाराणसी से संतोष कुमार, अशोक कुमार, मनोज कुमार और सनोज प्रजापति। जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन और तुबा आफरीन की फरमाइश रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से। नागर कोहरा राजनंद गांव से प्रेम साहू, पूजा देवी और दुष्यंत साहू। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी टिकेस्ट्रो, पॉल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर के श्रोता है और ये फरमाइश नरेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर की।

0: निवासा खुपटी महाराष्ट्र से हैं बंडू पोपलघट, माया शिवांश, चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट और हरी भाऊ बिडवे। चोचकपुर गाजीपुर से भास्कर दुबे और राम सकल चौधरी। आशीष कुमार की फरमाइश महरेव जौनपुर से आई है। मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार हैं हकीकतपुरा मऊ से। धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, भोपालगढ़, राजस्थान के श्रोता। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनफ यशप, शहनाज और सुहेल हसन अब्बासी। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा हैं ग्राम बठेना पाटन दुर्ग से। निसार सलमानी और नौशाद सलमानी धनौरी तेलीवाला के श्रोता। गहमर पकड़ीतर हनुमान मंदिर से हैं त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी और शिवनाथ जायसवाल। गोपालापुर जौनपुर से अवधेश तिवारी, प्रियंका तिवारी और शिवांगी तिवारी। अख्तर खान, अमजद खान और उनके दोस्त हैं गंगापुर वाराणसी से। तो श्रोताओं, ये था आज का लोकरंग कार्यक्रम और आपको बहुत शुक्रिया तमाम संदेशों के लिए। अब आज का ये प्रोग्राम समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम लोकरंग। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज 2 बजे और उसके बाद 2:15 पर दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिड डे न्यूज।

0: भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमरीकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने

पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार

0: उम्मीदवार में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को

0: अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भामरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ है जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 2:30 और 7 सेकंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।
3: कार्यक्रम एक ही फिल्म से लेकर हाजिर है आप ही का साया सना सलीम। नमस्कार दोस्तों, संडे का इंतजार हमें बहुत बेसब्री से होता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि आज ही का तो वो दिन होता है जब हम रिलैक्स कर पाते हैं अपने

लिए कुछ वक्त निकालकर अपने बारे में सोच पाते हैं, है ना। इसके अलावा रही बात एंटरटेनमेंट की, तो अगर आपने ट्यून किया है आपकी वाणी आकाशवाणी, तो आज हम आपको ले चलेंगे एक कानों देखी फिल्म के सफर पर। जी हाँ, हम सुनाएंगे और आप सुनेंगे फरहान अख्तर की इस फिल्म में युवाओं का एक नया संवेदनशील और संजीदा चेहरा दिखा। एक दशक पहले बनी ये फिल्म अपनी कहानी, गीतों और दृश्यों के कारण आज भी दर्शकों के दिलों में छाई हुई है। जी हाँ, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ साल 2001 के अगस्त माह में आई

दिल चाहता है ने आमिर खान की लगान की तरह अनेक नई चीजें आरंभ की। इसमें पहली बार जोरदार तरीके से किरदारों के लुक्स पर काम किया गया। फरहान अख्तर की पत्नी अधुना ने फिल्म के चरित्रों को उनके स्वभाव के मुताबिक हेयर स्टाइल दी। इसके अलावा फिल्म के फील पर भी मेहनत की गई थी। फिल्म के पोस्टर, प्रचार और गानों से स्पष्ट हो गया कि दिल चाहता है एक युवा फिल्म है। ये फिल्म फरहान अख्तर की प्रिय फिल्मों में से एक थी। इसके सभी चरित्रों से फरहान का निजी रिश्ता रहा है। हालांकि ये ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म नहीं है, लेकिन फरहान और उनके दोस्तों की जिंदगी के अंश इसमें हैं। जावेद अख्तर साहब के बेटे फरहान खान को लेकर उनके परिचित और रिश्तेदार निश्चित नहीं थे कि वो किस क्षेत्र में सक्रिय होंगे। कन्फ्यूजन लंबे समय तक चला। फरहान स्वयं तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें। जिंदगी को छूने और उससे जूझने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दिल चाहता है कि पहले के समय पर बात चलती है तो फरहान बताते हैं कि लंबे कन्फ्यूजन के बाद मैं पंकज पराशर का सहायक बन गया था। वो उन दिनों विनोद खन्ना के होम प्रोडक्शन के लिए हिमालय पुत्र डायरेक्ट कर रहे थे। उसी समय तीन दोस्तों में से एक सिद्धार्थ यानी सिद्ध की भूमिका अक्षय खन्ना ने निभाई थी। 24 जुलाई साल 2001 पहले बॉक्स ऑफिस पर तीन दोस्तों की कहानी वाली फिल्म रिलीज हुई थी। इस मूवी ने जहां दर्शकों को हंसाया तो इमोशनल भी किया। इतना ही नहीं, इस मूवी से एक नए बियर्ड लुक का चलन भी शुरू हुआ था। जी हां, फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बनी फिल्म दिल चाहता है आमिर खान, सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, प्रीति जिंटा, सोनाली कुलकर्णी, डिंपल कपाड़िया ने इस फिल्म में अहम किरदार निभाए। हालांकि बहुत कम लोगों को इस बात का पता होगा कि पहले आमिर का रोल ऋतिक रोशन और सैफ का रोल अभिषेक बच्चन को मिलना था। बाद में जब ऋतिक और अभिषेक किसी और फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे, तब आमिर को फिल्म से जोड़ने के लिए फरहान को 10 महीने तक इंतजार करना पड़ा, तब जाकर वो फिल्म की कहानी आमिर को सुना पाए। फरहान अख्तर की प्रीति जिंटा से पहली बार मुलाकात मुंबई में उस वक्त हुई थी जब वो क्या कहना मूवी के स्क्रीन टेस्ट के लिए आई थी। तब उन्होंने प्रीति से कहा था कि जब भी फिल्म बनाएंगे उन्हें जरूर शामिल करेंगे। फिल्म में पहले आकाश का किरदार अक्षय खन्ना को मिला था, लेकिन जब फिल्म में आमिर खान को शामिल किया गया तब ये किरदार उन्हें दे दिया गया। फरहान अख्तर, जावेद अख्तर और शंकर एहसान लॉय लोनावला गए और वहां से कंप्लीट साउंड ट्रैक के साथ लौटे। फिल्म के गाने उन्होंने सिर्फ 4 दिन में लिख दिए थे। फिल्म का ये गाना 80 के दशक की थीम पर फिल्माया गया है। इसमें सैफ अली खान एक सीन में रेड शर्ट और व्हाइट जीन्स में नजर आते हैं। उन्होंने गाने में अपने पैरों को ज्यादा नहीं उठाया क्योंकि उन्हें कॉम्बिनेशन वाले व्हाइट शूज नहीं मिले थे।

जैसा कि मैंने बताया कि फिल्म तीन दोस्तों की कहानी दर्शाती है कि कैसे तीन युवक उम्र के साथ जिम्मेदारी समझते हैं। आकाश यानी आमिर खान प्रेम की अवधारणा पर विश्वास नहीं करते हैं। समीर यानी सैफ अली खान बेहद रोमांटिक लेकिन भ्रमित इंसान है। जब भी वो किसी लड़की की ओर आकर्षित होते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें सच्चा प्यार मिल गया है। पेशे से कलाकार और तीनों में सबसे परिपक्व सिद्धार्थ यानी अक्षय खन्ना रोमांस में रुचि नहीं रखते और अपने काम के प्रति बहुत गंभीर और समर्पित हैं। आकाश यानी आमिर खान इस फिल्म में इतने इम्पेशेंट दिखाई गए हैं कि जल्दबाजी में वो शालिनी यानी कि प्रीति जिंटा से प्यार का इजहार कर देते हैं, बिना ये जाने कि वो किसी रोहित नाम के लड़के से सगाई कर चुकी हैं। कहानी आगे बढ़ती है और समीर यानी सैफ अली खान को पता चलता है कि उसके माता पिता ने उसके लिए जीवन साथी चुन लिया है। वो पहले तो विरोध करता है लेकिन जिस क्षण वो लड़की को देखता है तो उसे पसंद करने लगता है। पूजा यानी सोनाली कुलकर्णी किसी के साथ रिश्ते में होती हैं और इसलिए समीर को उसका सिर्फ दोस्त बन के संतुष्ट होना पड़ता है। सिद्धार्थ यानी अक्षय खन्ना अपने उम्र से बड़ी तारा यानी कि डिंपल कपाड़िया को पसंद करता है।

वो अपनी भावनाओं को दबाने का फैसला करता है क्योंकि वो जानता है कि वो समाज में अधिकांश लोगों की तरह इस संबंध को घृणास्पद मानते हैं, क्योंकि डिंपल कपाड़िया इस फिल्म में डायवोर्सी दिखाई गई हैं। जब सिद्धार्थ के परिवार और दोस्तों को पता लगना शुरू होता है तो सब कुछ गलत हो जाता है। सिद्धार्थ की माँ भयभीत होने लगती हैं। आकाश सिद्धार्थ का मजाक उड़ाता है, इसलिए वो उसे थप्पड़ मारता है जिससे उनकी दोस्ती में दरार बन जाती है। तारा यानी कि डिंपल कपाड़िया सुनती हैं कि सिद्धार्थ ने उसके कारण अपने मित्रों और परिवारों के साथ झगड़ा किया है और महसूस करती हैं कि उन्होंने उसका जीवन बर्बाद कर दिया है। वो उसे देखने से इनकार कर देती है। इस बीच जब आकाश यानी आमिर खान को उसके माता पिता ऑस्ट्रेलिया में पारिवारिक व्यवसाय के लिए काम करने के लिए भेजते हैं तो आकाश को पता चलता है कि वो शालिनी यानी कि प्रीति जिंटा के बगल में संयोग से बैठा है। वो उसे नए शहर के आसपास घुमाने के लिए कहता है। हालांकि शालिनी की सगाई हो चुकी है, वो उसके साथ जाती है और धीरे धीरे उसे उसका साथ पसंद आने लगता है।

वो ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वो कैसा महसूस करता है। खैर आखिरकार वो रोहित से शादी करने के लिए भारत जाती है। आकाश उसे जाने देने की कोशिश करता है लेकिन फिर ये महसूस करता है कि वो ऐसा करने में असमर्थ है। वो भारत लौटता है और उसकी शादी की पूर्व संध्या पर उससे अपने प्यार का इजहार करता है। शालिनी यानी कि प्रीति जिंटा का परिवार आशीर्वाद के साथ उसे स्वीकार करते हैं। इसके बाद तारा यानी कि डिंपल कपाड़िया को लिवर सिरोसिस की बीमारी हो जाती है और अस्पताल में वो सिद्धार्थ के सामने ही दम तोड़ देती है। सिद्धार्थ खुद को संभाल नहीं पाता। फिर बाद में आकाश जब भारत लौटता है तो अपने दोस्तों से मिलना चाहता है, स्पेशली सिद्धार्थ यानी कि अक्षय खन्ना से, और उसने जो गलती की थी उसका पश्चाताप करना चाहता है। फिर बाद में सिद्धार्थ और आकाश मिल जाते हैं। 6 महीने बाद तीनों दोस्त यानी कि आकाश, सिद्धार्थ और समीर, शालिनी यानी कि प्रीति जिंटा और पूजा यानी सोनाली कुलकर्णी के साथ यादों को फिर से उत्तेजित करने के लिए गोवा चले जाते हैं।

और वहाँ पे सिद्धार्थ एक खूबसूरत सी लड़की से मिलता है जो कि अपने वेकेशंस मनाने गोवा आई हुई है। और आखिरकार सिद्धार्थ तारा की यादों से बाहर निकल जाता है और हो जाती है एज यूजुअल हैप्पी एंडिंग। वैसे बता दूं आपको कि 2001 में इस फिल्म ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अपने नाम किया था। इसके अलावा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार अक्षय खन्ना को मिला था इस फिल्म के लिए, और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार सैफ अली खान ने अपने नाम किया था।

0: एक ही फिल्म से। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आप ही के साए सना सलीम के साथ। आज की फिल्म थी
1: दिल चाहता है।
0: अगर आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे जरूर से साझा कीजिएगा हमारी ईमेल आईडी पर pkldaarvaranasi@gmail.com। तो बस अब सना को इजाजत दीजिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और संडे को बेहतरीन ढंग से एंजॉय कीजिएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। डीटीएच, डीआरएम वेव्स, ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं, आज की हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा। शाम के 5:54 हुए हैं। बच्चे अपना कार्यक्रम सुने बाल गोपाल।
1: बच्चों जय हिंद। एहो चुन्नू मुन्नू देखा हो तोहार गुंजा दीदी तोसे बतियाए फिर से आ गईली। और जानत हुआ आज का बतियाई तू लोगन से। आज बतियाई अपने चुन्नू मुन्नू से अच्छी आदत के बारे में। लेकिन हमें पता हो कि जो हमार चुन्नू मुन्नू हुआ ना वो इतना प्यारा हुआ, उनकरे अंदर बहुत अच्छी अच्छी आदत हो। लेकिन फिर से भाई बतावल जरूरी हो, समय के साथ तू लोगन के सिखावल जरूरी हो। यही खातिर देखा हम लोगन जब आईला तब कुछ न कुछ नया चीज लेके आईला ना। आज लेके आयल है तू लोगन से ऐसन बात करे कि तू लोगन के जिंदगी में वो आगे काम आई। अब देखा हो अच्छा बच्चा बने खातिर तू लोगन के का करे के हो, बड़े लोगन का बात माने के हो, सच बोले के हो, सवेरे जल्दी जाग के अच्छे से पढ़ाई करे के हो। अब पढ़ाई के साथ साथ भाई खेल कूद भी जरूरी हो, ए लिए कुल चीज के लिए समय चाहिए। तो समय का प्रबंध करल जरूरी हो। समय का प्रबंध कैसे हुई, जब कुल चीज के लिए थोड़ा थोड़ा समय बांट के चलल जाई। अजानत हुआ जब तू लोगन खेले लगेला ना तो हम

0: देखी ला कि जब खेले लगी न बच्चन तो ओही में लड़ाई झगड़ा भी होना शुरू हो जाई। लेकिन देखा लड़ाई झगड़ा करल बुरी बात होला, ए लिए लड़ाई झगड़ा से दूर रहा और जवन बात ना फरिया तो ऊ बड़ा लोगन के पास जा, अपन समस्या रखा ऊ बात तू लोगन के फरिया दही। ए लिए अपने आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे के चाहिए। और देखा हो चोरी अब बेईमानी का आदत होला ना उसे दूर रहे के चाहिए, काहे से कि ये बहुत बुरी बात हो। केहू से बेईमानी करना, केहू का सामान छुपा देना, ये कुल गंदी आदत ना सीखे के हो, है ना। काहे से कि भाई तू लगन के आगे चल के अपन परिवार अपन समाज अपने देश का नाम आगे बढ़ावे के हो, तो अगर अब्बे से सीखल रहबा ना तो कुल काम ई जोन हो ना जिंदगी में आगे काम दे। आ एक बात और हो, देखा हो हम देखीला कि हर लोगन के पास मोबाइल हो और तू लोगन का कही बा खेल के अबा चाहे पढ़ के अबा तो महतारी का मोबाइल चोरी लुक्का लेके जाके कोने में बैठ के मोबाइल में जोन खेल हो ला ना के खेले लगबा। गलत बात, खेले के हो तो खेला भाई, लेकिन देखा मोबाइल का जितना सदुपयोग होला ना उतने दुरुपयोग भी होला। अब तू लोगन कब ओके ज्यादा देर तक लेके खेले लगबा तो ज्यादा देर तक का होई आंख तू लोगन का खराब होई, इ पे दिमाग पे असर पड़ेला। बड़ा लोगन कहेला ना कि मोबाइल से दूर रहा, मोबाइल रख दा अब ना खेले के हो, तो उ लोगन तू लोगन के अच्छी अच्छी बात सिखावेलन, उन लोगन का बात माना। अ घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो ओकर बात भाई सबसे पहले सुने के चाहिए, कहे से कि जब तू लोगन छोटा रहला ना तो यही लोगन तू लोगन के अपने गोदी में लेके खिलावत रहलन और तुके पूरा समय देत रहलन। अब समय आ गेल हो कि अब तू उन लोगन के समय दा। समय का मतलब ई हो कि उनकर बात सुना, उनकर जवन काम करे के हो करा, उनकर सेवा करा। जब सेवा करबा तो खूब सारा आशीर्वाद मिली, आई जो आशीर्वाद होला ना ये हम लोगन के जिंदगी में आगे सफलता ले आवेला। ए खातिर बच्चा लोगन तू लोगन सफल होइया, बड़ा लोगन का बात मनिया और उन लोगन से उन लोगन बोले ना उन लोगन के आज्ञा का पालन करे के चाहिए। अ देखा हो जब जीवन में सफलता का बात करल जाता ना तो सफलता खातिर एक बात और जरूरी हो, लेकिन वो हम तू लोगन के ना बताए, वो होई एगो यही पे देखा ना वार्ता लेके आ गई ले। और ये वार्ता जो है ना डॉक्टर विंध्यवासिनी मिश्रा है ना जो वो तू लोगन के बताइए कि भाई सफलता खातिर का करे के चाहिए। तो आवा ये वार्ता सुनल जाए, दृढ़ संकल्पता सफलता की कुंजी।
1: नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग दृढ़ संकल्पता पर चर्चा करेंगे। यदि किसी व्यक्ति में दृढ़ संकल्प यानी मजबूत इच्छा शक्ति होती है तो उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, उसकी सफलता निश्चित है। बच्चों कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यह केवल एक कहावत नहीं है बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। किसी भी मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसके शारीरिक बनावट में नहीं अपितु संकल्प की दृढ़ता में छिपी रहती है और यही उसकी सफलता की कुंजी है। संकल्प की दृढ़ता एक अदृश्य शक्ति है जो हमें दिखाई तो नहीं देती है, परंतु यह हमें कठिनाइयों से लड़ने का साहस अवश्य देती है, असफलताओं से भी सीखने की प्रेरणा देती है और निरंतर आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है तब परिस्थितियां भी उसके अनुकूल होने लगती हैं और रास्ता स्वयं बनने लगता है। बच्चों जीवन में संघर्ष बहुत जरूरी है, बिना संघर्ष के न तो अनुभव मिलता है और न ही सफलता। असफलता यह नहीं बताती है कि हम हार गए, बल्कि यह सिखाती है कि हमें किस दिशा में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। बच्चों जब हम परीक्षा देते हैं और उसका परिणाम आता है तो जिस विषय में कम अंक आते हैं उस विषय में ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता हमें पड़ती है। बच्चों दृढ़ संकल्प में केवल लक्ष्य का निर्धारण ही नहीं होता बल्कि उसे हर हाल में प्राप्त करने का प्रण भी होता है। दृढ़ संकल्प वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति बाधाओं को बहाने के रूप में नहीं देखता बल्कि

0: अवसर के रूप में देखता है। इतिहास के पन्नों में हम लोग को ऐसे कई उदाहरण देखने को सुनने को मिल जाते हैं जहाँ कई लोग अपने सामर्थ्य के बल पर असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाए हैं। हमें ऐसे महान व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। बच्चों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोगों के पास अवसर नहीं है, बल्कि यह है कि उनके पास दृढ़ संकल्प की कमी है। लोग रातों रात सफल होना चाहते हैं या कम मेहनत करके अधिक फल की चाह रखते हैं, कठोर परिश्रम से परहेज करते हैं और असफल होने पर हार मान लेते हैं। यही बात उन्हें सफलता से दूर करता है। हर सफलता समय मांगती है। बार बार लक्ष्य बदलने वाले सफल नहीं होते। बच्चों, दृढ़ संकल्प हमें तीन अमूल्य गुण प्रदान करता है। एक तो जीवन में कार्य की सफलता के लिए हमें स्पष्ट लक्ष्य बनाना आवश्यक है, जिससे हमारा हर कदम उसी दिशा में बढ़े। दूसरा यह कि दृढ़ संकल्प हमें अटूट आत्मविश्वास से भर देता है, जो असंभव को भी संभव बना देती है। दृढ़ संकल्प निरंतर मेहनत और धैर्य बनाने की प्रेरणा देती है। बच्चों, यदि हम प्रकृति से सीखे तो पाएंगे कि सूर्य बिना रुके बिना थके प्रतिदिन उगता है, नदियाँ निरंतर बहती रहती हैं, बीज अंकुरित होकर कठोर मिट्टी में भी एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। वहीं वृक्ष गर्मी धूप ठंड बरसात सब कुछ सहते हुए भी हमें छाया प्रदान करता है। ये सभी हमें एक ही संदेश देते हैं कि वह है निरंतरता और अटूट संकल्प जीवन का आधार है। प्यारे बच्चों, यदि व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होना है तो उसे दृढ़ संकल्पित होकर निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना होगा, जिससे कोई भी बाधा उसे विचलित ना कर सके। द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से मिट्टी की चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने से पहले उनसे पूछा कि तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है। तब सब ने अलग अलग चीजें बताई। केवल अर्जुन ने कहा कि गुरु जी, मुझे तो बस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। ऐसे ही बच्चों, हमें सफल होने के लिए केवल अपने लक्ष्य का ध्यान होना चाहिए और कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। बच्चों, दृढ़ संकल्प सफलता का एक मूल मंत्र भी है, जो साधारण व्यक्ति को असाधारण अथवा महान बना सकती है। बिजली के बल्ब के आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन की बात करें तो इन्होंने कई असफल प्रयोग के बाद जाकर बल्ब के आविष्कार में सफलता पाई। यदि एडिसन प्रयोग करना छोड़ देते तो हमें बल्ब की सुविधा कई वर्षों बाद शायद मिलती। इसलिए हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। प्यारे बच्चों, आज हम सभी संकल्प लें कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। विषम परिस्थितियों और कठिनाइयों से नहीं डरेंगे, साथ ही अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। दृढ़ विश्वास ही सफलता की कुंजी है, जिससे हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। अंत में बच्चों, कुछ पंक्तियां आपके लिए। नदियां चट्टानों से लड़कर अपना रास्ता स्वयं बनाती, मेहनत करने वालों की दुनिया जय जयकार लगाती, दुनिया जय जयकार लगाती। धन्यवाद।
1: तो इतनी नीक वार्ता सुनने के बाद अब फटाफट ये राम भजन सुन लाजे में मिश्रिता वर्मा और वान्या सिंह अपन अपन आवाज में तो के राम भजन सुनावत हैं।
2: My name is Nishita Verma and I'm 8 years old and I'm gonna sing a song named Ram and Babe.

0: तो बच्चों अब हम चले थे, हमें इजाजत दा। बच्चों जय हिंद।
1: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे युवा साथी अपना कार्यक्रम सुने युववाणी।

0: डर से नहीं, हौसलों से चलो, राहें कठिन हो तो संभल के चलो।
1: मंजिल मिलेगी एक न एक दिन, बस अपने सपनों के साथ चलो।
0: नमस्कार दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युमवाणी में। मैं हूँ मोनी।
1: और मैं हूँ नेहा। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि आज का दिन संडे का दिन है, और संडे वाकई बहुत ही स्पेशल होता है क्योंकि आज हम सारे हफ्ते के काम से फ्री होते हैं और एकदम रेस्ट मोड में आ जाते हैं। तो चलिए इस रेस्ट मोड को और भी चिलिंग मोड पर ले जाते हैं और कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
1: ओ
0: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
0: 0542227658।
4: दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो पूरी दुनिया के 56 देशों को एक सूत्र में पिरोता है, राष्ट्रमंडल दिवस यानी कि कॉमनवेल्थ डे।
5: दोस्तों राष्ट्रमंडल, जिसे अंग्रेजी में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहते हैं, एक स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें अधिकांश वे देश शामिल हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। इन देशों की कुल जनसंख्या लगभग 2.5 अरब है, यानी दुनिया की लगभग एक तिहाई आबादी। और गर्व की बात यह है कि इसमें हमारा देश भारत भी शामिल है।
4: इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र, शांति, मानवाधिकार और सतत विकास।

0: जैसे साझा मूल्यों को बढ़ावा देना, राष्ट्रमंडल देश मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और युवा सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। हर वर्ष इस दिवस के लिए एक विशेष थीम रखी जाती है जो उस समय की वैश्विक प्राथमिकताओं को दर्शाती है।
1: दोस्तों, भारत राष्ट्रमंडल परिवार का एक गर्वित और सक्रिय सदस्य है। हम राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा

0: में अपनी प्रतिभा का लोहा मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों की आवाज उठाते हैं और वैश्विक सहयोग में अपनी सशक्त भूमिका भी निभाते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस हमें ये याद दिलाता है दोस्तों कि विविधता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, इस राष्ट्रमंडल दिवस पर आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम एक बेहतर, शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व के निर्माण में अपना योगदान देते रहेंगे। हम सबका यही नारा होगा, मिलकर चले, साथ बढ़े।
0: और इसी के साथ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनोखे और दुर्लभ जीव की जिसे प्रकृति ने अद्भुत सौंदर्य और शक्ति से नवाजा है। वो है मारखोर। और आज का दिन इसी जीव के लिए बहुत ही खास है और समर्पित भी है दोस्तों, क्योंकि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस, जो प्रत्येक वर्ष 24 मई को मनाया जाता है, यानी आज के दिन मनाया जाता है।
1: मारखोर एक जंगली बकरे की प्रजाति है जो मुख्यतः पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है दोस्तों, इसके विशाल और पेचेदार सिंह, जो देखने में किसी शाही मुकुट से कम नहीं लगते। मारखोर शब्द फारसी भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है साफ खाने वाला। यह जीव हिमालय और हिंदू कुश के दुर्गम चट्टानों पर बड़ी कुशलता से विचरण करता है।
0: दोस्तों, दुर्भाग्यवश अवैध शिकार, प्राकृतिक आवास के नष्ट होने और जलवायु परिवर्तन के कारण मारखोर की संख्या तेजी से घटती जा रही है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने इसे संकटग्रस्त प्रजाति की सूची में रखा था। हालांकि संरक्षण प्रयासों के चलते इसकी संख्या में कुछ सुधार तो आया है, फिर भी यह जीव अभी भी खतरे की कगार पर है।
1: बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस का उद्देश्य है इस दुर्लभ प्राणी की प्रति जागरूकता फैलाना और इसके संरक्षण के लिए दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करना। यह दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि यदि हमने समय रहते प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा नहीं की, तो आने वाली पीढ़ियां इन्हें केवल किताबों में ही देख पाएंगी।
0: तो दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि आज का दिन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश और अपनी कौम की सेवा में समर्पित कर दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वजीर नसरुल्लाम एस्लाम की जयंती की।
1: बिल्कुल। ये एक प्रतिष्ठित और दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने अपने समय में समाज, राजनीति और जनसेवा के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा की एक प्रेरणादायक गाथा है। उन्होंने सदैव आम जनता के हितों को सर्वोपरि रखा और अपने कार्यों से लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया।
0: दोस्तों, उनका मानना था कि एक सच्चे नेता की पहचान उसकी कथनी से नहीं बल्कि उसकी करनी से होती है। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के लिए अथक परिश्रम किया। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके जीवन काल में थे। उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को एकजुट किया और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर काम भी किया। और ऐसी महान शख्सियत को हम शत शत नमन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आज संडे का दिन है और संडे का दिन वाकई हम कार्यक्रम के शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि बहुत ही खास होता है और कुछ न कुछ खास लेकर के हम हाजिर होते ही हैं। तो आज भी हम हाजिर हैं एक उभरती प्रतिभा के साथ, जो हमारे कार्यक्रम में अब इस भजन के साथ आपके सामने आने वाली हैं। तो चलिए आनंद लेते हैं इस प्यारे से भजन का और इसकी प्रस्तुति देने आ रही हैं नित्या सेठ।
2: बेजान जिंदगी में कोई मनमीत होना चाहिए, मन का मीत ना हो तो साथ संगीत होना चाहिए।
3: बिल्कुल दिव्या, क्या बात कही तुमने। दोस्तों, ये संगीत की बात हमारी दिव्या इसलिए कह रही है क्योंकि आकाशवाणी और आपकी युववाणी आपको मौका देती है आपकी कला को उभारने का। और हर रविवार हम कुछ नया लेकर आते हैं, तो इस बार रविवार को हम लेकर आ गए हैं उभरते कलाकार, जिसमें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी साथी कलाकार, जो आप सबके बीच आज अपनी कला का प्रदर्शन करेगी। सबसे पहले आइए जानते हैं इनका परिचय।
4: मेरा नाम नित्या सेठ है।
3: नित्या, आज आप हमारे स्टूडियो आई हैं अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, तो आप आज हमारे जो श्रोता हैं उनके बीच अपनी आज क्या प्रस्तुति देने वाली हैं?
4: मैं आज भजन की प्रस्तुति दूंगी।
3: बहुत अच्छी बात है, आप भजन की प्रस्तुति देंगी। तो इससे पहले कि आपके बारे में हम बहुत सारी चीजें जानें, इससे पहले एक प्रस्तुति हो जाए हमारे दोस्तों के सामने।

0: क्या बात है नित्या, आपकी ये प्रस्तुति जो थी उस पर मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं जो हैं कि अपनी धुन तो हर कोई गुनगुना ले, असली कलाकार वही है जो दूसरों के सुर में अपना सुर मिला ले। हमारे साथ जो संगतकार थे उनसे आपने क्या सुर में सुर मिलाया है, और आपका जो ये भजन था वाकई में मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। वैसे आपके इस संगीत जर्नी की बात करें तो आप इस क्षेत्र में कैसे आए?
1: मुझे बचपन से एक गाने का इंटरेस्ट था, तो मैंने मम्मी से बताया, तो मम्मी ने मुझे मेरी गुरुमा डॉक्टर सुचरिता गुप्ता मैम के यहाँ एडमिशन कराया म्यूजिक का। मैंने वहीं से अपनी क्लासेस लेने स्टार्ट की, और अब मेरा सिक्स ईयर कंप्लीट भी हो चुका है वहाँ पे, तो मुझे 6 साल हो गया सीखते हुए।
0: आपको गायन के क्षेत्र में 6 साल हो गए हैं और आप 6 साल से इसमें अपना प्रैक्टिस कर रही हैं, और कहीं आपने ऐसे प्रोग्राम किया है बड़े पैमाने पे या कहीं स्टेज शो वगैरह?
1: जी, बनारस और लखनऊ वगैरह मैंने कई सारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। अभी पिछले साल मैंने संगीत नाटक एकेडमी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था ठुमरी दादरा में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप संगीत के अलावा भी और कुछ करती हैं?
1: मैं अभी क्लास 12th में हूँ, अभी पढ़ाई कर रही हूँ।
0: तो कौन से सब्जेक्ट से?
1: मेरा स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज है।
0: अच्छा, तो मतलब संगीत में ही आपको आगे जाना है या फिर आप किसी और क्षेत्र में भी जाना प्रेफर कर सकती हैं?
1: नहीं, संगीत तो अभी संगीत पे ही फोकस है।
0: जैसा कि नित्या आपने बताया, आप अभी 12th में हैं और इतनी छोटी एज में मतलब बच्चे अगर अपनी कला को एक रूप देते हैं तो वो आगे जाके बहुत बढ़ती हैं। तो हम जो भी हमारे श्रोता आज सुन रहे हैं उनसे कहेंगे कि आपके अंदर भी कोई ऐसी कला छुपी हुई है जिसको आप बाहर लाना चाहते हैं, तो उस पर फोकस करिए और हमारी नित्या की तरह ही देखिए कि वो कितनी आगे जा रही हैं। 6 साल से उन्होंने अपने गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अच्छा प्रदर्शन भी कर रही हैं। और भी बहुत सारी बातें जानेंगे, लेकिन नित्या, इससे पहले कि हम आपकी और भी बातें जानें, उससे पहले आप एक और प्रदर्शन अपना दिखा दीजिए। आप अब क्या गाने वाली हैं?
1: मेरा दूसरा भजन है श्याम भजन है, कोई श्याम मनोहर लोरे।
0: तो चलिए आइए इसे सुनते हैं।

0: नित्या, आपने अभी जो प्रस्तुति दी उसको सुन करके मेरे मन में कुछ पंक्तियां आ रही हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इस सफर में सिर्फ मुझे संगीत नहीं जाना।
1: बिल्कुल, ये बात तुमने सही कही दिव्या, और मुझे ऐसा लगता है नित्या आपने इस बात को सही तरीके से लिया है, क्योंकि आपके संगीत की कला को सुनकर हम भी आश्चर्यचकित हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में कोई इतना अच्छा भी प्रदर्शन कर सकता है।
0: वाकई वाकई बहुत ही अच्छा आपने गाया, बहुत ही सुंदर था। और ये बताइए नित्या कि आप आगे 5-6 सालों में संगीत के क्षेत्र में अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं?
2: मैं अभी और भी संगीत मतलब और सीखना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया मेरा प्रभाकर का 6th ईयर कंप्लीट हो गया, तो मैं आगे भी और कोर्स करना चाहती हूँ और बड़े बड़े स्टेजेस पे बड़े बड़े क्लासिकल कॉन्सर्ट में परफॉर्म करना चाहती हूँ।
3: क्या बात है दोस्तों, तो नित्या का ये सुंदर भजन सुन के तो वाकई मन बहुत ही सुंदर हो गया, और वाकई एकदम लगा कि हम सच में कृष्ण भगवान की भक्ति में एकदम डूब गए हैं, क्यों मुनि?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि इतवार के दिन यानी संडे के दिन हम कुछ खास और स्पेशल लेकर के आपके पास हाजिर होते हैं, और आज था ये वाकई बहुत ही सुंदर भजन जो आपने अभी नित्या सेठ के द्वारा सुना। तो चलिए, हम आगे भी कार्यक्रम में मिलेंगे, लेकिन इस छोटे से संदेश के बाद।
4: दादू, आपका तारा मतलब
5: बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा।
6: पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका।
4: हाँ बैल, मुझे मार मतलब
5: मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे।
7: हम ये कहते हैं आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना।
4: इसका मतलब
7: इन्हीं से पूछो।
6: समझा पापा।
8: RBI कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: दोस्तों अब समय को जाया न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के हमारे शब्दों के पिटारे में कौन से नए शब्द हैं।
2: तो हाजिर हो जाइए कलम और डायरी के साथ में, क्योंकि आज के अब ये जो शब्द हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारा आज का हिंदी का शब्द है दोस्तों संलयन, जिसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक चीजों का आपस में मिलकर एक को एक हो जाना। और अगर मैं हम इसका अंग्रेजी में शब्द समझे तो इस अंग्रेजी में इसे बोलते हैं फ्यूजन। यह शब्द विज्ञान, संगीत, संस्कृति और साहित्य सभी क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है। और इस शब्द से आप वाक्य प्रयोग अगर मैं करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं वैज्ञानिक संलयन ऊर्जा को भविष्य का सबसे स्वच्छ और असीमित ऊर्जा स्रोत मानते हैं।
1: और इसी के साथ आज का हमारा अंग्रेजी का शब्द है जिनोफोबिया, विच मीन्स फियर, हेटर्ड और प्रिजुडिस टुवर्ड्स फॉरेनर्स और पीपल फ्रॉम अदर कल्चर्स। और हिंदी में कहे तो विदेशियों या अजनबियों के प्रति भय और घृणा। और इस शब्द से आप सेंटेंस फॉर्मेशन इस प्रकार कर सकते हैं, जिनोफोबिया इज अ थ्रेट टू द ग्लोबल पीस एंड यूनिटी।
2: तो दोस्तों अब हमें पता है कि आप पेन और डायरी के साथ में बैठे हुए हैं और आप इंतजार भी कर रहे हैं कि इसी के साथ साथ हम आपको आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी बता दें। पर उससे पहले जान लेते हैं कि हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था और कौन से साथी हमारे कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का सही जवाब देकर विनर बने हैं।
1: तो हमारा कल का क्वेश्चन था कि भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है।
2: और इसका सही उत्तर है दोस्तों बैंगलोर में। और जिन साथियों ने इसका हमें सही उत्तर भेजा है उनके नाम है
1: प्रवीर चौहान खरगांव मध्य प्रदेश से, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हैं, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाक से। वही ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से हैं प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममताबाई वर्मा। रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से हैं सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा। नेपाल नगर मध्य प्रदेश से हैं प्रभुदयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा, बसंतीबाई और गणेश सिवदे। वही संगीत की नगरी खंडवा से है श्यामाबाई रायकवार।
2: तो आप सभी साथी जिन्होंने इसका सही उत्तर हमें भेजा है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह से हमें सही उत्तर भेजते रहिए और विनर भी बनते रहिए। और चलिए अब बारी है हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है वो जान ले। तो हमारा आज का प्रश्न है दोस्तों,
1: भारत के किस राज्य सरकार ने पहली बार मंत्रिमंडल स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, भारत के किस राज्य सरकार ने पहली बार मंत्रिमंडल स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया है।
2: और इसका सही जवाब आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल यानी कि youthAIR वाराणसी पर जाकर या फिर हमारे ईमेल के पते पर यानी youthAIRVNS@gmail.com पर जाकर भेज सकते हैं और आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर बन सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब बारी है कि इधर बीच का ये जो विश्व घटना चक्र है वो क्या है और देश दुनिया में क्या हालचाल है और क्या खबरें जो है सुर्खियों में है उसे हम अब जान लें।
1: तो दोस्तों सबसे पहले भारत की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा काफी चर्चा में रही है, जहां भारत और इटली के बीच व्यापार, टेक्नोलॉजी और रणनीति सहयोग को और मजबूत करने की बातचीत हुई है।
2: और दोस्तों इसी के साथ साथ भारत मौसम विभाग यानी IMD ने जानकारी दी है कि इस बार केरल में मानसून सामान्य समय से पहले पहुंच सकता है, जिससे किसानों और खेती को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
1: बिल्कुल। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तो ब्रिक्स देशों की बैठक हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुई है, जिसमें वैश्विक मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की गई है।
2: और दोस्तों तकनीक के क्षेत्र में बात करें तो भारत AI इंपैक्ट समिट यानी 2026 भी चर्चा में रहा, जिसमें दुनिया भर के टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ और बड़े उद्योग जगत से जुड़े

0: दोस्तों, अब बारी है रोजगार सूचना की, जो कि है रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से आई है, जिसने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सहायक लोको पायलट यानी कि एएलपी पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती 11,127 पदों के लिए है और आरआरबी आवेदन प्रक्रिया 15 मई 2026 से शुरू हो गए और उम्मीदवार 14 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
1: और दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, जबकि अधिकतम आयु सीमा 1

0: जुलाई 2026 तक 30 वर्ष होनी चाहिए। और आपको बता दें कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इसकी अधिसूचना पर जाकर के जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है rrbapply.gov.in। तो फटाफट से जाइए और इस भर्ती के लिए अपना आवेदन कर दीजिए।
1: दोस्तों, आकाशवाणी के गौरवशाली इतिहास के 90 वर्ष पूरे होने को है और भारतीय प्रसारण जगत और राष्ट्र के सामाजिक सांस्कृतिक विकास की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। वर्ष 1936 में अपनी आधिकारिक शुरुआत के बाद से आकाशवाणी ने देश के सबसे विश्वसनीय और सुदूर क्षेत्रों तक पहुँचने वाले सार्वजनिक सेवा प्रसारक के रूप में अपनी अमिट पहचान बनाई है।
0: दोस्तों, शास्त्रीय संगीत, लोक कलाओं और साहित्य को सहेजने तथा मन की बात जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन को जोड़ने में इसकी भूमिका अद्वितीय रही है। आज डिजिटल क्रांति और सोशल मीडिया के इस आधुनिक दौर में भी आकाशवाणी अपनी निष्पक्षता, सत्यता और गंभीर आवाज के कारण देश का सबसे भरोसेमंद, आत्मीय और जीवंत माध्यम बना हुआ है। तो क्या बात है, इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ हमारा इस आवाज की दुनिया में यूं रूबरू होना और मिलना जुड़ा रहे और इस सफर में हम इसी तरह से सीखते रहें और मिलते रहें और प्यारे प्यारे गीत संगीत भी सुनते रहें।
1: तो इसी बात पे आइए सुनते हैं ये गीत।

0: तो दोस्तों, इस रिफ्रेशिंग और मज़ेदार गीत के बाद अब हम कार्यक्रम में बिल्कुल ऐसे वक्त पर आ चुके हैं जबकि हमारे स्टूडियो की क्लॉक ने हमें इशारा करना शुरू कर दिया है कि अब हमें टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। पर उससे पहले जाते जाते एक बात हम आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि आज के टाइम में इस फास्ट ट्रैक मोड की जो लाइफ है, इसमें हमारा जो रिदम है ना, वो फास्ट तो हो रहा है लेकिन उसके साथ में स्ट्रेस और डिप्रेशन और टेंशन, एंजाइटी, ये सब समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हम अधिक से अधिक पाने की होड़ में इतना पागल हो गए हैं कि अपने लिए वक्त नहीं निकालते हैं और इसी तनाव में और इसी दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और अक्सर करके टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्यों मोनी?
1: बिल्कुल। तो इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। मैं थी मोनी।
0: और नेहा का आप सभी को नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने गोरखपुर केंद्र से।

0: सभी समाचार। नमस्कार, समाचारण के साथ हम विकास राय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भीषण गर्मी और बढ़ रहल बिजली का मांग के पीछे प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करे का निर्देश दिले हवे। वहां के कहले हैं कि आम लोग, किसान, व्यापारी आ उद्योगन के बिजली संकट का सामना न करे के पड़े, एकरे बदले सज्जो स्तर पर लगातारे मॉनिटरिंग कैल जाओ। एगो रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत की उपस्थिति में ऊर्जा विभाग और पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी संयंत्रों में तकनीकी दक्षता तथा रखरखाव व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक और भरोसेमंद बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2026 तक उत्पादन निगम के स्थापित क्षमता में 86% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा गैर पारंपरिक ऊर्जा विकल्पों से लगभग 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भविष्य की मांग को देखते हुए दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति बनाने पर भी विशेष बल दिया। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: सरकार विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2000 के तहत पुरहर जन परामर्श बदे मसौदा नियम प्रकाशित कैले हो। ग्रामीण विकास मंत्रालय कहले हवे कि कौनहु मनई, हितधारक, संगठन चाहे संस्था 21 जून ले मसौदा नियमन पर आपत्ति चाहे सुझाव प्रस्तुत कई सकेले। एगो रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार 14 नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक

0: सार्वजनिक किया गया है। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 12वीं कक्षा का नतीजा के बारे में नया सूचना जारी कैल हो। इस सूचना 21 और 22 मई के गलत फीस कटले के देखी के जारी कैल गेल हो। इस समस्या जांचल गेल उत्तर पुस्तिकन का स्कैन कैल गेल कॉपी बदे आवेदन के समय भइल रहल। बोर्ड कहले हो कि कुछ मामिलन में बेसी भुगतान कटल हो जबकि कुछ मामिलन में कम राशि लिहल गेल हो। CBSE के हिसाब से और यो भुगतान के मामिलन में राशि खाता में लौटा दिहल जाई। कम भुगतान के मामला में विद्यार्थियन के बाकी भुगतान बदे अलगे से सूचित कैल जाई। बोर्ड साफ कैले हो कि उचित शुल्क वाला सज्जो आवेदन के मामलन में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करावल जाई और विद्यार्थियन के नया सिरा से आवेदन नहीं करे के होई। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज प्रदेश के 9 जिला प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बरेली का तय परीक्षा केंद्र पर संपन्न भेल। परीक्षा का आयोजन दुई पाली में पुरहर सूचिता के साथे कैल गेल। यह परीक्षा में पहली बेर फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू कैल गेल। अभ्यर्थी लॉग इन के परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले यह प्रक्रिया से गुजरे के पड़ल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह महीना के 31 तारीख के आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपन विचार साझा करी हैं। ई यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां कड़ी हुई। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर यह कार्यक्रम बदे अपन विचार आ सुझाव भेज सकेल हैं। प्रदेश के सज्जो जिलन में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही हो जौना से लोगन के जिंदगी प्रभावित हो रही हो। अधिकांश जिलन में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से बेसी रिकॉर्ड कई जा रहा हो। बांदा प्रदेश का सबसे बेसी तापमान वाला जिला बनल हो। यह बीच मौसम विभाग प्रदेश के पश्चिमी इलाकन में कुछ जगहन पर बरखा भइले का आगम जतौले हो। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगला 3 दिन बदे लू का चेतावनी जारी कैल गेल हो। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र का वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिस बतौले हमें कि जल्दी है एगो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा हो जौना से प्रदेश का तराई इलाकन में आवे वाला 28 मई के गरज चमक के साथे बरखा भइले का अनेसा बन रहा हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग के बीच प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आमजन, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े इसके लिए सभी स्तर पर सतत मॉनिटरिंग की जाए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत की उपस्थिति में ऊर्जा विभाग और पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी संयंत्रों में तकनीकी दक्षता तथा रखरखाव व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क और
3: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शीर्ष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले आज के शीर्ष कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुगम संगीत में हमारे आज के कलाकार होंगे अशोक खोसला। शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। जिसमें गर्मी में दुधारू पशुओं की देखभाल इस विषय पर डॉ. पुष्पराज शिवहरे से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत सुनवाई जाएगी। साथ ही सुनिएगा छोटेलाल पटेल और साथी का गाया हुआ देश गीत। कार्यक्रम पत्र के लिए।

0: धन्यवाद। आप सुनेंगे शाम 7:31 पर, प्रस्तुति होगी अरुण पांडे और सना सलीम की। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 6:10 और शाम 7 बजे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग आप सुनेंगे शाम 7:50 पर और रसमाधुरी का समय होगा रात्रि 8:15। गैर फिल्मी गीत और गजल पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 9:30 पर। ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब सुनिए कल यानी दिनांक 25 मई 2026 दिन सोमवार को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 9:30 पर सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर सुनिएगा पंडित जितेंद्र अभिषेकी और पंडित जसराज का गायन। इसी कार्यक्रम में दोपहर 12:45 पर और रात्रि 10:30 पर सुनिएगा पंडित पशुपतिनाथ मिश्र का गायन। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में सुनिएगा मनोहर सिंह के गाए हुए भजन और रात्रि 8 बजे इसी कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित सीताराम सिंह की गाई हुई गजलें। रात्रि 10 बजे कार्यक्रम आपसे मिलिए में राजेश्वर बालापुरकर कमांडेंट 95 बटालियन से बातचीत करेंगे चंदन सिंह। शाम 6:30 पर किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे कृषि जगत। इस कार्यक्रम में पशुपालन हेतु सरकारी सुविधाएं इस विषय पर डॉक्टर संतोष कुमार गिरि और सतीश कुमार यादव की बातचीत सुनवाई जाएगी। साथ ही लुत्फ उठाइएगा हीरा लाल यादव और साथी के गाए हुए लोकगीत का। इन्हीं के गाए हुए लोकगीत आप सुन सकेंगे सुबह 9:50 और दोपहर 1:45 पर भी। शहरी महिलाएं अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी सुनेंगी दोपहर 1:15 पर। इस कार्यक्रम में गीत संगीत के अलावा आप सुनेंगे वार्ता, विषय होगा तनाव प्रबंधन है जरूरी। वार्ताकार हैं ईशा त्रिपाठी। हमारे युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे शाम 5:15 से, जिसमें आकर्षण होगा आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और गीत संगीत। साथ ही सुनिएगा वार्ता, विषय होगा स्वच्छता ही सेवा। वार्ताकार होंगे शिवम कुमार अग्रहरी। सुबह 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में विषय होगा धान की उन्नत प्रजातियां। इस विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा आप सुनेंगे सुबह 6:35 से। विषय होगा दूषित जल से होने वाली बीमारियां और इनका इलाज। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर विनोद कुमार। सुबह 7 बजे गुड मॉर्निंग बनारस और सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा सुबह 8:45 पर सुनिएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार सुबह 10 बजे और आपके पत्र आपके गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 11 बजे। तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाली आज के शीर्ष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
5: चेक जाना पड़ेगा।
6: अरे गेम छोड़ के
5: 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए,
7: बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है।
5: कंप्लेंट करनी है।
6: अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को।
7: कैसे?
6: आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट, कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी वाराणसी। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है बाजीगर से। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की। गीत की बोल लिखे हैं नवाब अर्जुने, संगीत है अनु मलिक का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्व उत्तर प्रदेशे पूर्वी मध्य प्रदेशे विदर्भे च तीव्रतर उष्ण तरंगस्य कृते रक्तवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। ऋतु विज्ञान विभागेन सूचितं यत् आगामि पंच दिनेषु उत्तर प्रदेशे मध्य प्रदेशे विदर्भे पंजाबे हरियाणायां चंडीगढ़े दिल्ल्यां च पृथक पृथक स्थानेषु उष्ण तरंगस्य स्थितिः भविष्यति। आगामिषु त्रिषु दिनेषु एतेषु स्थानेषु तीव्र उष्ण तरंगस्य स्थितिः भवितुमर्हति इति विभागेन पूर्वानुमितम्। भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता तथा केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयलः अद्य कांग्रेस दलस्य नेतुः राहुल गांधिनः उपरि देशे अराजकत्वं प्रवर्तयितुं गभीरं षड्यंत्रस्य आरोपं कृतवान्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पटले सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः विरुद्धं गांधिनः वक्तव्यं सर्वैः विपक्षिदलैः सह कांग्रेस दलस्य प्रमुखं षड्यंत्रं सूचयति। अन्ते क्रीडावार्तायां, आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य प्रथमे द्वन्द्वे मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स दलयोः मध्ये स्पर्धा प्रचलति। प्रथमं क्रीडता राजस्थान रॉयल्स दलेन अष्ट क्रीडकानां हानिपुरस्सरं 75 धावनांकाः विनिर्मिताः। अपरतः द्वितीय द्वन्द्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारे किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने, कृषि जगत।

0: राम राम
1: गुंजा बहन,
0: भैया
1: का हाल चाल है खेत खरिहान गांव गिराव कर?
0: भाई रामेश्वर भैया, कुल तो ठीक हो,
1: हाँ,
0: बाकी देखा था हुआ ना गर्मी का।
1: तपन तपे दर दई का यह इच्छा है त एमन कोई का बस न चली। मनई का बस जब चले कर रह तो नहीं चलौली जा। कहे का मतलब ई गुंजा बहन कि
0: हाँ
1: वृक्ष धरा का भूषण है, समझा ई है आभूषण है। आ जौन हमहन एक पुरनिया पहले कहें कि भैया होई पेड़ पालो, नदी ताल तलैया, इनके सरल मत समझा, बहुत घलुआ मत समझा। आज वह चूक हमहन का कैली जा कि जौन चीज प्रकृति निःशुल्क देले है गुंजा बहन, ओके हमन घलुआ समझ ले लीजा।
0: एकदम एकदम
1: लेकिन
0: आप।
1: असल बात रहली कि जौन चीज का हमहन पैसा भाड़ा न दे पाई जिंदगी भर, एके दई पहले से जानत रहना, तो का कहना कि अगर आदमीन से सांस लेवे का अगर पैसा लेब, अगर आदमीन के पानी पियावे का पैसा लेब, हवा का पैसा लेब, तो आदमी न दे पाई है। तो ये से दई का कहना कि जौन जीवन बदे जीवनदायी प्रकृति के चीज हैं, जैसे स्वच्छ हवा, पेड़ पौधा, पहाड़, नदी, ताल, तलैया, आबो हवा, ये कुल निःशुल्क कर देना है कि भैया जान है तो जहान
0: जहान
1: है।
0: हो।
1: तो लेकिन हमहन का कह लीजा कि जौन चीज फ्री में मिलल, प्रकृति से मिलल, ओकर दोहन उपयोग तो छोड़ा, दुरुपयोग करे शुरू करी, मतलब कह लीजा। आज ओकर ई हाल कि तपन देखा 45 पार, 46-47 तक चलल जात बा, जौन देही बदे बहुत ठीक नहीं बा।
0: एकदम सही कहला है रामेश्वर भैया, इ तपन तो ऐसा हो कि मनई के एकदम घर का बना देले हो,
1: 9 बजे 1 बजे दोपहरिया लगत
0: ना
1: बा।
0: मने कि घर में बैठा बहरे मत निकला। लेकिन का करल जाए, खेती किसानी का काम हो तो बहरे तो निकले के पड़ा, तो फिर भी देखा हो कि आपन बच बचाव करके निकले के चाहिए। और जो आज के जो बात करत हुआ ना कि हम लोगन उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग कैले है प्राकृतिक संसाधन का, तो वो बात एकदम सही हो, आज हम लोगन के सामने आवत हो।
1: बिल्कुल। देखें आज हमने एक गंभीर विषय पर चर्चा कर लेवल जाए, जो पंच भैया लोगन के बहुत एक तरीके से कहला कि जागरूकता तो है, लेकिन हमन सोचिला जाए कि खाली हमारे दूठे

0: चाठेपन प्रयोग कैले से का हो जाए। आज हमन
1: हाँ
0: बात कर लिए अपने पंचायती में पर्यावरण के बचाव बदे जो नई पॉलिथीन हटाओ का मुहिम है, ओमन
1: हाँ
0: हमन समझदारी से अपन साथ नहीं दे जा। अब पॉलिथीन का प्रयोग कितना दुष्प्रभावी है गुंजा बहन, ये देखा एक बार फिर पंच भैया लोगन के समझावे कोशिश कर जाई कि देखा बर बाजार जा भैया तो झोला लेला घरे से,
1: हाँ बिल्कुल
0: जैसे पुरान कपड़ा बा, पुरान पर्दा बा, पुरान चदरा बा, यहाँ तक कि हमन का दादी नानी पुरान पैंट जोन मनई लोगन का रहे ओके
1: हाँ
0: जब पहने लायक न रह जाए तो खोल खाल के ऐसन बना दे कि तर तरकारी लिया हो बड़ा बढ़िया झोला बन जाए।
1: एकदम आओ झोला जाना था हुआ ना
0: हाँ
1: फटे ना जल्दी। आ
0: हाँ
1: लेकिन आज के
0: हाँ
1: जो लोग हुआ आज बाहर निकल जाता हुआ घर
0: हाथ
1: झोला
0: में
1: घर
0: कुछ ले
1: हाँ
0: वही ना
1: हाथ
0: चाहत
1: में कुछ
0: हुआ।
1: लेत ना हुआ अब
0: हाँ
1: बाहर निकल के फिर सोचत हुआ कि अरे कुछ लिए ही नहीं था जो दुकानदार पॉलिथीन में दे देता वही लेके चला लावत
0: और
1: हुआ।
0: गलती का कहला पराकाष्ठा अब ये चलल चल जात बा कि जहां पॉलिथीन का प्रयोग तनी इमरजेंसी बदे भयल कि जरूरत पड़ले पर कुछ सामान लेवल जा,
1: हाँ
0: आज हमहन एकर इतना ज्यादा दुरुपयोग करत है जा कि गरम चाय भी वही में लेत है जा,
1: एकदम
0: गिलासी लोटा में बोतल में दूध ले सकीला जा, उहो पन्नी में लेवल चाहत है जा खुलता, त गरम खाना वही में ले जाते हैं या जौन की वैज्ञानिक भैया लोग सहेजन है कि बहुत ज्यादा नुकसान दे है। ई तो चला ठीक, लेकिन आजकल लोग खाना बनावत हवा कहीं घूमे फिरे जात हवा तो वो जौन टिफिन का परंपरा रहे बचपना याद है मन के कि बोतल थर्मस के कहल जाए,
1: हाँ हाँ हाँ
0: पहले थर्मस में पानी लेवल जाए, टिफिन में कटोरिया में कैसे जुगाड़ करके साग सब्जी लेवल जाए, रोटी अखबार में लपेट लेवल जाए। लेकिन अब तो जौन पन्नी का अंधा अच्छा जौन दुकानदार भी है लोग भी हवन वो सोचे ना गाहक न बिगड़े तो उन्हू लोग देवे नहीं चाहते हैं, सरकार का जौन मनसा है ओके दुकानदार भी है लोग तो चाह ना कि पूरा हो, कहे कि पन्नी खरीदे के पड़ा, लेकिन का करबू जौन गाहक लोग मांगा ना करे हम झोला भुला गेली
1: हाँ
0: नहीं
1: पन्नी
0: लिया
1: में दे
0: रहे,
1: दा
0: तो
1: हाँ
0: दुकानदार भी है लोग सोचा ना कि गाहक बिगड़ न जाए तो उन्हों निकाल के सौदा वही में दे देव ना, तो कम से कम तेल दूध गरम चाय जूस शरबत ई कुल जौन हमहन तरल पदार्थ ई कुल जौन एक तरीके से पन्नी में पॉलिथीन मिले थे या ई तो जमन ल कि हम देहात भाषा में कहब कि एकदम एकदम अनेत है एके
1: हाँ
0: तो एकदम बंद कर देवल जा, और जहां तक हो सके बर बाजार जाए जा तो जरूर घरे से झोला लेके निकल जाए, जैसन अपन सौदा है कम सब्जी लेवे के है प्याज आलू नहीं लेवे के बाद तो एक झोला ले ले तर तरकारी हरियर सब्जी के साथे साथे जैसे प्याज आलू लेवे के बाद तो दूठे झोला ले ले, अधिक से अधिक पॉलीथीन के प्रयोग से जितना बचल जाई हमहन उतना अपने ये जो न कहला कि पर्यावरण का जो नाराजगी है जेकर हमन के ये विध्वंस रूप देखवे के पड़त बाकी जैसे झोकर जाए आदमी 9 बजे ये लगत बा कि अपने दलाने में सिमट जा अपने घरे में बंध जा,
1: हाँ
0: ये तापमान पहले हो गर्मी पड़त रहे लइका गदेला बड़ा आराम से 10-11 बजे लोग खेलें, हाँ दोपहरिया के 12-12 बजे तक हमन चल आवल जा 3-4 मतलब 2 या 3 घंटा तपन से बचे बदे जुगाड़ जुगाड़ लगावल जाए। आज तो ई होत बा कि 8-9 बजे जौन तपन पड़े लगत बा जौन सूरज के गर्मी देही के परेशान करत बा वो संध्या के 5-6 बजे तक, तो मतलब जौन दोपहरिया के 2-3 घंटा लुकात रही है जा अब वो समय दूना से बेसी हो गल, जैसे कि हमन के काम पर असर पड़ा था, लेकिन आगे बात बत कही होत रही का एक सनेस का समय है अब सुन
1: एकदम
0: लेवल जा।
1: एकदम एकदम सुनवा दा
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें, और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: गुंजा बहन सनेश तो हो गल
1: एकदम।
0: अब आगे का हुई कार्यक्रम में?
1: आगे देखा कार्यक्रम में हुई जरूर, लेकिन जो बात करत रही हम लोग।

0: गरम का ना तो ऐसने में देखा अपन बच बचाव तो जरूरी है ये है अपन जो पशु चौवा हुआ ना उनकर भी बच बचाव बहुत जरूरी है। यही खातिर देखा आज बतकही लेके आवल गए भैया लोगन के लिए कि गरम में दुधारू पशु उनका देखभाल कैसे कहल जाए। इपे डॉक्टर पुष्पराज शिवहरे से बतियावत है उन सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया तो एक सुन लेवल जाए।
1: डॉक्टर पुष्पराज शिवहरे आप असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी में। आज हम ये आपसे जानल चाहब अपने किसान भैया लोगन बदे कि जो गर्मी का मौसम चलत हो और गर्मी बढ़ते चल जात हो देखे में आवला कबो कबो कि अपन जो पशु हम दुधारू इससे बड़ा प्रभावित हो जाना। तो पहले तो हम आपसे ये जानल चाहब कि कैसन व्यवस्था इनके रहे के हुए जैसे कि इनके ऊपर ये गर्मी का जो दुष्प्रभाव हो ये कम पड़े या न पड़े इनका दूध न प्रभावित हो।
2: जी आवास पशुशाला का जो आवास है इसमें हम मेनली देखेंगे कि इसकी ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा हो जिससे कि जो धूप की वजह से जो छत गर्म हो जाती है उससे काफ़ी बचाव हो जाता है। तो पशुशाला का जो छत है उसकी ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा रखें और जो यदि टीन का शेड है आपके पास तो उसके ऊपर पुआल डाल दें और थोड़ा थोड़ा पानी उस पर सुबह शाम उसे छिड़कते रहें।
1: अच्छा।
2: दूसरी बात है कि जो आवास है वो वेंटिलेटेड हो प्रॉपर वेंटिलेशन से बहुत सारी ऊष्मा से बचाव हो सकता है। और यदि ज़्यादा लू जैसा मौसम है तो आप बोरा होता है
1: जूट वाला
2: उसमें आप पानी से भिगोकर उसको खिड़कियों में या दरवाजे में लटका सकते हैं।
1: अच्छा।
2: यदि आपके पास फाइनेंशियल स्टेटस ठीक है तो आप पशुशाला में पंखों की भी व्यवस्था कर सकते हैं क्योंकि यह जो मौसम है इससे पशु का खान पान भी प्रभावित होता है और उसका दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित होता है।
1: तो उचित का होला मैंने कौन तरह का आवास इनके छान छप्पर वाला ज्यादा अच्छा रहला या टिन शेड वाला या पक्का छत रहे तो ज्यादा अच्छा।
2: पक्का छत है तो ज्यादा अच्छा है और यदि उसके हमारा पशुशाला है उसके चारों तरफ यदि वृक्ष लगे हैं आपके छायादार वृक्ष हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा पशुशाला का डिजाइन करना चाहिए कि हम उसके आसपास वृक्षों की संख्या बढ़ाए रखें जिससे कि उसमें से हमें काफी बचाव होता है।
1: माने सीधा जो ना प्रकाश सूर्य पे किरण जो है ऊपर न पड़े उसे छन के आवे और जो ना आप बात कहना है कि हाँ खिड़की पर बोरा जो है भिगा करके लगा दे तो जो गर्म लू हो
2: उससे बचाव
1: उसे जो ना संपर्क में आई तो ठंडी हवा होकर के अंदर जाए तो ऐसे जो ना तापमान नियंत्रित हो सकला
2: तापमान नियंत्रित हो सकता है। और भैंस जो है ज्यादा गर्मी से प्रभावित होती है तो उसमें एक व्यवस्था होती है मिस्ट कूलिंग।
1: अच्छा,
2: जैसे कि फुहारा जैसे ऊपर व्यवस्था कर देते हैं जैसे ऐसे सिस्टम बनाते हैं कि उसमें फुहारा निकलता है पशुओं के ऊपर पानी का फुहारा।
1: अच्छा।
2: और या मिस्ट कूलर आते हैं मिस्ट पंखे आते हैं आज के दौर में तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो भैंस जो दुग्ध उत्पादन में प्रमुख रोल अदा करती है हमारे देश में उसका दुग्ध उत्पादन हम इससे बचा सकते हैं गर्मी में।
1: अच्छा। माने पंखा ऐसा जैसे कि पानी का फुहारा भी साथ ही साथ आ।
2: हाँ जी। और पशु को कम से कम दिन में दो बार तो नहलाना ही चाहिए गर्मियों में वो भी सुबह शाम बीच दोपहर में बचाव करें कि ना नहलाएं लेकिन दो बार कम से कम उसको नहलाएं जरूर।
1: तो गाय और भैंस दोनों बदे के व्यवस्था एक बराबर रह ले कि कुछ अलग व्यवस्था हो?
2: दोनों की व्यवस्था लगभग सेम ही है। भैंस में एक्चुअली देखिए अब पहले तो गांव अपने गांव में पोखरा रहता था
1: जी, जी।
2: तो भैंसों की आदत होती है उसमें डुबकी लगाने की तो आज के जो मॉडर्न डेयरी फार्मिंग है उसमें तो इस तरह व्यवस्था नहीं हो पाती है तो हमें एक आर्टिफिशियल तरह से उनको पानी का ऐसा व्यवस्था करें क्योंकि कम से कम दिन में दो बार पानी का छिड़काव जरूर उनके ऊपर हो जाए नहला दें या फिर आपके फवारे की व्यवस्था है तो उसकी व्यवस्था कर दें जिससे कि उसको गर्मी से राहत मिल सके।
1: तो आवास के बात हो गई तो इसे थोड़ा सा नियंत्रण हो सकल है जैसे कि पशु हमारे जो हो उसे प्रभावित न हुई।
2: हाँ जी।
1: और खाने में मतलब इनका जो चारा होला एमन हाँ का परिवर्तन करे चाहिए इस समय गर्मी के मौसम में?
2: देखिए गर्मियों में संतुलित खाना देना बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे पहले पशु जो गर्मी से प्रभावित होते हैं या उनको हीट स्ट्रेस होता है गर्मी का तनाव महसूस होता है तो खाना ही बंद करते हैं। खाना कम कर देंगे या बंद कर देंगे तो फिर वो आगे फर्दर और लक्षण दिखाते हैं। तो खाना उनका संतुलित रखें हरा चारे की ज्यादा से ज्यादा मात्रा उसमें रखें। यदि हरा चारा अवेलेबल नहीं है तो एक साइलेज होता है जो पहले से बना के रखते हैं एक चारे का चार बोला जाता है इसको।
1: अच्छा, अच्छा।
2: उसको बना के रखें या खरीद लें कहीं से यानी कि कहने का मतलब कि हरा चारा सूखा चारा

0: और दाना
1: हम्म,
0: जो हम प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए जो दाना देते हैं एनर्जी सप्लीमेंट के लिए, उसमें चना थोड़ा मोटा पिसा ले, और मक्के का दाना उसका भी आटा थोड़ा मोटा पिसाना चाहिए,
1: अच्छा
0: उन
1: अच्छा
0: दो इन दोनों चीज़ों को जरूर मिलाएं। और इसके अलावा नमक की मात्रा भी उसमें मिनरल मिक्सचर के साथ उस मिक्सचर में ऐड कर दें। इस तरह संतुलित आहार हमारा बन जाएगा, जिससे कि पशु को हम इस गर्मी से जो इम्यूनिटी के शरीर में होना चाहिए, या जो उसके प्रोडक्शन या उसके दूध उत्पादन में जो दबाव पड़ने वाला है उससे हम बचा सकते हैं।
1: एकर अनुपात डॉक्टर साहब का होएक चाहिए, जैसे हरा चारा आप बतौना है
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: मिलाओगे देखे, तो ये हरा चारा कितना मिलावे ओकर साथ?
0: हरा चारा कम से कम नहीं तो 2/3 मिलाएं, और 1/3 सूखा चारा मिला लें,
1: अच्छा
0: या उस और उसमें जो दूध उत्पादन के हिसाब से उसमें हम दाना मिलाते हैं, तो जितना दूध उत्पादन है उस हिसाब से 1 किलो
1: अच्छा
0: दाना बढ़ा दिया जाता है।
1: अच्छा शरीर के वजन से ओकर कोनो मतलब ना
0: नहीं
1: हो चारा
0: शरीर
1: का?
0: नहीं, एडल्ट भैंस की बात कर रहे हैं, एडल्ट गाय भैंस की। और जैसे जैसे दूध कोई सूखा पशु है, मतलब दूध उत्पादन में नहीं है, तो उसके लिए 2.5 किलो दाना ही सफिशियंट। और यदि उसके
1: अच्छा
0: बाद यदि दूध उत्पादन में है तो उस पे फिर उसका दाने का बढ़ाते हैं। हाँ जी, इसके
1: अच्छा
0: अलावा एक और हम चीज़ बताना चाहते हैं, नमक का ब्लॉक आते हैं, सेंधा नमक या काला नमक का चाटनी की व्यवस्था भी कर देना चाहिए।
1: माने ढोका वाला नमक जो
0: हाँ जी,
1: बोला
0: हाँ
1: है?
0: जी, हाँ जी,
1: अच्छा अच्छा
0: जिससे कि उसकी मिनरल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है।
1: अच्छा तो का ओकरे कैसे देवे के चाहिए? ओकरे आसपास रख देवे के चाहिए कि ओकरे नादी में
0: हाँ,
1: डूब जावे के
0: रख
1: चाहिए?
0: देना चाहिए, जो एडली वो कभी मन करे तो उसको कर
1: हाँ
0: सके, पशु को खुला रखें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ऐसा
1: हाँ
0: एक लूज हाउस सिस्टम होता है जो आजकल ज़्यादातर फॉलो किया जाता है, जो हमारे मॉडर्न डेयरी फार्मिंग करने वाले किसान भाई हैं, तो उनमें पशु को खुला रखते हैं, और पानी पीने के लिए शीतल जल हो, साफ जल हो, और पशु जब चाहे उसको प्यास लगे तब उसको अवेलेबल हो, ऐसी व्यवस्था। जहाँ पीने का टंकी बनाते हैं, जहाँ नाद बनाएंगे पीने के लिए पानी का, तो वो छायेदार छाये वाली जगह पे हो, और पशुशाला जो 1/3 हम कवर्ड एरिया जरूर हो हमारे पशुशाला में, 2/3 खुला रहता है जो लूज आउट सिस्टम है हमारा,
1: अच्छा
0: और पीने के पानी की प्रचुर मात्रा में अवेलेबिलिटी होना चाहिए हमारे पशुशाला में, जिससे कि वो जब उसको प्यास लगे वो पी सके। यदि हम पशु को बांध के रखते हैं तो कम से कम दिन में 3 बार पानी जरूर पिलाएं, क्योंकि नॉर्मली एक गाय या भैंस 30 लीटर पानी पीती है, लेकिन गर्मी में वही मात्रा बढ़कर लगभग 50 से 60 लीटर हो जाती है, तो ये
1: अच्छा
0: पानी की जरूर उसकी कमी ना होने पाए, इस बात का किसान भाई जरूर ध्यान रखे।
1: तो या तो पशु के खुला छोड़ें
0: हाँ जी,
1: जैसे कि वो अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी जरूरत हो पानी पी ले,
0: हाँ जी,
1: और नहीं तो फिर इतना ध्यान रखें क्योंकि जो है
0: 3 से 4 बार पानी
1: पानी
0: उसको
1: पिया
0: जरूर।
1: हुए।
0: हाँ जी,
1: तो पानी के साथ डॉक्टर साहब कुछ दूध बदे के बढ़ावा बदे के और कुछ मिलावल जाए, जैसे
0: हाँ
1: गुड़
0: जी,
1: वगैरह भैल या बेसन वगैरह
0: हाँ
1: भैल
0: जी,
1: कुछ
0: हाँ जी,
1: किसान भैया लोग देना, तो ये कितना मतलब सार्थक हो?
0: ये बहुत ही ज़्यादा आपने सही बात उठाई है कि जैसे पानी पीने में कई बार पशु उतना पानी नहीं पीता तो उसको स्वादिष्ट भी लगेगा,
1: जी
0: इसके लिए गुड़ मिला देना चाहिए और नमक मिला देना चाहिए,
1: एक साथ है।
0: एक साथ मिला दीजिए, तो पानी भी चाव से पी जाएगा और उसके अंदर जो एनर्जी की कमी होगी और मिनरल की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी।
1: तो डॉक्टर साहब ये तो एक सामान्य पशु के बाद भाई, और अगर पशु गर्भधारण के लिए हो तो
0: हाँ
1: एकरे
0: जी,
1: बदे का व्यवस्था होने के चाहिए?
0: गर्भ धारण कर लिया है तो उसको हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा,
1: जी
0: उस क्योंकि उसके अंदर एक बच्चा भी जो डेवलप हो रहा है उसको भी एनर्जी चाहिए, पोषण चाहिए, और पानी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, तो उसको ज़्यादा आप किसान भाई उस पर ज़्यादा ध्यान दें, और डायरेक्ट धूप में पशु को ना निकालें, जब भी उसको बाहर घुमाना हो तो सुबह या शाम के समय निकालें,
1: जी
0: और जो पशु यदि आपका उस समय हीट में आ रहा है तो उसका गर्भधारण सुबह ही अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में कराएं, ठंडे मौसम में ही उसका टीकाकरण करवाएं, टीका लगवाएं,
1: अच्छा
0: सीमेन
1: अच्छा
0: डलवाएं, तो गर्भधारण होने की संभावना बढ़ जाएगी।
1: अच्छा और एक गर्मी के मौसम में कुछ जो ना उनके स्वास्थ्य पर ये भी प्रभाव पड़ा कि जो ना कीट पतंगा होना, कुछ मच्छर वगैरह भी लगाने ढेर उन्हें,
0: हाँ जी,
1: तो
0: इस
1: इसे कैसे
0: समय
1: बचावें?
0: जो मौसम, ये अब बरसात का मौसम आ जाएगा
1: जी
0: गर्मी के बाद, तो कुछ वैक्सीनेशन हम बताना चाहेंगे कि जैसे गलघोटू का वैक्सीनेशन, FMD का वैक्सीनेशन और लंगड़ी बुखार का वैक्सीनेशन,
1: अच्छा
0: वैक्सीन जरूर किसान इस समय लगवाएं
1: हाँ
0: गर्मी या बरसात से पहले, तो इन बीमारियों से बचाव हो सकता है, और कीट पतंगों मच्छरों से लिए बचाव के लिए है कि आसपास का अपना जो एरिया है वो साफ सुथरा रखें, पानी का जमाव ना होने पाए, और उसकी तैयारी पहले बरसात हो।

0: बरसात की तैयारी आप पहले से कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। और उस साफ सफाई जो उसका गोबर है, उसका जो मूत्र है गाय पशु का, उसको प्रॉपर कहीं डिस्पोजल होने की जगह होना चाहिए, क्योंकि मच्छरों का प्रजनन और वो जगह बन जाती है जिससे कि वहां पनपते पनपने लगते हैं।
1: ये डॉक्टर साहब जो आप बताना है टीकाकरण वाली बात, तो एक एक कब लगवाना उचित रहे, जैसे ये मौसम चलत हो अभी की बरसात शुरू हो इस पहले लगवा, या अभी लगवा
0: बरसात
1: लेंगे तो का ओकर असर रही उस समय तक?
0: हाँ रहता है, उस 6 महीने में एक बार अब लगाते हैं ये टीका, तो बरसात से पहले ही उसको रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन चूंकि ये ह्यूमिडिटी और गर्मी में बैक्टीरिया वायरस इनकी ज्यादा ग्रोथ होती है, तो ये सब इन्फेक्शन फैल जाता है, तो इससे
1: अच्छा।
0: पहले टीका करवा लेंगे तो पशु हमारा एक कवच के रूप कवच आ जाए, उसके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी जिससे कि बीमारियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे।
1: अच्छा, का इस समय में कुछ पशुओं के ये रोग से प्रभाव पड़ल पड़त भी हो, दिखाई पड़ल है जो ना बताओ छो थनैला वगैरह या खुरपका मुहपका
0: हाँ, गर्मियों
1: तो?
0: में पशु की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो इसमें कोई भी वायरस या बैक्टीरिया पशु को जल्दी पकड़ लेता है, तो थनैला बीमारी है या फिर कोई और भी बीमारियां हैं, तो पशु जल्दी उससे ग्रसित हो सकता है, इसलिए उसके पोषण, उसके जल पीने की व्यवस्था और गर्मी से बचाव की जो आवास की व्यवस्था है, इसका प्रॉपर प्रबंध करें किसान भाई, तो ये सब समस्याओं से बच सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब ये जो आप बताओ छो ये सब रोग, तो अगर इस समय कोनो पशु में देखे में आवत हो, अगर लक्षण दिखाई पड़ता हो, तो क्या ओके बाकी पशुओं से अलग कर देवे कि चाहिए अगर कोनो?
0: हाँ जी, हाँ जी, कोई भी बीमार पशु है तो उसको सबसे पहले किसान भाई करें कि उसको अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग कर दें, और उसकी रख रखाव, उसका खाना पीना सब अलग से करें, और वो स्वस्थ पशु को करने के बाद ही आप जो बीमार पशु है उसको टच करें।
1: अच्छा।
0: ये सबसे बड़ा इसका बचने का एक तरीका होता है कि आप यदि पहले बीमार पशु को आप अप्रोच करेंगे फिर स्वस्थ पशु पर जाएंगे तो इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे, तो पहले आप स्वस्थ पशु की देखभाल करें, तब उसके बाद हम बीमार पशु की तरफ हमारा रुझान हो रहा है, उसको टच करें या उसकी देखभाल करें। और एक चीज़ और बताएं, हीट स्ट्रोक एक होता है, गर्मी का तनाव, कई बार पशु उससे ग्रसित हो जाता है, लू लग जाती है जिसको बोलते हैं, जैसे उसके लक्षण क्या दिखेंगे आपको पहले बता दें, तो वो
1: जी।
0: हाँफ एनिमल हाँफता है, सांस लेने की दर बढ़ जाती है उसकी, और लार गिरती रहती है, खाना कम कर देगा, वो दुग्ध उत्पादन उसका बहुत गिर जाएगा, और उसका जो सामान्य बॉडी टेम्परेचर है जो 101 होता है, वो बढ़ के 102.5 फारेनहाइट तक चला जाएगा, तो उस तरह की यदि पशु कोई लक्षण दिखाता है तो उसको पानी से एकदम उसके शरीर को ठंडे पानी बर्फ डाल के पानी में बर्फ भी डाल सकते हैं, उसका पूरे शरीर में लेप करें, उसको नहलाएं, इस तरह करके उसका टेम्परेचर डाउन करें धीरे धीरे करके, और उसमें 50 ml प्याज का रस और 10 ग्राम जीरा पाउडर और 50 ग्राम पीसी हुई चीनी का घोल बना के उसको दें, जिससे कि उसको काफी राहत मिलती है, और आम का जैसे रस हम लोग पीते हैं वैसे आम का रस भी बना के पशु को पिला सकते हैं, तो उससे जो हीट स्ट्रोक वाला जो समस्या है पशुओं को, कई बार लू लग जाती है, उससे बच सकते हैं।
1: तो विशेष रूप से एक का आप मतलब सलाह देव चाहिए हमारे किसान भैया लोगों के?
0: हम ये बोल लेंगे कि आप अपने पशु को स्वच्छ शीतल जल हमेशा अवेलेबल करवाएं, कम से कम यदि आप बांध के पशु रखते हैं तो 3 से 4 बार जरूर पानी पिलाएं, और यदि खुला पशु है तो आप ऐसे जगह पे पानी पीने की व्यवस्था रखें जो कभी भी जाके पी सकता हो। दूसरी बात, उसको संतुलित आहार दें जिसपे दाना है उसमें चना और मेज यानी मक्का, उन दोनों का भी 25-25 ग्राम मात्रा
1: मिला
0: एक
1: दें।
0: पशु को जरूर इस हिसाब से दें कि उसमें हो। इसके अलावा नमक और गुड़ का भी सेवन आप पानी के साथ उसमें पानी में मिला के दे सकते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर पुष्पराज शिवहरे भैया, आप हमारे पंचायती में आई ना, और इतनी अच्छी जानकारी देना कि जो गर्मी का मौसम हो एमन अपने पशुओं का देखभाल कैसे करें, जैसे उनका दूध उत्पादन जो हो प्रभावित ना हो, आपके बहुत बहुत धन्यवाद एक बदे।
2: गुंजा बहन,
3: हाँ भैया।
2: देखें डॉक्टर भैया कितना फरिया के बता देना है कि जौन भी पशु चौआ हुआ उनकर विधिवत ख्याल रखे के जरूरत है अपने तपन में, तो दिहल जाए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखें बच बचाव के अगर गर्मी में हमहन गैया गोरू अगर न रहल जाई, न इनकर जतन करल जाई, तो निश्चित रूप से देखें खलित्ता ढील होई, 4 पैसा का नुकसान होई। आ कभी कभी कहल जाला पुरनियन का बात माने के चाही कि हमेशा जौन भी पुरनिया लोग बात कहन ओमन कुछ न कुछ कारण होला, तो देखें इस समय पुरनिया लोग का यह है जौन कहनी है कि भैया हो सुरक्षा में ही बचाव हो,
3: एकदम
2: तो अगर ये तपन से

0: बच्चे के हा तो भैया अपन सवेरे सवेरे खेते डेणे जा। निश्चित रूप से कुछ किसान भैया लोग अपन धान का तैयारी का योजना बनावत हुआ, काहे कि तपन के बाद जैसे ही बारिश हुई अपन बिया बेहन के लोग तैयारी करी हैं। बहुत से किसान भैया लोग के इसमें कुरार से आबादी से तर तरकारी निकलत है, तब सवेरे ही तोड़ लें 7-8 बजे से पहले। फिर संझा के अगर एक चक्कर जाए कि हो खेते दाणे तो 5-6 बजे ले चल जाएँ, लेकिन कोशिश करें कि गैया गोरु भी घामे न रहें और अपने भी मतलब बाजारे से जाए से बचें। हाँ जरूरी काम बात भाई निकल ही के बाद।
1: भाई निकले का तो भाई हो बे करी,
0: हाँ
1: लेकिन देखा जो इतना नीक जानकारी हम लोगन सुन ली है ना,
0: हाँ
1: ओके बाद हम कहा था ना कि
0: कुछ मन फेर हो जाए।
1: भैया, हाँ मन फेर हो जाए या भैया लोगन के गीत गौनाई की ओर ले चलल जाए और सुनल जाए छोटे लाल पटेल और साथी का ही गौनाई।
0: सुनल जाए।

0: गुंजा बहन,
1: हाँ भैया,
0: देखें वीरन का जब गुणगान हो जाला तो वैसे ही आत्मा मन तन कुल प्रसन्न हो जाला। काहे
1: हाँ
0: से कि सेना पर जौन आपन गर्व कराला पूरा देश, ही ऐसे ही नहीं करत जौन भी सीमा पर प्रहरी हवा उनकर, आ जौन खेत पर आपर किसान हवा उनकर बहुत बड़ा योगदान है अपने देश के विकास में। जहाँ किसान अनाज का पैदावार करके सबकर पेट भरना, वैसे ही सीमा पर प्रहरी समझ रहे हैं कि अपने देश का सुरक्षा करना। तो दोनों लोगन के हमेशा गर्व का महसूस होला हम के दोनों लोगन पर। देखें अब आगे कार्यक्रम में काल का हो ये के जान लेवल जा। काल सवेरे 6:05 पर खेती की बातें में विषय रही मिर्चा का खेती, जानकारी दिए हैं दिनेश कुमार सिंह भैया। संध्या के
1: सांझी
0: का हुई
1: के 6:30 पे अपने कृषि जगत कार्यक्रम में हुई बतकही पशुपालन हेतु सरकारी सुविधाएं पे डॉक्टर संतोष कुमार पांडे से बती हैं सतीश यादव भैया।
0: अब देखा घड़ी के सुई इशारा करा था कि चला यहीठना चल कार्यक्रम के समेटल जा। तो नए जोश, नई उम्मीद, नई जानकारी के साथ फिर जुटल जाई। पंचों राम
1: राम राम।
0: राम।

अभी हमारे किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म आ अब लौट चलें से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का।

कार्यक्रम का अगला गाना है फिल्म बाजीराव मस्तानी से। इस गीत को गाया है श्रेया घोषाल और बिरजू महाराज ने। गीत के बोल लिखे हैं सिद्धार्थ गरिमा ने, संगीत है संजय लीला भंसाली का।

कार्यक्रम का अब अगला और अंतिम गीत है फिल्म बर्फी से। इस गीत को गाया है मोहित चौहान ने। शब्द रचना है स्वानंद किरकिरे की, धुन बनाई है प्रीतम चक्रवर्ती ने।

मोहित चौहान के गाए फिल्म बर्फी के इसी गीत के साथ हमारा फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। पहली सूचना थाना लालपुर पांडेपुर कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार सोनम चौरसिया, इनके पिता का नाम है कल्लू चौरसिया, पांडेपुर नई बस्ती थाना लालपुर वाराणसी के निवासी हैं। ये लालपुर से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 21 वर्ष, कद 5 फीट, शरीर सामान्य और रंग गेहुआ है। इनके विषय में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो कृपया अपने नजदीकी थाने को अथवा थाना लालपुर पांडेपुर वाराणसी को सूचित करें। अगली सूचना कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार आयुश्री सिंह पुत्री सतीश कुमार सिंह निवासी रेवसा थाना कंदवा जनपद चंदौली इनका हुलिया है, उम्र 21 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, चेहरा लंबा, इकहरा बदन और रंग गेहुआ है। आखिरी बार देखे जाते समय इनका पहनावा ब्राउन टी शर्ट, लोअर और पैरों में हवाई चप्पलें थीं। इनके विषय में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर कृपया अपने नजदीकी थाने को अथवा थाना प्रभारी निरीक्षक थाना कंदवा चंदौली को मोबाइल नंबर 9454403192 पर सूचित करें। सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
1: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
1: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश, कहा बिजली उत्पादन इकाइयों को पूरी दक्षता से किया जाए संचालित। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा, मार्को रूबियो कल आगरा में ताजमहल का करेंगे दीदार। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न, प्रदेश के 9 परीक्षा केंद्रों पर नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान में वृद्धि और लू चलने की जताई संभावना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों सहित प्रदेश के प्रत्येक उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत की उपस्थिति में ऊर्जा विभाग, पावर कारपोरेशन एवं डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी संयंत्रों में तकनीकी दक्षता तथा रख रखाव व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देने के साथ ही फीडर वाइज मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय करने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आंधी तूफान के बावजूद विद्युत व्यवस्था बहाल रखने के लिए त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय रखने को भी कहा। दीपाली सिंह, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। अमेरिकी विदेश मंत्री कल आगरा में ताजमहल का दीदार करेंगे। वो विशेष वायुयान से आगरा पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम पहुंचेगा। शिल्पग्राम से बैटरी चलित गोल्फ कार्ट में बैठकर वह ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के आगरा भ्रमण के मद्देनजर केंद्रीय एवं प्रांतीय खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। ताजमहल के आसपास के होटलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रूबियो भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री के ताजमहल भ्रमण के दौरान आम पर्यटकों के लिए ताजमहल खुला रहेगा। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों के साथ 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान

बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा की एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव जिस प्रकार की नई नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी की तैयारियों को हर स्तर पर और भी चुस्त दुरुस्त बनाने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर

0: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत आज से 3 दिवसीय प्रवास पर लखनऊ में हैं। सर संघ चालक सरस्वती कुंज निराला नगर में चल रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में प्रशिक्षण लेने आए शिक्षार्थियों के मध्य बौद्धिक और संवाद के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में नेपाल सहित अवध, कानपुर, गोरक्ष और काशी प्रांत के 289 कार्यकर्ता प्रशिक्षण ले रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के 9 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बरेली में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। एक रिपोर्ट।
1: लखनऊ में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक चली, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक हुई। इस बार परीक्षा से पहले चेहरा पहचान प्रणाली लागू की गई। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले इस सिस्टम से होकर गुजरना पड़ा। इस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश से 37,000 से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत थे। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान कटा है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में कोडीन सिरप की अवैध तस्करी मामले की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स STF ने कल अदालत में 40,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जांच में 900 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। इससे पहले भी STF ने अदालत में एक चार्जशीट दाखिल की थी। STF के अधिकारियों ने बताया कि NDPS एक्ट समेत अन्य धाराओं में अदालत में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित टाटा के खिलाफ चार्जशीट कल दाखिल की गई। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और आसपास के कुछ स्थानों पर कल दिन में तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर रात्रि के तापमान में वृद्धि का भी अनुमान जताया गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू के ऑरेंज अलर्ट के साथ ही विभाग ने कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने का पूर्वानुमान जताया है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आने वाले 3 दिनों में प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है।
2: जैसा

0: उसी क्रम में जारी रहेगा।
1: हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में कल होने वाले गंगा दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन ने आज डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं अमरोहा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज से रूट डायवर्जन लागू किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए आज से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर पीएससी फ्लड पीएससी फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेटिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
1: सशस्त्र सीमा बल द्वारा आज लखनऊ में संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण के अंतर्गत फिट इंडिया साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीमांत मुख्य

0: कार्यालय लखनऊ एवं चतुर्थवाहिनी के अधिकारियों और बल कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और लोगों को फिट एवं स्वस्थ रहने के प्रति जागरूक करना था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश, कहा बिजली उत्पादन इकाइयों को पूरी दक्षता से किया जाए संचालित। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। मार्को रूबियो कल आगरा में ताजमहल का करेंगे दीदार। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 9 परीक्षा केंद्रों पर नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान में वृद्धि और लू चलने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: Hey girls,
2: hi, congratulations.
1: आज तो पार्टी चाहिए।
3: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। आज की प्रस्तुति अरुण पांडे और सना सलीम की है।

0: पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। सना सलीम जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से।
1: अरुण जी आपको और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का नमस्कार। आज आपकी तबीयत सही लग रही है, पूरी तरह से सही होकर आए हैं।
0: अच्छा तो जैसे अंतराल के बाद अनाउंसर जो है थोड़े से हाँ, ज्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं, लेकिन आज श्रोताओं के जो रंग नाम के हम लोग करके रखते हैं ना, वही रंग आपके ड्रेस का भी हो गया है और वही रंग मौसम का भी है। टेम्परेचर 43, 44, 45 और अखबार में पढ़ा कि 47 भी हो सकता है।
1: ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है। तो इस चुपती जलती गर्मी में आप जो है अपने मैसेजेस जो है वो भेजना हमें मत भूलिएगा।
0: और ऑरेंज का जूस महंगा हो तो भी उसका सेवन
1: उसका सेवन करते रहिएगा। फिलहाल जो है ईमेल्स पढ़ना जो है वो शुरू करते हैं। ये पहला जो आज का मेल हमें मिला है ये है हमारे नियमित श्रोता दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से। लिखते हैं कि सर नमस्ते, हम कुशल पूर्वक रहकर आपका प्रसारण अत्यंत रुचि से सुनते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। FM का फुल फॉर्म क्या होता है?
0: फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कई बार लोग इस तरह से जीके टाइप का कहते हैं। अच्छा, उन्होंने आपसे पूछा है, बताइए।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM
0: तो
1: का
0: ये अब बताइएगा कि ये जान करके आपको क्या जानकारी में इजाफा हुआ, क्योंकि ये इजाफा वाले हमारे दिलशाद जी हैं।
1: हाँ।
0: तो मीडियम वेव शॉर्ट वेव ये फुल फॉर्म हुआ करता है। दरअसल ये फ्रीक्वेंसी जिस तरह से ट्रेवल करती है ट्रांसमीटर से लेकर के आपके रेडियो सेट यानी रिसीवर तक, उसी के आधार पर ये नाम रखे गए हैं।
1: जी कार्यक्रमों के बारे में इन्होंने लिखा है कि दिनांक 22 अप्रैल को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस सना द्वारा प्रस्तुत सुना, अच्छा लगा, शुक्रिया आपका। 23 अप्रैल को पूजा द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस अत्यंत रोचक और मनमोहक लगा। 24 अप्रैल को अरुण सर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, सभी चुनिंदा गीत अधूरे सुनने को मिले।
0: वो उनका ये कहना है कि उसमें नाम बोले जा रहे
1: अच्छा,
0: होंगे ना।
1: हालांकि
0: ऐसा होता नहीं है, गाने आमतौर पर शुरुआत के जो गाने होते हैं वो पूरे के पूरे बजते हैं, लेकिन नाम जब आप पूरे सुनेंगे तो गाने कुछ कुछ अधूरे हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं इस तरह के प्रोग्राम में कि अधिक से अधिक श्रोताओं को उनका नाम शामिल हो जाए, इसकी खुशी जरूर उन्हें मिले।
1: जी उसी दिन आशुतोष शास्त्री जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस सुना, अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक लगा। 26 अप्रैल को आज इतवार है के अंतर्गत प्रसारित झलकी मकान किराए का सुनी, अच्छा लगा। 26 अप्रैल को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम लोक रंग अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना, पसंद आया।

0: 28 अप्रैल को झंकार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित फिल्म आराधना का गीत सुना, बोल कोरा कागज था ये मन मेरा। अनाउंसर ने फिल्म झूली बताया, गलत बताया,
1: ये होना नहीं चाहिए। आमतौर पर उसके आगे पीछे कोई फिल्म रही होगी जिसका नाम ये रहा होगा, इस वजह से हो सकता है, लेकिन एक्सक्यूज नहीं है। आमतौर पर कोई भी गीत 4-5 मिनट बचता रहता है, तो इस दरमियान हमें ख्याल जरूर से आ जाना चाहिए कि इसमें कहां क्या गलती हो रही है।
0: जी, 28 अप्रैल को फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, सभी चुनिंदा गीत पसंद आए, पर अनाउंसर का बार बार कहना कि ये मैसेज मिला। अच्छा,
1: ये दिलशाद जी बार बार अपने मेल में ये बात कहते हैं, लेकिन से उद्घोषक अगर बोलेगा तो कुछ तो कहेगा, हालांकि एक ही बात नहीं कहना चाहिए, उसको अलग अलग तरह से बोलना चाहिए।
0: जी, तो इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपने मेल जो है वो करते रहिएगा।
1: और जानकारी में इजाफा होगा, एफएम की जानकारी में इजाफा होकर के क्या इजाफा हुआ बताइएगा। पूजा जी वाली जो बधाई है वो सना जी,
0: हाँ, एफएम के प्रोग्राम के बारे में इन्होंने नहीं लिखा है, एफएम के प्रोग्राम लगा नहीं
1: सुना, ये वहाँ पर मैसेजेस वहाँ भी करते हैं।
0: तो आगे एफएम के प्रोग्राम के भी बारे में अगले हफ्ते जरूर लिखिएगा। ये अगला मेल है गीलट बाजार से शंभू, ममता और विशाल का। लिखते हैं कि सबसे पहले तो पूर्वांचल के अमीन सायानी यानी अरुण पांडे जी को सादर नमस्कार।
1: ज्यादा हो गया,
0: नहीं सही लिखा है। और विविध भारती की धड़कन सीधी साधी मंजूषा जी को शुभ आशीर्वाद की जुग जुग जियो बिटिया रानी।
1: क्या कहने,
0: रेडियो खरीदना आप दोनों ने वसूल कर दिया।
1: अब ऐसा लग रहा है कि मंजूषा जी को एक बार बुलाना ही पड़ेगा। दरअसल इतनी तारीफ आ रही इस तरह की ना कि उनको बुला करके शुक्रिया उन्हीं की जबान में आपसे कहवाया जाएगा आपके लिए।
0: बेटा बोला मैं लिख दूंगा ईमेल, चिट्ठी तो हमने कहा जो बोलता हूँ वही लिखो। पत्रोत्तर सुनवाया, बहुत आदर और प्यार से हमारा चिट्ठी वाला मेल आप पढ़े, ये आपका बड़प्पन है। आपने कहा था कि कार्यक्रमों के बारे में बताइए तो तारीख भूल जाता हूँ पर बात याद रहती है।
1: जी,
0: सीधी साधी मंजूषा बिटिया का आंधी तूफान सतुआन वाला और बेजुबान जानवर वाला प्रोग्राम तो ताज्जुब कर गया। गजब जानकारी, जानवरों के गाने, उनकी बनी पिक्चरें और किस जानवर पर किस देवता की सवारी है, फिर संस्कृत श्लोक और चौपाई और हसगुल्ला, उनकी माँ भी बहुत अच्छा कहती है, सुनने और समझने लायक। एक दिन सुबह मोतियाबिंद पर बहुत अच्छा बताए डॉक्टर साहब अनिल तिवारी जी, अरुण जी के सवाल पर एक डॉक्टर पूजा किरण दांतों के बारे में बता रही थी, सवाल भी लाजवाब और जवाब भी सुंदर थे।
1: अच्छा, इन्होंने बोल बोल कर लिखवाया है, इसलिए जो लिखने वाले हैं उनको थोड़ा सा अच्छा, हाँ। इसी मेल के बारे में आपका जो नजरिया था तफसील वाला था
0: जी।
1: जी, तो यह है कि मंजूषा जी बहुत मेहनत करती हैं और बड़ा रिसर्च, आपकी बातों से लगता है कि वो रिसर्च करके बहुत परिश्रम से प्रोग्राम करती हैं। उन्हें अच्छा लगेगा कि आप जैसे श्रोता उनके लिए दुआएं दे रहे हैं कि वो यूं ही प्रोग्राम करती रहें और श्रोताओं तक अधिक से अधिक सुरुचिपूर्ण जानकारी लेकर आए।
0: बिल्कुल, युवावाणी वाले प्रोग्राम में दिलीप कुमार जी पर तैयबा जी का प्रोग्राम तो अनमोल था, तैयबा मारूफ
1: जी।
0: कुछ लोग पूछने लगते हैं हमारी आवाज आ रही है, तेज करें, कम करें, अब ठीक है।
1: अच्छा, ये हेलो फोन इन फरमाइश के बारे में कह रहे हैं, नहीं, अच्छा हमें लग रहा है आप लोगों के प्रोग्राम
0: लाइव वाले प्रोग्राम के बारे में लिखे हैं। तो श्रोता बताते हैं कि आवाज कम करिए, और हमारे जमाने में ये सब काम इंजीनियर और जानकारी विभाग ये सब देखता था।
1: एक चीज तो है कि ये हमारे यहाँ जो भी कंसोल है उस पर एक इंडिकेटर होता है और उसमें लेवल इनकमिंग या आउटगोइंग दोनों ही चीजों के, अगर हालांकि वहां पर सिर्फ जाने वाली बात है, लेकिन फोन इन के मामले में वो इंडिकेटर दिखाता है कि लेवल क्या जा रहा है, और उसका ख्याल हर अनाउंसर को, आरजे को रखना चाहिए। तो ये पूछने वाली बात है, ये हमें नहीं लगता है, क्योंकि ये देखना हमारा जिम्मेदारी है स्टूडियो में कि लेवल कितना जा रहा है।
0: जी, आखिर में इन्होंने लिखा है कि एक दिन तो एक नैन्सी और सीधी साधी ही मोबाइल से गायब हो गई।
1: ये शायद ये कहना चाह रहे हैं कि नेटवर्क के चलते एक आध जगह हमने भी देखा कि ये लिखा हुआ था कि बीच में प्रोग्राम चलता रहता है, क्योंकि आमतौर पे वो जो प्रोग्राम है विविध भारती का मुख्यतः वो एफएम के लिए है और फेसबुक एक सप्लीमेंट्री एक तरह से प्रसारण है जिसमें आप जुड़ जाते हैं, तो कई बार इंटरनेट नहीं चलने के कारण जो है वो आपको फेसबुक पर वो जो फीड है वो कभी कभी कट जाती है।
0: जी, इस मेल के लिए शंभू, ममता और विशाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: पूरे के पूरे नाम लिखिएगा तो हाँ। थोड़ा सा हमें भी ज्यादा यकीन होगा और हमारे यकीन में इजाफा होगा।
0: अगला ये मेल है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से। भेजने वाले हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढक से। लिखते हैं, हमें आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हम आपके कार्यक्रम डी

0: यश पर सुनते हैं। दिनांक 23 अप्रैल 2026 का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में वर्ल्ड बुक डे पर डॉक्टर नामवर जी से आरजे पूजा जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी।
1: हमें लग रहा है ये डॉक्टर नामवर कौन से हैं, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता, क्योंकि एक जो नामवर सिंह थे बड़े साहित्यकार, वो तो अब है नहीं। ये हो सकता है कि नामवर सिंह के बारे में किसी से बातचीत पूजा जी ने की हो और वो
0: नहीं। पूजा जी काशी रत्न करती है, जेम्स ऑफ वाराणसी नाम से एक सेगमेंट,
1: उसमें उन्होंने नामवर सिंह के बारे में जानकारी दी
0: जी, जानकारी
1: क्योंकि मूलतः ये इस इलाके के ही रहने वाले थे और बहुत सारे योगदान है साहित्य के क्षेत्र में नामवर सिंह के, तो उन्हें हम लोग एक समालोचक के रूप में, साहित्यकार के रूप में हमेशा याद रखते हैं। ये प्रोग्राम आपको पसंद आया, आपकी बधाई पूजा जी तक पहुंच रही है।
0: अगला ये मैसेज हमें मिला है शुक्लपुरा से परवेज अहमद का
1: जी।
0: लिख रहे हैं, आदरणीय अरुण सर जी, आपके साथ सहयोगी आरजे को परवेज अहमद शुक्लपुरा वाराणसी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।
1: जान गए होंगे कि पिछले एक दो महीने से तो सना जी उपलब्ध हैं, मतलब आ जा रही हैं इनायत इनकी, तो अब सना जी हैं, देखिए कि कब तक इनके पास फुर्सत रहती है।
0: आकाशवाणी मैमूरगंज वाराणसी केंद्र के इस समय के प्रोग्राम सभी अच्छे और सुपर हो रहे हैं, जो एक नई पहल शुरू हुई है मेरी आवाज की हमें देखिए भी, ये बहुत से देश और विदेश के भी श्रोताओं को आकाशवाणी वाराणसी के केंद्र से जोड़ रहा है
1: जी। ये जो फेसबुक पर लाइव हो रहा है उसके बारे में कह रहे हैं
0: जी। अरुण सर जी को सभी श्रोताओं का इंतजार था
1: जी,
0: जिसमें मैं भी था। जब अरुण सर कोई प्रोग्राम लेकर आते हैं मैं देखता हूँ।
1: दरअसल हम दिखते तो है नहीं,
0: हाँ,
1: ये लगता
0: वही
1: है,
0: मुझे
1: इमेजिन करते हैं, ये कल्पना में हमें देखते हैं।
0: श्रोताओं की तादाद बढ़ जाती है और इस बार आरोग्यम में मेरी बात शिखा श्रीवास्तव जी डॉक्टर साहिबा से स्त्री रोग संबंधित बात और उसका निवारण के बारे में बातचीत हुई। हमारे कुछ फेवरेट आरजेज और भी हैं जो प्रोग्राम भी अच्छे से पेश करते हैं, जैसे सना सलीम, आशुतोष शास्त्री, निराली निवेदिता, मंजूषा ज्योत्सना। अरुण सर जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर पत्र के लिए धन्यवाद और हेलो फोन इन फरमाइश FM पर भी प्रसारित होने लगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
1: ये बात आपकी हम लोगों ने कार्यक्रम प्रमुख तक पहुंचा दी है और गुजारिश भी की है, उम्मीद है कि आइंदा अगर कुछ इसमें सुधार हुआ, इसलाह हुआ प्रोग्राम में, तो जरूर आपको इस तरह के प्रोग्राम भी सुनने को वहां पर मिल जाएंगे FM पर
0: जी। इस मेल के लिए परवेज अहमद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला ये मैसेज हमें मिला है असगर अली का शिवपुर वाराणसी से
1: जी।
0: लिख रहे हैं, AJ स्टैंड्स फॉर ब्यूटी, अरुण स्टैंड्स फॉर ड्यूटी।
1: AJ मतलब
0: AJ क्या है? दिल में बहुत अरमान था कि PKLD कार्यक्रम को भाई अरुण जी और मोहतरमा सना सलीम जी पेश करें, वो अल्लाह ताला ने सुन लिया और पहले भी कार्यक्रम आया और सना जी और अरुण जी ने कार्यक्रम पेश किया जो बहुत ही अच्छा लगा। सना जी जब खिलखिलाती हंसी के साथ पत्र पढ़ती हैं तो बहुत अच्छा लगता है
1: जी।
0: इतना अच्छा लगा कि मैंने टेप किया, हालांकि मेरा पत्र नहीं था
1: आपकी
0: उसमें।
1: हंसी और खिलखिलाहट को उन्होंने टेप कर रखा
0: टेप कर रखा
1: यानी सबूत इकट्ठे हैं असगर जी के पास
0: जी। हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में करीब साल भर बाद श्री अरुण साहब और श्रीमती रेखा पांडे की मुलाकात हुई, हेलो फोन इन पर बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा पूरा पत्र पढ़ा, एक शब्द भी नहीं काटा।
1: अच्छा,
0: और
1: नहीं तो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उनके फोन कट जाते हैं, उसमें बातें जो लंबी लंबी होती हैं और पत्र में भी कट जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा ख्याल रखना है कि तारीफ भी ज्यादा न हो और बात भी लंबी न हो, वो चाहे फोन इन हो या ये प्रोग्राम हो, थोड़ा संक्षेप में और मुद्दे की बातें होंगी तो अधिक से अधिक श्रोताओं को मौका दोनों ही कार्यक्रमों में मिल पाएगा। इस वजह से कई बातें हमें थोड़ी सी काट छांट करनी पड़ती हैं
0: जी। आगे लिखते हैं कि मेरा गाना भी पूरा बजाया, बस आपने ये नहीं बताया कि गाना किस फिल्म का है और उसके संगीतकार कौन है
1: जी।
0: अब छोटे भैया जी, अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं मेरे INS तलवार गोल्ड जमुना के बारे में जानने के लिए, तो ये सब का फोटो मेरे पास है।
1: तो वो हम अपने श्रोताओं को दिखा नहीं सकते, आप जब हमारी आपसे बातें होंगी तो अपने अनुभव आप जरूर साझा कर सकते हैं
0: जी।
1: और ये तमाम जो आपने नेवी के जहाजों का जिक्र किया, हम समझ सकते हैं कि लंबी सेवा के दौरान आपने अलग अलग शिप पर इस तरह से अपनी ड्यूटी की है और वो सारी यादें आपके साथ हैं। वो मौका जब भी ऐसा होता है तो हम आपसे जरूर बातें करते हैं आपके तजुर्बे के बारे में
0: जी। अंत में इन्होंने लिखा है कि मैं ये कहूंगा कि एक श्रोता ने कहा था कि अरुण जी आप कार्यक्रम बहुत कम पेश करते हैं, तो मैं असगर अली श्रोता बंधुओं से कहना चाहता हूं कि मंडे के सुबह 5:53 से नाइट 11 बजे रात तक पूरे हफ्ते का कार्यक्रम बिना नागा सुने और गिन कर रखे भी हैं कि अरुण पांडे जी कितना कार्यक्रम पेश कर रहे हैं।
1: अच्छा, ये है कि समय ही समय है, गिन कर भी रखते हैं और उन्होंने इसलिए आपकी हंसी भी जो है वो रिकॉर्ड करके रखी है।
0: और आपके

0: आपने कितनी बार बोला ये भी रिकॉर्ड उन्होंने किया है। सुबह से रात तक तो अरुण जी ही बोलते हैं, चाहे ज्ञान वार्ता, पीकेएलडी, आरोग्यम, आपके पत्र, आपके गीत, और ऊपर से विज्ञापन, उसके बाद सेटअप बॉक्स वाला विज्ञापन।
1: सारी मुश्किलें हैं जिसके लिए चचा गालिब ने कहा था कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी की आशा हो गई।
0: और क्या क्या, अब तो वही पेश करते हैं। बाकी कार्यक्रम पेश करने के अंदाज, आपके आवाज की और आपके हेलो फोन इन फरमाइश पर जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, इन सब सच्चाइयों का जब कोई श्रोता हेलो फोन इन में या पीकेएलडी में भेजता है, अगर आप हेलो फोन इन में हैं तो दुल्हन की तरह शर्मा जाते हैं।
1: वैसे दूल्हे की तरह भी शर्माया जा सकता है। जी।
0: और पीकेएलडी में है तो कट ऑफ कर देते हैं। एक सीनियर सिटीजन और श्रोता के नाते रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये सब बंद कीजिए।
1: देखिए, अपने ही प्रोग्राम में अपनी तारीफ, थोड़ा सा उसको ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी बातें भी रह जाएं। और हम लोग दरअसल, इतना अनुभव जैसा आपको लंबा है, तो रेडियो में हम लोगों को भी एक बड़ा लंबा अनुभव है। हर कलाकार जो एक तजुर्बे के बाद ईमानदारी से काम करता है तो उसे मालूम होता है कि उसकी कमियां क्या हैं, खूबियां क्या हैं, और वो निरंतर सीखता है, उस पर बेहतर बनाने का प्रयास करता है। हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है।
0: आखिर में उन्होंने लिखा है कि कृपया आरोग्यम कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग डेट और फोन नंबर देने की जरूर मेहरबानी कीजिएगा।
1: आमतौर पर वो इन दिनों गुरुवार को रिकॉर्डिंग हो रही है और सुबह 10 बजे से 11 बजे तक होती है, और हमारे यहाँ प्रोमो भी आपको सुनने को मिल जाता है जब भी आरोग्यम की रिकॉर्डिंग हुआ करती है। कई बार ये होता है कि विशेषज्ञ नहीं आ पाते हैं तो उसके लिए हम लोग खेद भी प्रकट करते हैं। तो जरूर आप सोम, मंगल, बुध सुना करें हमारे खासतौर से दिन भर के प्रसारण, तो आपको उससे मुतालिक जानकारी मिल जाएगी।
0: और अब आज के कार्यक्रम का ये जो आखिरी मेल हम शामिल कर रहे हैं, ये है सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का, जमानिया, जिला गाजीपुर से। लिख रहे हैं, 31 मार्च को अरुण पांडे जी द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो व्हाट्सएप पर आधारित था, जो हम लोगों को बेहद पसंद आया, बहुत प्यारे मनमोहक गीतों को सुनवाया, अच्छा लगा। उनके प्रोग्राम में किसी भी श्रोता का व्हाट्सएप नहीं छूटता, किसी को शिकायत का मौका नहीं देते। अगर उनके जैसा ही सभी लोग करते तो किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलता। अच्छी प्रस्तुति के लिए अरुण भैया को दिल से धन्यवाद।
1: वो सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजमेंट है, और वो स्किल करते करते अगर ध्यान दिया जाए तो हर कोई समझ सकता है कि प्रोग्राम कैसे हो कि किसी को शिकायत का अवसर ना मिले। बहरहाल, आपको ये प्रोग्राम पसंद आया, बहुत शुक्रिया आपका।
0: 31 मार्च को ही शिखा श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत सुहाने तराने सुना, बहुत प्यारा लगा। प्रोग्राम पेश करने का खूबसूरत अंदाज पसंद आया, इसके लिए शिखा जी को बहुत बहुत बधाई। 1 अप्रैल को अनुपम गुप्ता, 2 अप्रैल को अंजना झा द्वारा प्रस्तुत ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, श्रोताओं की पसंद के गाने लाजवाब थे, प्रस्तुति बहुत शानदार थी। 6 अप्रैल को अंजू तिवारी द्वारा प्रस्तुत आपके पत्र आपके गीत सुना, बेहद पसंद आया, हम लोगों का पत्र भी शामिल हुआ, इसके लिए अंजू दीदी को बहुत बहुत बधाई। उसी दिन विविध भारती पर सीधी साधी मंजूषा जोत्सना द्वारा प्रस्तुत वाराणसी वाइब सुना, अच्छा लगा, उस दिन मेरा मैसेज भी शामिल हुआ, अच्छी प्रस्तुति के लिए मंजूषा जी को बधाई।
1: तो है उधर में कि सना जी, जब मंजूषा जी अपना नाम नहीं बता रही थी तो उनका जिक्र हमारे प्रोग्राम में कभी कभी आता था। और एक बार उन्होंने हमसे कहा भी था कि हमारी तारीफ या हमारा जिक्र तो उस प्रोग्राम में नहीं आता, लेकिन जब से वो सीधी सादी हो गई है, उनके चाहने वालों का की तादाद जो है वो बढ़ गई है, तो इससे ये पता चलता है कि हर हमारे साथी को थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए और अपना नाम जरूर बताना चाहिए हर प्रोग्राम में।
0: और आखिर में इन्होंने लिखा है कि 8 अप्रैल को अंजना झा और 9 अप्रैल को चित्रा दुबे द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, जो दिल को छू गया। अच्छे गीतों को सुनकर बहुत सारे श्रोताओं के ईमेल शामिल हुए, अच्छा लगा, बहुत सारे ईमेल शामिल होते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छी शानदार प्रस्तुति के लिए अंजना दीदी और चित्रा दुबे जी को हम लोगों की तरफ से दिल से धन्यवाद।
1: ये अच्छा लगा कि चित्रा जी का भी प्रोग्राम आपको पसंद आया। हमारे हर साथी बहुत ही मेहनत से, तल्लीनता से प्रोग्राम करते हैं और श्रोताओं से हम उम्मीद करते हैं कि वो प्रोग्राम सुनेंगे और अपनी प्रतिक्रियाएं जैसे आपने भेजी है वो हमें भेजेंगे। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका।
0: और प्रतिक्रियाएं कहाँ भेजनी है आपको पता है, pkldaiarvaranasi@gmail.com पर आपके मेल्स का हमें इंतजार रहेगा।
1: और आपसे हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए अरुण पांडे
0: और सना सलीम को इजाजत। नमस्कार।

0: ये संदेश।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अभी आप सुन रहे थे पत्र के लिए धन्यवाद। आज की प्रस्तुति अरुण पांडे और सना सलीम की थी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत का कार्यक्रम है रसरंग, लेकिन उससे पहले

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम का पहला गाना है फिल्म तीसरी कसम से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को सुरों से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अगला गाना है फिल्म ताजमहल से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, संगीत है रोशन का।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 8:37 हुए हैं। कार्यक्रम सुगम संगीत में आइए सुनते हैं अशोक खोसला की गाई हुई गजलें।

इसी के साथ अब सुगम संगीत समाप्त करने की हमें इजाजत दीजिए। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रस माधुरी। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म घूंघट से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। शकील बदायूनी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है रवि शर्मा ने।

अगला गीत है फिल्म बहू बेगम से। इस गीत को गाया है आशा भोसले ने और मोहम्मद रफ़ी ने। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को सुरों से सजाया है रोशन ने।

अगली आवाजें आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, शब्द रचना आनंद बख्शी की, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है दो रास्ते।

अगला गाना है फिल्म दोस्त से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने। शब्द रचना आनंद बख्शी की, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अगला गाना हमने लिया है फिल्म देश परदेश से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे हैं अमित खन्ना ने, संगीत है राजेश रोशन का।

अगली आवाजें आप सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। शब्द रचना आनंद बख्शी की, धुन बनाई है आरडी बर्मन ने। फिल्म का नाम है अपना देश।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म अपना देश के इसी गीत के साथ अब संपन्न होता है हमारा कार्यक्रम रसमाधुरी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर है। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता

0: विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए यूपीएससी

टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय त्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शेराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजोदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत और अमरीका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती मुआहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमद और रफ्त को तआवुन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1 लाख से ज्यादा वोटों से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। टीएमसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज कायम करें। हुकूमत ने सीबीएसई के पर्चे दोबारा जांचने से मुतल्लिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के माहिरीन की खिदमात हासिल की हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। अगले 7 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसी मौजूदात पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत अमरीका दिफाई शराकतदारी की ताकत का एक बार फिर जिक्र किया और तिजारत, तवानाई, नखलो हमल, नेज इलाकाई सलामती समेत तआवुन के अहम मैदानों का खाका पेश किया। वफ्द की सतह की बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जल्द अज जल्द एक तजारती माहदे की तकमील को की जरूरत को उजागर किया। तवानाई की तिजारत में तोसी का खैर मकदम किया और जोर देकर कहा कि मुख्तलिफ किस्म की तवानाई सप्लाई भारत में तवानाई की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए अहम है। ईरान के साथ तनाजे के बारे में जनाब जयशंकर ने कहा कि भारत और अक़्वाम मुत्तहदा को इस बात को यकीनी बनाने में काफी दिलचस्पी है कि तवानाई की आलमी कीमतें कम रहें। उन्होंने मुज़ाकरात, सिफारती कोशिशों, महफूज और बिला रुकावट समंदरी तिजारत के हक में भारत के मौकिफ को भी एक बार फिर दोहराया। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि भारत दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जिसके ताल्लुकात अमरीका, इसराइल, ईरान नेज दिगर खलीजी मुल्कों के साथ मजबूत हैं। उन्होंने ये बात दोहराई कि भारत खित्ते में अमन इस्तेहकाम, बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी की फलाह और तवानाई की कीमतों में कमी चाहता है। डॉक्टर जयशंकर ने अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को उजागर किया और कहा कि कानूनी तौर पर की जाने वाली आमदोरफ्त पर कोई मनफी असर नहीं पड़ना चाहिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने शराकतदारी के दिफाई पहलुओं की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने भारत को दुनिया में अमरीका के सबसे अहम शराकतदारों में से एक करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अमरीका उन सभी अहम मामलों पर दिफाई तौर पर मुत्तफिक हैं जिनसे नई सदी की वजाहत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी के नतायज बर्दाश्त किए हैं। उन्होंने ये बात भी जोर देकर कही कि अमरीका ने दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात भारत के साथ उसके दिफाई इत्तेहाद की कीमत पर नहीं किए हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड वजराए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए कल भारत के 4 रोजा दौरे पर आए हैं। ये मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को होगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी वजीर खारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत में दिफा, सलामती और दिफाई टेक्नोलॉजी के शोबों में तआवुन पर तवज्जो मरकूज की गई जिनमें ट्रस्ट पहल भी शामिल है। वजारत ने मजीद बताया कि कौमी सलामती के दोनों मुशीरों ने दो तरफा जामे आलमी दिफाई शराकतदारी के मुताबिक आला तरजीहात का एक बार फिर जिक्र किया। उन्होंने मकामी और आलमी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिव्यांशु पांडा ने फाल्टा असेंबली सीट के लिए दोबारा हुई पोलिंग में जबरदस्त जीत हासिल की है। जनाब पांडा ने 1,09,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस का अहम गढ़ तस्वुर की जाती है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दौरान वोटिंग में बड़े पैमाने पर

0: धांधली के वाकयात के बाद 21 मई को दोबारा पोलिंग कराई गई। फाल्टा सीट जीतने के बाद 294 नशिस्तों वाली असेंबली में बीजेपी के अराकीन की तादाद 208 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तृणमूल कांग्रेस के मुबैना डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए बीजेपी ने आज फाल्टा असेंबली सीट पर दोबारा कराई गई पोलिंग में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पार्टी के उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने अपने करीबी हरीफ सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से ज्यादा वोटों के भारी फर्क से हराकर यह सीट जीत ली। शंभुनाथ कुर्मी को 40,645 वोट मिले जबकि दिवांशु पांडा को 1,49,666 वोट हासिल हुए। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान 7,783 वोट पाकर चौथे मकाम पर रहे। उनकी जमानत जब्त हो गई जबकि कांग्रेस तीसरे मकाम पर रही। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: मगरबी बंगाल हुकूमत ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो उन मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्कियों नेज गैर मुल्की कैदियों के लिए हिरासती मरकज कायम करें जिन्हें वजारत दाखिला के रहनुमा खतूत के मुताबिक जिला वतन किया जाना है या उनके वतन वापस भेजा जाना है। दाखिली और पहाड़ी अमूर के महकमे की तरफ से जारी एक सरकारी ऐलामिया के मुताबिक जिलों से कहा गया है कि वो उन अफराद को उन मरकजों में भेजने के लिए जरूरी इकदाम करें जिनकी शनाख्त मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों की हैसियत से की गई है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी कैद की मुद्दत पूरी हो गई है और उन्हें जिला वतन किया जाना है। हिदायतनामे में हुक्काम से कहा गया है कि वो उन बांग्लादेशी शहरियों और रोहिंग्या अफराद को जिला वतन करने और उनके वतन वापस भेजने के लिए वजारत दाखिला के तरीके कार के मुताबिक कार्रवाई करें जो भारत में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के पर्चों को दोबारा जांचने के अमल की खामियों को दूर करने के लिए CBSE की मदद की गरज से IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसर्स और तकनीकी माहिरीन की एक टीम तैनात करने की हिदायत दी है। यह फैसला CBSE के नतायज के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के बारे में तलबा और वालिदैन की तरफ से जाहिर की गई तश्वीश के पेश नजर किया गया है। तालीम की वजारत ने एक बयान में कहा है कि IITs के माहिरीन की ये टीम निजाम में तकनीकी बेहतरी लाने नेज खास तौर पर इम्तिहान के पोर्टल के इस्तेहकाम और सर्वर की कारकर्दगी को तकनीकी तौर पर बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE के नतायज और दोबारा जांच के अमल के दौरान तलबा के सामने पेश आने वाले तकनीकी और अदायगी से मुतल्लिक मसाइल पर मालियात और कॉरपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमन से आज बातचीत की। वजारत तालीम ने कहा कि बातचीत के दौरान यह फैसला किया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और इंडियन बैंक अदायगी के बुनियादी ढांचे और इम्तिहान के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के साथ जरूरी इंजमाम में CBSE की मदद करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गर्मी की शिद्दत ने वस्ती और शुमाल मगरबी भारत के बड़े हिस्से में मामूलाते जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। कई इलाके खुश्क हवाओं और शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं जिससे लोग दोपहर के औकात में घर के अंदर रहने पर मजबूर हो गए हैं। कौमी राजधानी दिल्ली भी शदीद गर्मी की जद में है। आज कौमी राजधानी खित्ते के बेशतर इलाकों में दर्ज हरारत 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने कल उत्तर प्रदेश मशरकी मध्य प्रदेश और विदर्भ खित्ते में शदीद गर्मी की पेशगोई की है जबकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बंगाल के हिमालयी इलाके, आसाम और मेघालय में कल शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। मध्य प्रदेश शदीद गर्मी की लपेट में है। पूरी रियासत में गर्म हवाएं चल रही हैं और कई शहरों में दर्जा हरारत 43 डिग्री से तजावज कर गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश को इस वक्त शदीद गर्मी का सामना है। बेशतर शहरों में दर्ज हरारत 43 डिग्री सेल्सियस से तजावज कर गया है। आज महकमा मौसमियात ने चार अजला टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना के लिए शदीद गर्मी की वजह से रेड अलर्ट जारी किया है। ततैया, नेवाड़ा और सागर समेत 11 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जबकि ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन समेत 22 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह रियासत के 37 अजला गर्मी की शिद्दत से जूझ रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम अगले 4 रोज तक शदीद गर्मी से राहत का कोई इम्कान नहीं है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो दोपहर के वक्त बाहर निकलने से गुरेज करें, बहुत ज्यादा पानी पिएं, नीज बच्चों और बुजुर्गों को खसूसी निगहदाश्त में रखा जाए। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: महाराष्ट्र में अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों में शदीद गर्मी के पेश नजर मंगल तक के लिए रेड

अलर्ट जारी किया गया है। इस मुद्दत के दौरान अकोला, नागपुर और गढ़चिरौली जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक के एक कुनबे के 8 अफराद, जिनमें 7 खवातीन थीं, आज उत्तर कन्नड़ा जिले के थट्टेहक्कालु दरिया में डूब गए। ये लोग ताजा पानी की सीपियां चुन रहे थे कि तेज हवा की वजह से बहकर दरिया में चले गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक

कृष्णन और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले में डूबने से हुए जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस हादसे में मरने वालों के कुनबों के तहत ताज़ियत का इजहार किया है और मुतासरीन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए वज़ीर-ए-आज़म के कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपये की इमदादी रकम का ऐलान किया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली की एक 4 रुकनी मेडिकल टीम ने भोपाल में मॉडल से अदाकारा का पेशा अख्तियार करने वाली त्रिशा शर्मा का दूसरी बार पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दौरान तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा। कानूनी तरीक़ेकार मुकम्मल करने के बाद त्रिशा का जस्ते खाकी उनके कुनबे के सुपुर्द कर दिया गया और उनकी आखिरी रसूम भोपाल में भदभदा क्रिमेशन में अदा की जाएंगी। 33 साल त्रिशा की मौत भोपाल में उनके मायके में हो गई थी और उनके कुनबे ने उनके ससुराल वालों पर जहेज के लिए हरासा करने ने उन्हें खुदकुशी पर उकसाने के इल्जाम आयद किए हैं। पुलिस ने त्रिशा के शौहर समर्थ सिंह के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली है जो खुद वकील हैं। उनकी सास गिरिबाला सिंह साबिक जिला जज हैं। उन पर भी जहेज के लिए हरासा किए जाने के इल्जाम हैं। बहरीन की एक अदालत ने 9 लोगों को उम्र कैद और दीगर 2 अफराद को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। इन अफराद पर ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी से मुआवनत करने का इल्जाम था जिसे हुक्काम ने मुल्क के खिलाफ साजिश और एक दहशतगर्दाना अमल करार दिया था। बहरीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक ये अफराद हसास मकामात के बारे में मालूमात जमा करने और उससे मुतालिक पैसों के लेन देन में मदद करने में शामिल थे। बहरीन की वजारत दाखिला ने इस माह की 9 तारीख को बताया था कि उसने ऐसे 41 अफराद को गिरफ्तार किया है जिनके मुबैना तौर पर ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी से रवाबित थे। 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की पहलवानों ने अपनी उम्दा कारकर्दगी जारी रखते हुए आज वियतनाम के शहर डानांग में सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे जीते। खवातीन के फ्री स्टाइल मुकाबलों में मानसी लथेरा और काजल ढोजक ने सोने के तमगे, स्वीटी और नेहा सागवान ने चांदी के तमगे, जबकि अहिल्या शिंदे ने कांसे का तमगा जीता। मर्दों के ग्रेग रोमन जुमरे में सुमित दलाल ने सोने का तमगा जीता, जबकि नीरज पटेल और रोहित बोहरा ने कांसे का तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आज एक रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम से कम 24 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हुए। ये धमाका राजधानी क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के नजदीक हुआ। इस धमाके में एक रेलगाड़ी को जुजवी नुकसान पहुंचा जबकि इलाके में खड़ी हुई 10 मोटर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। इस वाकये के बाद पूरे क्वेटा शहर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और सूरत हाल से निपटने के लिए डॉक्टरों और तिब्बी अमले को तलब किया गया है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक इस धमाके के बाद एहतियाती इकदाम के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के नजदीक गोलियां चलने के वाकये के बाद तेजी के साथ कार्रवाई करने पर कानून नाफिज करने वाले हुक्काम और खुफिया सर्विस के अहलकारों का शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि मुश्तबा शख्स की पुरतशद्दुद तारीख रही है और ये वाकया वाशिंगटन में सिक्योरिटी से वाबस्ता गोलीबारी के एक और हालिया वाकये के चंद रोज बाद पेश आया है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। भारत और अमरीका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती मुआहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमदोरफ्त को तआवुन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1 लाख से ज्यादा वोटों से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। TMC उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को हिदायत की है कि वो मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज कायम करें। हुकूमत ने CBSE के पर्चे दोबारा जांचने से मुतल्लिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए IIT मद्रास और IIT कानपुर के माहरीन की खिदमात हासिल की हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी के सबब मामूल की जिंदगी मुतासर हुई है। अगले 7 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन। नमस्कार, आदाब। हाजिर हूँ लेकर आपके दिलों की धड़कन, सुरों की महफिल, कार्यक्रम अंजुमन। मैं हूँ आपकी दोस्त और हमनवा आराधना। अंजुमन यानी वो जगह जहाँ जज्बात लफ्ज़ों का लिबास पहनते हैं और सुर रूह को छू जाते हैं। आज की इस महफिल में हम फिल्मी चकाचौंध से दूर गैर फिल्मी गीतों और कुछ नायाब गज़लों के समंदर में गोता लगाएंगे। तो थाम लीजिए अपना दिल, क्योंकि आज सुरों की जो बारिश होने वाली है वो सीधे आपकी रूह को भिगो देगी। महफिल की शुरुआत करते हैं सूफियाना रंग और इश्क के उस जुनून के साथ जो हंसराज हंस जी की आवाज़ में निखर कर आता है। आइए सुनते हैं ये खास गैर फिल्मी गीत।

हंसराज हंस जी की आवाज़ में जो रूहानियत है वो सीधे दिल के पार उतर जाती है। इश्क जब रूहानी हो तो दिल खुद ब खुद नाच उठता है। चलिए अंजुमन के इस सफ़र को थोड़ा और रूमानी बनाते हैं। जब मोहब्बत में बातें कम और खामोशियाँ ज़्यादा होने लगें तो वो खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। बस उसी खामोशी को सुरों में पिरोया है सुरों की मलिका अनुराधा पौडवाल और मखमली आवाज़ के मालिक मरहूम पंकज उधास जी ने। साधना और सादगी का एक अनोखा संगम, सुनिए खूबसूरत गीत।

वाकई कुछ आवाज़ें कभी बूढ़ी नहीं होती, हमेशा जहन में ताज़ा रहती हैं। श्रोताओं, अंजुमन का मिजाज अब गीतों से गज़लों की तरफ मुड़ रहा है, और जब बात गज़ल की हो तो उस्ताद गुलाम अली साहब का नाम न लिया जाए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। उस्ताद गुलाम अली साहब की गायकी में वो कशिश है जो हर टूटते दिल को सहारा देती है। तो पेशे खिदमत है दर्द और मोहब्बत की चादर में लिपटी ये अजीम गज़ल।

उस्ताद गुलाम अली साहब की इस गज़ल के बाद दिल जैसे एक अजब से सुकून में डूब गया है, लेकिन महफिल अंजुमन की रवानगी को बरकरार करते हुए आइए रुख करते हैं उस हुस्न की तरफ जिसकी तारीफ में शायरों ने ना जाने कितने दीवान लिख दिए। कहते हैं आंखें दिल का आईना होती हैं, और जब आंखें खूबसूरत हों तो उन पर गज़ल बनना तो लाजमी है। तलत अजीज साहब की मखमली और पुरकशिश आवाज में पेश है अगली गजल, जिसका एक हर एक लफ्ज आंखों के रास्ते सीधे दिल में उतर जाएगा।

खूबसूरत हैं आंखें, तलत अजीज साहब ने जिस नज़ाकत से इसे गाया है वो सिर्फ वो ही कर सकते हैं। दोस्तों, वक्त का पहिया घूमता रहता है और अब हम आ पहुँचे हैं आज की इस महफिल के आखिरी पड़ाव पर और हमारी इस अंजुमन का अंत उस आवाज़ के बिना अधूरा है जिसे दुनिया गज़ल किंग के नाम से जानती है। जी हाँ, आदरणीय जगजीत सिंह जी। जगजीत जी की आवाज़ में जो ठहराव, जो सूफियाना अंदाज और जो शिद्दत है वो ज़िंदगी के फ़लसफे को बयां करती है। आज की महफिल को विदा करने से पहले डूब जाते हैं उनकी इस बेहद संजीदा और रूहानी गज़ल में।

0: जगजीत सिंह जी की ये आवाज़ और ये ख्याल जहन में एक गहरा साया छोड़ जाते हैं। श्रोताओं, आज सुरों की ये अंजुमन यहीं तक थी। उम्मीद है आज के ये गैर फिल्मी गीत और मखमली गज़लें आपके संडे को बेहद ख़ास बना दी गई होंगी। अगले हम फिर मिलेंगे कुछ नए तराने, कुछ नए अफसाने लेकर इसी मोड़ पर, इसी महफिल में। तब तक के लिए अपनी दोस्त आराधना को दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, महफूज रहिए। शबा खैर, शुभरात्रि। अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गजलों पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी है।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाली विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य उस समय के बम्बई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्मभूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांतो दे रॉय।
1: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य। बोर्न इन अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली ऑफ अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस वेयर हिज ग्रैंडफादर द रिनाउंड सितारिया श्री लाल मोहन भट्टाचार्य इज सेड टू हैव लेड द फाउंडेशन of this rich legacy, and Pandit Hauru Shankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Murali Das Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Hauru Shankar Bhattacharya moved to Bombay, present day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Beenkar style. A top grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Hauru Shankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Zafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An empaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Hauru Shankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Hauru Shankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by प्रशांतो दे रॉय।
0: पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य सितार वादन की इस प्रस्तुति का आरंभ राग दरबारी के साथ करेंगे। यह बंदिश आलाप और जोड़ के साथ शुरू होगी, जो गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आबद्ध है।
1: पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी। बिगिनिंग विद आलाप एंड जोर, द कंपोजिशन ऑफ द राग is set to gat in vilambit teen tal, followed by madhyalaya teen tal.

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आवत है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरोशंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांतो दे रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू राग जिला काफी इन द सितार रिसाइटल बाय पंडित हरोशंकर भट्टाचार्य। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय प्रशांतो दे रॉय।
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: एंड विद दिस वी एंड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वाज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कोलकाता।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र

0: में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 800,000 से अधिक आवेदकों में से लगभग 549,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालु नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jayashankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
4: Our government's fundamental responsibility is to